सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 35 सेकंड हो रहे हैं। हमारी प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार सुनवाए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन्स से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, LPG आपूर्ति, AI सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, भक्ति और श्रद्धा के इस पावन संगम वंदना में आपका हार्दिक स्वागत है। जब मन भक्ति के रंग में रंग जाता है, तब हर स्वर ईश्वर का आशीर्वाद बनकर हृदय को छू जाता है। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे भक्तिमय भजन से जिसमें बजरंग बली की वीरता, सरलता और उनकी कृपा का सुंदर वर्णन है। ये भजन समर्पित है पवन पुत्र हनुमान और माता अंजनी के चरणों में।

श्रोताओं, हनुमान जी केवल शक्ति और साहस के प्रतीक ही नहीं बल्कि सच्ची भक्ति, सेवा और समर्पण की मिसाल भी हैं। उनका नाम लेते ही मन में ऊर्जा और विश्वास का संचार होने लगता है। तो आइए अब सुनते हैं प्रभु श्री राम के परम भक्त संकट मोचन हनुमान जी की महिमा का गुणगान करता कार्यक्रम का अगला सुंदर भजन।

इस शब्द के बाद कार्यक्रम वंदना में अब वक्त है एक खूबसूरत नात का, जिसमें मोहब्बत है और सरकारे मदीना के दर पर झुकी हुई दुआओं की सादगी। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है श्रोताओं, तब रहमत की निगाह ही उसे सहारा देती है। तो आइए दिल की गहराइयों से सुनते हैं ये भावपूर्ण नात।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में अब समय है आज की अंतिम प्रस्तुति का। श्रोताओं, जीवन में जाने अनजाने हमसे कई भूल हो जाती हैं और तब ईश्वर से क्षमा और कृपा की प्रार्थना ही मन को सच्ची शांति देती है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं, जो कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं, लेकिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना और पश्चाताप को वो अवश्य स्वीकार करते हैं। तो आइए श्रद्धा और विनम्रता के साथ सुनते हैं ये शनि भजन।

इस शनि भजन के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं भूपेंद्र और मिताली बी सिंह। संगीतबद्ध किया है सतीश भाटिया ने।

रानी कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। श्री राम को वहां ले आते पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुई और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथेपन में अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाएं। अवधरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

0: कलाकार सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। कलाकार थे भूपेंद्र और मिताली बी सिंह। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं चिंतन।
1: विश्वास एवं आस्था जुड़वां भाई बहन है। आस्था में विश्वास की तुलना में घनत्व अधिक है। परंपराओं से गुजरता हुआ विश्वास अपने आधार से थोड़ा टूट जाता है। इस आधार को हम यदि तर्क मान लें तो इस कसौटी पर वह खरा नहीं उतरता और बिना तर्क या आधार के निरंतर लोकमानस में व्याप्त रहने के कारण अंधविश्वास की परिधि में आ जाता है। अंधविश्वास पुनः परंपरा की नदी में प्रवाहित होकर तर्क या आधार से दूर पहुंच जाता है। यहां आकर यह सामाजिक बुराई का रूप ग्रहण कर लेता है। समाज मान्यताओं, परंपराओं, आस्थाओं और विश्वासों को समग्र में स्वीकार करता है। समाज के पुराधाओं का कहा गया वाक्य निर्देश हो जाता है और निर्देश के पालन न करने पर सामाजिक दंड का भी प्राविधान है। भारतीय समाज पर समग्र रूप से यदि दृष्टिपात किया जाए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आंचलिक स्तर पर अंधविश्वासों के अनेक रूप दिखाई देते हैं। बच्चे को पैदा होने से मृत्यु पर्यंत अनेकानेक अंधविश्वासों से लड़ना होता है। अंधविश्वासों से लड़ना सामाजिक चेतना के रूप में जाना जाता है और इसी को समाज का अधिसंख्य भाग विद्रोह का नाम देता है। सामाजिक बुराइयां कुरीति के रूप में हमारे सामने आती हैं। बाल विवाह, बाल विधवाओं का विद्रूप जीवन आदि समाज की अनेक कुरीतियों में कुछ हैं। लोकतंत्र में संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के हनन के अंतर्गत इसी तरह की कुव्यवस्थाओं पर चर्चा की जाती है। अंधविश्वास से पुरुष और स्त्री दोनों ही प्रभावित होते हैं, परंतु स्त्री इससे अधिक प्रभावित होती है। राम मोहन राय जैसे जागरूक व्यक्तियों ने सती प्रथा के विरोध की स्वर बहुत पहले मुखर कर दिए थे। इसी के परिणाम स्वरूप सती प्रथा निवारण अधिनियम अंग्रेजों के समय में ही लागू हो गया था। वृंदावन की विधवाओं में बंगाल से वृंदावन पहुंची युवा बाल विधवाओं का समूह उसी बंगाल से है जहां से सती प्रथा का विरोध शुरू हुआ, अर्थात सती नहीं होकर जीवन भर विधवा होने की प्रताड़नाओं को सहने की व्यवस्था झेलना इनके लिए अनिवार्य हो गया। अबोध बालिकाओं के विवाह को कानूनन समाप्त कर दिया गया, परंतु राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों की बाल विवाह प्रथा अभी भी प्रचलन में है। आज के वैज्ञानिक युग में सांप के काटने पर जहर उतारने के लिए मंत्र, भूत प्रेत भगाने के लिए मंत्र, ओझाओं के फलते फूलते कारोबार, उनकी बेहिसाब बढ़ती संपत्ति, हमारे मन में व्याप्त अंधविश्वासों से उगती बढ़ती फसलें ही तो हैं। प्रश्न आस्था, विश्वास और परंपरा का है। आस्था आदर्श के प्रति समर्पण का भाव है जिसे हम कुछ समय बाद मान्यता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसका आधार विश्वास ही होता है। कालांतर में यही विश्वास अंधविश्वास का रूप ग्रहण कर लेता है। हमें किसी की आस्था विश्वास को ठेस न पहुंचाते हुए अंधविश्वासों से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम काव्यधारा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रतिभा त्रिपाठी का काव्य पाठ।
2: माँ वीणा पाणी के चरणों में मेरी ये वंदना।

इसी के साथ एक धनाक्षरी प्रस्तुत करते हुए अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगी। कौशल्या के सुत राम राम को करूं प्रणाम, कौशल्या के सुत राम राम को करूं प्रणाम, दीप जले अवध।

0: प्रभु राम है। और तेज पुंज देखत जो मन हुआ पुलकित, तेज पुंज देखत जो मन हुआ पुलकित, वाम अंग में बिराज सिया सुख दाम है। अवध में राम नाम गुंजत है चाहूं और, अवध में राम नाम गुंजत है चाहूं और, हनुमत संग देखे दर्श ललाम है, हनुमत संग देखे दर्श ललाम है।
1: इसी के साथ मुक्तक आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। प्रेम

0: प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिंबित प्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति एताः अन्तर्जालीय माध्यमेन उपलभ्यन्ते द्वितीय चरणे छात्राः विसंगतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति उतोवा अंकन योजनायाः आधारेण विशिष्टानां उत्तराणां पुनर्मूल्यांकनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति इजराइल लेबनान देशौ वाशिंगटन नगरे संजातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः पञ्चचत्वारिंशत् दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिका देशस्य विदेश विभागः अवदत् विदेश विभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृत वार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति इतः अनन्तरं जून मासस्य द्वित्री दिनांकयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं सप्तस्तोभैः पराजितम् सीएसके इत्यनेन प्रदत्तस्य अष्टाशीत्यधिकैकशत धावनांकस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन एलएसजी इति दलेन सप्तदशैव क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम् यत्र केवलम् अष्टत्रिंशत् कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य नवति धावनांकानां भूमिका निर्णायिका अभवत् मार्शः उत्तम क्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीत में प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार एलपीजी आपूर्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर निर्माण रणनीतिक रक्षा साझेदारी निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार

0: लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज की जानकारी का विषय है गुणों से भरपूर खीरा और ककड़ी।
2: प्रकृति ने मनुष्य के प्रादुर्भाव के पहले ही विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, फल फूल एवं शाक पैदा कर दी। इन शाक सब्जियों में वे सारी गुणवत्ताएं मौजूद हैं जो मौसमी बीमारियों से बचाने में सक्षम हैं। फल एवं शाक ये दोनों शरीर में खनिज लवण एवं विटामिन की संपूर्ति के लिए उत्तम आहारीय स्रोत हैं। प्राचीन काल में अरण्य प्रधान संस्कृति होने के कारण लोक जीवन में कंद और मूल यूं ही मूल रूप में सेवन किए जाते थे, किंतु समय के साथ साथ हुए सांस्कृतिक परिवर्तन एवं नगरीय विकास के साथ साथ उनसे विविध शाक और व्यंजन बनने लगे। आजकल अनेक फल भी शाक के रूप में सेवनीय हैं। ऐसे ही फलों की श्रेणी में खीरा आता है, जो हमारे जीवन में नित्य उपयोगी फल के साथ आहार में शाक एवं सलाद के रूप में सेवन किया जाता है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से खीरे में आर्द्रता, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज द्रव्य, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन B1 तथा C होते हैं। इसके बीजों में प्रोटीन तथा वसा होती है। इससे एक हल्के पीतवर्ण का तेल निकलता है। खीरा कब्ज दूर करता है, पीलिया, प्यास, ज्वर, शरीर की जलन, गर्मी के सारे दोष, चर्म रोग में भी लाभदायक है खीरा। खीरा भारी और पेट में गैस भी उत्पन्न करता है। खीरे का रस पथरी में लाभदायक होता है। इसका रस 250 ग्राम दिन में 3 बार सेवन करें। ये पेशाब में जलन, रुकावट और मधुमेह में भी लाभदायक है। घुटनों का दर्द दूर करने के लिए खीरा और 1 पोतिया लहसुन का सेवन करें। खीरे के रस को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच शहद और 1/2 नींबू मिलाएं। गर्मी के इस मौसम में खीरे का सेवन लाभप्रद है। अब हम बात करेंगे शीतल और पाचक ककड़ी की। ककड़ी गर्मी के मौसम की उत्तम सब्जी ही नहीं बल्कि ये पित्त शामक औषधि भी है। ककड़ी शीतल, रुचिवर्धक और पाचक होती है। भारत में सर्वत्र उपलब्ध होने वाली ककड़ी गर्मी के मौसम की फसल है। अपने शीतल गुण के कारण ही ककड़ी मानसिक रोगों में भी हितकारी है। ककड़ी के बीज मस्तिष्क की गर्मी को भी दूर करते हैं, जिससे मस्तिष्क की गर्मी से उत्पन्न बौखलाहट, चिड़चिड़ापन, उन्माद आदि मानसिक विकार दूर होते हैं। ककड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके उस पर शक्कर छिड़क कर सेवन करने से शरीर की गर्मी दूर होती है। ग्रीष्म ऋतु में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए ककड़ी के बीजों को ठंडाई के साथ पीसकर पीते हैं। इससे शरीर को तरावट मिलती है, थकान दूर होती है और शक्ति भी प्राप्त होती है। यदि किसी को

0: मूत्र में जलन होती हो या रुक रुक कर मूत्र होता हो, ऐसे में 100 ग्राम ककड़ी का रस 2 ग्राम धनिया के चूर्ण में मिलाकर दिन में 3 बार पिए, लाभ होगा। ककड़ी और नींबू के रस में थोड़ा सा भुने हुए जीरे का चूर्ण और शक्कर मिलाकर पीने से पेशाब की जलन भी दूर होती है। बार बार पथरी होने की शिकायत हो तो ककड़ी का सेवन अवश्य करें। ककड़ी त्वचा और चेहरे का सौंदर्य बढ़ाने में भी मददगार साबित होती है। इसके प्रयोग से कील, मुहासे, दाग, झुर्रियां आदि भी दूर हो जाती हैं और चेहरे का रंग भी निखर उठता है। एक उपाय करके देखें। ककड़ी के रस में गुलाब जल और नींबू का रस मिलाकर रुई में भिगोकर चेहरे, गले तथा हाथों पर लगाएं। 15-20 मिनट के बाद पानी से अच्छी तरह धो लें। ऐसा कुछ दिनों तक करने से त्वचा में निखार आ जाएगा। ककड़ी में सिलिकॉन और सल्फर अधिक मात्रा में मिलते हैं, जो बालों को बढ़ाते हैं। ककड़ी में पोटेशियम तत्व बहुत मिलता है। ककड़ी का रस उच्च तथा निम्न दोनों ही रक्तचाप में पीना लाभदायक है। ककड़ी के सेवन से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। मौसम में उपलब्ध इन शीतल, पाचक, खीरा तथा ककड़ी का सेवन करें और स्वस्थ रहें।
1: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे जानकारी गुणों से भरपूर खीरा और ककड़ी विषय पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें।
2: किसान भाइयों नमस्कार। खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है इस पखवाड़े किसान भाई क्या करें। किसान भाइयों, आज से मई माह का दूसरा पखवाड़ा शुरू हो चुका है। भाइयों, मई माह का दूसरा पखवाड़ा खेती किसानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में तापमान अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, खेतों में नमी तेजी से कम होने लगती है और खरीफ मौसम की तैयारियां पूरी गति पकड़ लेती हैं। किसान भाइयों के लिए यह समय केवल खेतों को खाली रखने का नहीं, बल्कि आने वाली खरीफ फसलों की मजबूत नींव तैयार करने का समय होता है। यदि किसान भाई इस समय वैज्ञानिक तरीके से खेती से जुड़े कार्य करें, समय पर सिंचाई करें, खेत की तैयारी करें, बीज का चयन, रोग एवं कीट नियंत्रण, पशुपालन और बागवानी प्रबंधन करेंगे तो आने वाले मौसम में उन्हें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। भाइयों, मई के दूसरे पखवाड़े में लापरवाही करने पर खेतों में कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है तथा खरीफ फसलों की शुरुआत कमजोर हो सकती है। इसलिए इस समय हर कार्य सावधानी और योजना के साथ करना जरूरी होता है। किसान भाइयों, मई के दूसरे पखवाड़े में खेतों की गहरी जुताई करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। तेज गर्मी और धूप के कारण मिट्टी के अंदर मौजूद कीटों के अंडे, प्यूपा, दीमक, फफूंद और खरपतवार के बीज नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों को मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की जुताई करनी चाहिए ताकि सूर्य की किरणें गहराई तक पहुंच सके। इससे मिट्टी में रोगजनक तत्वों की संख्या कम होती है और खरीफ फसलों की अच्छी शुरुआत होती है। जिन खेतों में दीमक या सफेद गिंडार का प्रकोप रहता है, वहां गहरी जुताई विशेष रूप से लाभकारी होती है। साथ ही मई महीने में मिट्टी की जांच और खेत को समतल करने का कार्य किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। यदि किसान इस समय मिट्टी की जांच करा लेते हैं तो उन्हें यह पता चल जाता है कि खेत में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन कौन से पोषक तत्वों की अधिकता है। इससे आने वाले फसल में कौन कौन से और कितनी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, ये भी पता चल जाता है। भाइयों, मई के दूसरे पखवाड़े में खरीफ फसलों की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन और कपास जैसी फसलों के लिए बीज की व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए। केवल प्रमाणित और उन्नत किस्मों के बीज ही खरीदने चाहिए। साथ ही बीज को उपचारित करना भी बेहद जरूरी होता है। और जो किसान भाई खेत में धान की बुआई करना चाहते हैं तो इस समय नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं। नर्सरी के लिए ऊंची और समतल भूमि का चयन करना चाहिए। बीजों को उपचारित करके ही बोना चाहिए। भाइयों, नर्सरी में पर्याप्त

0: ही चर्चा का विषय होगा, टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स स्मार्ट तरीके। हिंदी वार्ताओं का कार्यक्रम विविधा प्रसारित होगा आज शाम 6:45 पर। इस कार्यक्रम में आज वार्ताकार रचना देवी की वार्ता प्रसारित होगी, जिसका शीर्षक होगा भारतीय पुरातन ग्रंथों में न्याय की अवधारणा। श्रोताओं, ये था विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 7:18 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ, राष्ट्रहित की भावना के साथ बिजली और ईंधन की बचत का किया आह्वान। 21 जून को दोबारा होगी नीट UG 2026 की परीक्षा, विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर, अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा, प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के एकाना स्टेडियम में हुए IPL मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट और आवास की चाबियां भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्ष में तेजी से हुए विकास के चलते उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बिजली और ईंधन की बचत करने और छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूती देने का आह्वान किया।
4: ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर मैं सभी सराफा व्यवसायियों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है

0: उसी की मरम्मत कराना। हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, देश का पैसा बचाना है, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को भरने का काम करेंगे।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर नागरिक को देश हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया और गोरधोइया नाला परियोजना की प्रगति जानने के बाद सड़क परियोजना के चौड़ीकरण का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम कर रही है।
2: स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस बुरी तरह समाप्त, नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने बताया कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन यानी CBT माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने थोड़ी देर एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
1: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो NTA ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
1: उधर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने NEET UG 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और NTA की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देशभर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से हैं। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रुपये प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहां कहीं देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीश की कारपुलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। प्रदेश में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशुहानि से प्रभावित लोगों को भी नियम के अनुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत और सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसको ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर कल से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क मार्ग पर 15 दिनों के लिए बिना टोल टैक्स के यात्रा करने की सुविधा दी थी। बांदा जिले में केन नदी में कल नहाने के दौरान दो किशोर सहित 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। एक किशोर का शव नदी से तत्काल निकाल लिया गया, जबकि अन्य 2 शव रेस्क्यू अभियान के बाद बरामद किए गए। आईपीएल में कल लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ईकाना स्टेडियम में हुए मुकाबले को लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत लिया है। देर रात तक चले मैच में लखनऊ ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ की टीम को जीत के लिए 188 रन का लक्ष्य दिया, जिसे लखनऊ ने 3 विकेट खोकर मात्र 16.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। लखनऊ की ओर से मिशेल मार्श ने 38 गेंदों में 90 रन की शानदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच घोषित हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। राष्ट्रहित की भावना के साथ बिजली और ईंधन की बचत का किया आह्वान। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपने पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में हुए आईपीएल मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
6: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता। फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
7: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
8: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:31 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: साथ साथ।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी नमितराज, जो अगले आधे घंटे तक आपको आज की तारीख 16 मई की खास खास बातों से आपको रूबरू करवाएगा। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं दो पंक्तियों से कि अंधेरों से लड़ने का हौसला रखिए, एक छोटा सा दीप भी उजाला कर जाता है। अंधेरों से लड़ने का हौसला रखिए, एक छोटा सा दीप भी उजाला कर जाता है। ज्ञान और प्रकाश की किरण जब साथ हो तो हर रास्ता आसान नजर आता है। जी हाँ साथियों, प्रकाश का रोल हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा है। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकाश केवल रोशनी नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान, ऊर्जा और आशा का प्रतीक है। सूरज की सुनहरी किरणों से लेकर दीपक की लौ तक और आधुनिक विज्ञान की लेजर तकनीक से लेकर सोलर ऊर्जा तक प्रकाश ने मानव जीवन को नई दिशा दी है। प्रकाश हमें यह भी सिखाता है कि अंधकार भले कितना भी हो, एक छोटी सी किरण भी उम्मीद जगा सकती है। आइए आज इस अवसर पर हम ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लें ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और उज्ज्वल भविष्य मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के साथ साथ आज शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। ये दिन हमें प्रेम, भाईचारे, सहिष्णुता और आपसी सम्मान का संदेश देता है। श्रोताओं, दुनिया में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन इन सब के बीच जो चीज़ हमें जोड़ती है ना श्रोताओं, वो है इंसानियत। जब हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, सहयोग करते हैं एक दूसरे का, तभी समाज में सच्ची शांति स्थापित होती है। आज के समय में छोटी छोटी बातों पर विवाद और दूरी बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये दिवस हमें याद दिलाता है कि बातचीत और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। हमें ये समझना होगा कि शांति केवल युद्ध न होने का नाम नहीं, बल्कि शांति का अर्थ है रिश्तों में अपनापन, व्यवहार में विनम्रता। यदि हम सब व्यवहार में विनम्र होंगे तो शांति अपने आप ही स्थापित हो जाएगी। श्रोताओं, यदि हम अपने घर, अपने समाज और अपने कार्यस्थल पर एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखेंगे तो ये दुनिया और भी सुंदर बन सकती है। तो आइए आज इस अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम और एकता का संदेश फैलाएंगे। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। सुनिए, एंजॉय कीजिए और बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, इस ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। आज का दिन एक और वजह से खास है और वो वजह है कि आज है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूक करना और बचाव के तरीकों को जन जन तक पहुंचाना। दोस्तों, डेंगू कोई साधारण बुखार नहीं है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। एक फैलने वाला रोग होता है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। खास बात यह है कि ये मच्छर साफ पानी में पनपता है और ज़्यादातर दिन के समय में काटता है। ऐसे में केवल दवाई नहीं बल्कि जागरूकता और सावधानी बेहद अहम है। ज़रा सोचिए, यदि हम अपने घर की छत पर रखी टंकी, कूलर, गमले या पुराने टायरों में जमा पानी को समय समय पर साफ कर दें तो डेंगू फैलने वाले मच्छरों को पनपने से रोका जा सकता है। यानी छोटी छोटी सावधानियां हमें बड़ी सुरक्षा दे सकती हैं। श्रोताओं, डेंगू के कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसे तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, बदन और जोड़ों में दर्द, कमजोरी और त्वचा पर लाल चकत्ते। तो यदि ऐसे लक्षण आपको दिखाई दें तो लापरवाही बिल्कुल ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार लोग बिना सलाह के दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं जो नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सही समय पर जांच और उपचार बहुत जरूरी है। दोस्तों, डेंगू से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है मच्छरों से अपना बचाव करना। इसके लिए पूरा शरीर ढकने वाले कपड़े पहनें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, घर के आसपास सफाई रखें और सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि कहीं भी पानी को जमा ना होने दें, क्योंकि जैसा हमने पहले बताया कि पानी पर ही ये मच्छर जो हैं वो पनपते हैं। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए श्रोताओं कि हम अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने शहर को स्वच्छ रखेंगे, साथ ही डेंगू के प्रति दूसरों को भी जागरूक करेंगे। कार्यक्रम में अब एक बार फिर से वक्त है एक और म्यूजिकल ब्रेक का, आप आनंद लीजिए। हम वापस आते हैं बस कुछ ही देर में।

श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम में रुक करते हैं सेगमेंट तिथि विशेष का, जिसमें हम बातें करेंगे आज की तारीख के इतिहास की, यानी आज की तारीख में इतिहास में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी थी। तो चलिए शुरू करते हैं सेगमेंट तिथि विशेष। 16 मई साल 2006 में न्यूजीलैंड के 47 वर्षीय पर्वतारोही मार्क इंजलिस पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने कृत्रिम पैरों की सहायता से एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराया था। साल 1982 में पर्वतारोहण के ही दौरान बर्फ में फंसे रहने से उनके दोनों पैरों में फ्रॉस्ट बाइट हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को उनके दोनों पैर घुटनों तक काटने पड़े। लेकिन कृत्रिम पैरों की सहायता से इस घटना के 24 वर्षों के बाद उन्होंने एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। 16 मई को ही साल 1975 में हुए जनमत संग्रह के बाद सिक्किम राज्य भारत का 22वां राज्य बना था। इस जनमत संग्रह के बाद यहां राजशाही का अंत हुआ और भारतीय संविधान की नियम प्रणाली के अंतर्गत प्रजातंत्र का उदय हुआ। यहाँ की राजधानी है गंगटोक और अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख शासकीय भाषा है। अमरीकी भौतिक विज्ञानी थियोडोर मैमन ने 16 मई सन 1960 को पहला सफल लेजर बनाया था। ये लेजर रूबी क्रिस्टल से बना था। श्रोताओं, इसने सुसंगत प्रकाश की किरणें उत्पन्न की जो एक साथ होती हैं और समान तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं। ये खोज विज्ञान, चिकित्सा, संचार और रक्षा के क्षेत्रों में क्रांति लेकर आई। 1996 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 161 सीटें जीती थी और गठबंधन सरकार बनाने का दावा किया, जिसके चलते 16 मई को श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, परंतु उनकी सरकार बहुमत हासिल नहीं कर सकी और 13वें दिन ही गिर गई। इस सरकार को आमतौर पर 13 दिवसीय सरकार के रूप में जाना जाता है। श्रोताओं, 16 मई को ही साल 1929 को हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल के ब्लॉसम रूम में पहला ऑस्कर समारोह आयोजित किया गया था। केवल 15 मिनट चले इस समारोह में साल 1927 और 1928 की फिल्मों को शामिल किया गया था। उस वक्त इस अवार्ड को एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहा गया। कार्यक्रम में कुल 15 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। 16 मई सन 1975 में जापान की पर्वतारोही जुनको ताबेई माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बनी थी। अभियान के दौरान वो 6300 मीटर की ऊंचाई पर हिमस्खलन की चपेट में आ गई थी। बर्फ में दबने और चोटिल होने के बावजूद उन्होंने अपना सफर पूरा किया। श्रोताओं, साहित्यकार गुलशेर खां शानी का जन्म भी 1933 में 16 मई को ही वर्तमान छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हुआ था। शुरुआत में लघु कथाएं और संस्मरण लिखने के बाद उन्होंने अपना सब

से प्रसिद्ध कालजयी उपन्यास कालाजल लिखा। इसे मुस्लिम संस्कृति और जीवन के गहरे यथार्थ का एक प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। सांप और सीढ़ी में ग्रामीण रूपांतरण, शहरीकरण और बदलते बाजार की विडंबनाओं को यथार्थवादी ढंग से दर्शाया गया है। पत्थरों में बंद आवाज उपन्यास में भी मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक बंधनों को बखूबी उकेरा। कस्तूरी, नदी और सीपियां, बबूल की छांव उनकी अन्य कृतियां हैं। श्रोताओं, ये थी कुछ चुनिंदा खबरें जो इतिहास में दर्ज हैं और 16 मई की ये तारीख इनके लिए जानी जाती है। आइए अब सेगमेंट तिथि विशेष के अंतर्गत ही रुक करते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों का और देख लेते हैं कि प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियां क्या कहती हैं। पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, मई 2022 के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंचे दाम। नीट यूजी की नई तारीख 21 जून, प्रवेश पत्र 14 जून से, परीक्षा अगले साल से ऑनलाइन। नए इलाकों में तेजी से फैल रहा है डेंगू, तेज गर्मी से बढ़ा खतरा, ठंडे इलाकों में भी दे रहा है दस्तक। मुनाफा वसूली से 21,600 रुपए घटा चांदी का मूल्य, नई दिल्ली में कीमत 2,75,000 रुपए प्रति किलोग्राम। सोना भी 3,200 रुपए गिरकर 1,62,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। और आईपीएल में सीएसके के सपने के आड़े आई एलएसजी, चेन्नई के 187 रनों के जवाब में 7 विकेट से दर्ज की जोरदार जीत। तो श्रोताओं, आज के तिथि विशेष सेगमेंट में बस इतना ही। अब आइए आपको एक बार फिर से संगीत की दुनिया में ले चलते हैं और सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, ये था कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का आज का अंक। हमें पूरी उम्मीद है कि कार्यक्रम का आज का अंक आपको पसंद आया होगा। तो अब इस गीत के साथ साथ कार्यक्रम को भी संपन्न करने की अपने साथी नमित राज को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 314। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का यह नजीब आबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने

0: भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। ओलमुन को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो

0: विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो दो चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
1: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह स्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्स ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस

0: जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोक सत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत से मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के आम ज़खायर कायम करना भी शामिल है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसी कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने बहुत से अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें अहम पेट्रोलियम ज़खायर, तवील मुद्दती LPG सप्लाई और दिफा के मैदान में तआवुन शामिल है। इन मुआहदों पर दस्तखत मगरबी एशिया में जारी महाज़ाराई के दौरान अबू धाबी में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के दरमियान आला सतह की बातचीत के बाद किए गए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर की मालियत की सरमायाकारी का अज़्म किया है। वजीर आज़म मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में कल UAE पहुंचे थे। मुआहदों में आम शराकत दारी का मुआहदा भी शामिल है, जिस पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू धाबी की तेल कंपनियों के दरमियान दस्तखत किए गए, जिसका मकसद भारत की तवानाई की फराहमी को मुस्तहकम बनाना है। इस अमल में पेट्रोलियम के जखायर और रकीक कुदरती गैस नीज रकीक बनाई गई पेट्रोलियम गैस LPG को जखीरा करने की सहूलतें शामिल हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस माहदे से भारत के अहम पेट्रोलियम जखायर में UAE की शराकत दारी में इजाफे से 3 करोड़ बैरल्स का इजाफा होगा और इससे भारत में गैस के अहम जखायर कायम होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत कल देर रात नीदरलैंड पहुंच गए हैं। वो अपने दौरे में नीदरलैंड के वजीर

0: रॉब जैतन से दो तरफा बातचीत करेंगे और उस मुल्क के बादशाह और मलिका से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम के नेदरलैंड्स के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
1: ये दौरा दो तरफा ताल्लुकात से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है और उम्मीद है कि हाल ही में किए गए भारत यूरोप आजाद तजारती माहदे के बाद भारत यूरोप यूनियन ताल्लुकात वसी तर हो जाएंगे। हफ्ते के रोज वजीर आजम मोदी भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगे और नीदरलैंड्स की सरकर्दा कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि खासतौर पर सेमीकंडक्टर्स, चिप्स और एआई के मैदानों में बहुत से अहम माहदे किए जाएंगे। तजारत के नुक्ते नजर से नीदरलैंड्स भारत का एक अहम इकतसादी शराकत दार है। ये भारतीय बरामदात और भारत में सरमायाकारी का सबसे बड़ा मुल्क है। दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े पैमाने पर शराकत दारी कायम है और ये दोनों ही मुल्क पानी के बंदोबस्त, काबिल तजदीद तवानाई, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मईशत, जरी टेक्नोलॉजीज और सेहत के मैदानों में भी एक दूसरे को ताउन देते हैं। नीदरलैंड्स के शहर हेग से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: नीदरलैंड्स के दौरे के बाद वजीर आजम मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में कल स्वीडन के शहर गोटेनबर्ग जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम के लिए कारोबार को मजीद आसान बनाने और जिंदगी को मजीद आसान बनाने के हुकूमत के अजम को दोहराया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर महसूल, टैक्स या सरचार्ज आयद करने की मीडिया की एक खबर को

0: मुताबिक डीजल बरामदात पर खुसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है। अब यह ड्यूटी 23 रुपए के बजाय 16 रुपए 50 पैसे फी लीटर होगी। हवाई जहाज के ईंधन ATF पर खुसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में भी कमी करके इसे 33 रुपए से 16 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। तब्दील की गई ये शरें अगले 15 दिन तक आयद रहेंगी। 15 दिन की यह मुद्दत आज से शुरू हो रही है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोलियम और डीजल पर आयद एक्साइज ड्यूटी की मौजूदा शरों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। मरकजी वजीरे दाखला अमित शाह ने कहा है कि भारत को वजीरे आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में 2047 तक मुनश्यात से पाक करने का कौमी मकसद तय किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की हिफाजती एजेंसियों ने मुनश्यात के मुनज्जम गिरोहों का खात्मा करने का एक खाका तैयार किया है और वो इस मकसद की जानिब सरगर्मी से काम कर रही है। कल नई दिल्ली में RN काओ यादगारी लेक्चर देते हुए वजीर दाखला ने कहा कि नशीली अशिया की नाजायज तजारत महज नज्म जब्त का मामला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मामला है जिसके तवील मुद्दती असरात समाज और मुस्तकबिल की नस्लों पर मुरतब होते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए जामे कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने नशीले मादों के तहत हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी का ये कहते हुए एक बार फिर जिक्र किया कि मुल्क इस बात को यकीनी बनाएगा कि महज एक ग्राम नशीला मादा भी इसके इलाके को गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हुए भारत में न तो दाखिल हो और न यहां से जाए। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ओहदा संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम का दौरा करेंगे। दौरे में नायब सदर जमहूरिया सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में रियासत के यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इन तकरीबात में शिमाल मशरकी खित्ते की तरक्की के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग भी शिरकत करेंगे। सिक्किम आज अपना यौम तासीस मना रहा है। 1975 में बादशाहत के खत्म होने के बाद ये भारत की 22वीं रियासत बनी थी। इम्कान है कि नायब सदर जमहूरिया अपने क्याम के दौरान चंद अहम मकामात का भी दौरा करेंगे। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है। ये FIR मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात की हालिया चुनाव मुहिम के दौरान मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज बयान देने के इल्जाम में दर्ज की गई है। शिकायत करने वाले का इल्जाम है कि उसने बाज बयान जिनमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नाजेबा तबसरे भी शामिल हैं सोशल मीडिया पर वसी पैमाने पर शेयर किए गए, जिनमें रुकन पार्लियामेंट का सरकारी फेसबुक पेज भी शामिल है। इसी दौरान एक और वाकये में मगरबी बंगाल हुकूमत ने 3 सीनियर IPS अफसरान को मुअत्तल कर दिया है, जिनमें कोलकाता पुलिस के साबिक कमिश्नर विनीत गोयल भी शामिल हैं। ये कार्रवाई RG Kar मेडिकल कॉलेज इस्मत दरी और कत्ल केस की तहकीकात में मुबैना कोताहियों के सिलसिले में की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने मुनसिफाना और शफाफ जांच के अज़्म का इरादा करते हुए 12वीं जमात के तलबा के लिए नताइज के बाद फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतालिक एक नोटिस जारी किया है। नोटिस बोर्ड में कहा गया है कि अपने नताइज से गैर मुतमईन तलबा 2 मरहलों पर मुश्तमिल नजर सानी के निज़ाम से फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले मरहले में तलबा अपनी जाँच की गई जवाबी कापियों की स्कैन शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं, जिन्हें जायजे के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरे मरहले में तलबा किसी भी फर्क या गलती की तस्दीक करा सकते हैं या मार्किंग स्कीम की बुनियाद पर मखसूस जवाबात की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। CBSE के मुताबिक स्कैन शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें इस माह की 19 से 22 तारीख तक जमा कराई जा सकती हैं, जिसकी फीस 700 रुपए फी मजमून मुकर्रर की गई है। इसी तरह तस्दीक और दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें इस माह की 26 से 29 तारीख के दरमियान जमा कराई जा सकेंगी। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनकरीब मुल्क में कोई भी गरीब शख्स नहीं होगा जिसके पास मुस्तकिल घर न हो। उन्होंने कहा कि सभी के लिए पक्के मकानात की फराहमी मरकजी हुकूमत का पुख्ता अज़्म है। जनाब चौहान महाराष्ट्र में सतारा के मकाम पर मुनक़दा महा आवास अभियान के तहत तामीर शुदा मकानात के इफ्तिताह के मौके पर इज्तिमा से खिताब कर रहे थे।
1: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्हें कहा कि 2 लाख बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल

0: के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने ऐलान किया है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए NEET UG 2026 इम्तिहान दोबारा 21 जून को मुनक़िद होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर एजेंसी ने उम्मीदवारों और वालिदैन से कहा है कि वो मुसद्दिका और मुस्तनद मालूमात के लिए सिर्फ NTA के सरकारी ज़राए पर ही एतमाद करें। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को मुनक़िदा इम्तिहान पेपर लीक होने के इल्जामात के बाद रद्द कर दिया गया था। इस मामले की तहकीकात इस वक्त मरकजी तहकीकाती ब्यूरो CBI कर रही है। इसराइल और लबनान ने वाशिंगटन में होने वाले एक और दौरे के मुजाकरात के बाद अपनी जंगबंदी में 45 दिन की तौसी पर इत्तेफाक किया है। अमरीका के महकमे खारजा के तर्जमान टॉमी पिगोट ने कहा है कि 16 अप्रैल को होने वाली जंगबंदी को मजीद 45 दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा ताकि मजीद पेशरफ मुमकिन हो। यह फैसला अमेरिका की मेजबानी में अमेरिका और लबनान के दरमियान 2 रोज तक जारी रहने वाली इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज मुजाकरात के इख्तिताम के बाद किया गया जो कल मुकम्मल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब पिगट ने कहा कि अमरीकी महकमे खारजा 2 और 3 जून को सियासी मुजाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू करेगा। इसके अलावा इस महीने की 29 तारीख को पेंटागन में सिक्योरिटी से मुतालिक बातचीत का मरहला भी शुरू किया जाएगा जिसमें दोनों ममालिक के फौजी वफूद शिरकत करेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के इलाकों में आज शदीद गर्मी की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कोंकण और गोवा के इलाकों में भी आज गर्म और हफ्स वाले मौसम की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक अंडमान व निकोबार जजायर में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश हो सकती है। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल्स मुकाबले में आज सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गो जी फी की जोड़ी से होगा। इस दौरान PV सिंधु और लक्ष्य सेन समेत दीगर भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। सिंधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की आलमी नंबर 3 खिलाड़ी अकाने यामागुची से 21-19, 18-21, 15 से हार गई है, जबकि मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन को थाईलैंड के कुनलावुत वितित्सर्न से 19-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के निशाने का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर 4 गेंदों में यह मैच जीत लिया। आज शाम इडन गार्डन में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी शहर से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुत्तहदा अरब इमारात दौरे को शह सुर्खी बनाया है। मुत्तहदा अरब इमारात के सद मोहम्मद बिन ज़ायद आल नहयान के साथ हुई 2 तरफा मीटिंग के दौरान कई अहम मुआहदे तय पाए जिनमें LPG की सप्लाई और $15 अरब की सरमायाकारी काबिले जिक्र हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत मगरबी एशिया में अमन के लिए हर मुमकिन तआवुन देने को तैयार है। ब्रिक्स ममालिक ने ग्लोबल साउथ और कसीर कुतबी आलमी निज़ाम की अहमियत पर जोर दिया। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के इजलास में जारी एक सदारती बयान में ये बात कही गई। इस खबर को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है। अखबारों ने NEET UG 2026 का इम्तिहान दोबारा 21 जून को कराए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग की पीछे में हुई मीटिंग में चीन ने मशरक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए फौरी और जामे जंगबंदी पर जोर दिया। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने नुमाया तौर पर शाया किया है।
1: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात ने बहुत से माहदों पर दस्तखत किए हैं जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम जखायर कायम करना भी शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसीह कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर,
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 8:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। कार्यक्रम गोल्डन हिट्स की पहली पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म भाभी से। संगीत चित्रगुप्त का है और गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म भाभी का ये गीत। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया था चित्रगुप्त ने। आई श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। राजेश रोशन का संगीत है, शब्द रचना है कुलवंत जैन की और फिल्म का नाम है आखिरी इंसाफ।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आखिरी इंसाफ का ये गीत। राजेश रोशन का संगीत था और शब्द रचना थी कुलवंत जैन की।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आक्रमण से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

किशोर कुमार के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आक्रमण का ये गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की। श्रोताओं, अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म आन मिलो सजना से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर ने। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ये गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं गायक कलाकार मन्ना डे को। फिल्म का नाम है समाधि, संगीत RD बर्मन का है और इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

समाधि फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:15 होने को हैं

0: कुछ ही पलों में जिले की हलचल पेश की जाएंगी।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बिजनौर और श्रावस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
2: बिजनौर में आगामी जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारी तेज हो गई है। स्वयं जनगणना के अंतर्गत 7 मई से 21 मई 2026 के बीच नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करा रहे हैं। जनगणना का मुख्य प्रथम चरण मकान सूचीकरण और आवास जनगणना 22 मई से 20 जून 2026 तक चलेगा, जिसके लिए प्रगणकों को प्रशिक्षित किया गया है जो घर घर जाकर डेटा एकत्र करेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत के रूप में न्याय की ओर कदम बढ़ाते हुए 9 मई को जनपद न्यायालय परिसर और तहसील में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान रिकॉर्ड 13,000 से अधिक मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद और बैंक रिकवरी जैसे मामलों में समझौते के आधार पर करीब 13 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि पक्षकारों को दिलाई गई। जिला जज ने आम जनमानस से अपील की कि वे सुलभ न्याय के लिए लोक अदालतों का अधिकतम लाभ उठाएं।
3: इन लिटिगेंट्स के सुविधा के लिए ऐसे मामले जो कि सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, उन लोगों को हम लोगों ने नोटिस दिया है। विवादकारी अधिक से अधिक संख्या में आए, इस लोक अदालत का फायदा उठाएं और अपने वाद निस्तारित करें। पिछली बार की लोक अदालत, उस लोक अदालत में जनपद बिजनौर में लगभग 14,000 के आसपास वाद निस्तारित हुए थे एक दिन में, तो इस बार भी हम यह आशा करते हैं कि उसको क्रॉस करेंगे।
2: महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपद की होनहार छात्रा को सांकेतिक रूप से एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। इस दौरान सांकेतिक डीएम के तौर पर छात्रा ने कलेक्ट्रेट में बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं में प्रशासनिक नेतृत्व की भावना और आत्मविश्वास जागृत करना है। बिजनौर से ताल्लुक रखने वाली पूर्व राज्य मंत्री ओमवती देवी का निधन हो गया। वह नगीना विधानसभा से 4 बार विधायक और 1998 में बिजनौर से सांसद रही। 9 मई को हुए उनके निधन से जिले के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। नगीना सांसद चंद्रशेखर और विधायक मनोज पारा सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी इकाई की स्थापना की गई है। इस नई मशीन के आने से अब मरीजों को बड़े चीरे वाली सर्जरी के बजाय छोटे छेद के माध्यम

0: था, उसके अलावा इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते थे, दर्द ज़्यादा होता था मरीज को। अब क्या होगा कि छोटा सा चीरा लगेगा, अगले दिन छुट्टी होगी, खून भी कम बहेगा और इन्फेक्शन के चांस भी कम हो जाएंगे।
1: संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की क्षेत्रीय पोषण सलाहकार नोरा होप ने जनपद बिजनौर के विकास खंड नूरपुर स्थित THR ग्राम के आंगनवाड़ी केंद्र तथा महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय विद्युत प्रेरणा उत्पाद प्लांट का भ्रमण और निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय महिला सशक्तिकरण के लिए इस समग्र मॉडल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इसे एक अद्वितीय प्रेरणादायक और विश्व स्तर पर अनुकरणीय अनुभव बताया। निरीक्षण के दौरान सुश्री नोरा ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा चालित उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, भंडारण, ब्रांडिंग और लाभार्थियों तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण का विस्तार से अवलोकन किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात की सराहना की कि THR प्लांट में महिलाओं की भूमिका केवल श्रमिक के रूप में नहीं बल्कि निर्णायककर्ता, प्रबंधक और उद्यमी के रूप में स्थापित है। सुश्री नोरा ने कहा कि भारत में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत और प्रेरणादायक मॉडल देखा है, जहां महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि परिवर्तन की नेतृत्व करता है। यहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, ब्रांडिंग और सप्लाई चेन के प्रत्येक चरण को जिस आत्मविश्वास और दक्षता से संचालित कर रही है, वह वास्तव में अद्भुत है। उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने यह भी किया कि पिछले वर्ष रोम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा THR प्लांट की कार्यप्रणाली पर एक प्रस्तुति दी गई थी, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पूरे प्लांट का संचालन करते हुए दिखाया गया था।
2: बिजनौर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख है अम्मार रिजवी का।
3: श्रावस्ती में आगामी जनगणना 2027 को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके तहत जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्वगणना के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किए जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मतगणना में लगे कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है। दो चरणों में होने वाली इस प्रक्रिया में सबसे पहले 7 से 21 मई तक स्वगणना होगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपेक्षित तैयारियां समय रहते ढंग से पूरी करें। उन्होंने ये भी बताया कि ये जनगणना पहली बार पूरी तरह से डिजिटल मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें नागरिकों के लिए स्वगणना का भी प्रावधान होगा। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनेगी। श्रावस्ती के जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने तहसील इकौना सभागार में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए। ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे लाभार्थी सरकारी व निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकें। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में अधिकांश पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा चुका है। शेष लाभार्थियों को शीघ्र आच्छादित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। श्रावस्ती में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती द्वारा ग्राम पद्धिया में श्रमिकों के अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को उनके संवैधानिक अधिकारों, श्रम कानूनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहा। श्रावस्ती की जिलाधिकारी ने बताया कि देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा जनपद श्रावस्ती में संध्या संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत दिन भर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का समाधान, विकास कार्यों का निरीक्षण और योजनाओं का लाभ वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। श्रावस्ती में कुपोषित बच्चों के बेहतर इलाज एवं देखभाल के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय में पोषण पुनर्वास केंद्र संचालन किया जा रहा है, जिसमें कुपोषित बच्चों का इलाज सुचारू रूप से किया जा रहा है। NRC में भर्ती बच्चों के अभिभावकों को 50 रुपए प्रतिदिन नाश्ता, दोपहर व रात्रि का भोजन और भर्ती बच्चों को डाइटिशियन के हिसाब से दलिया, खिचड़ी और हलवा उपलब्ध कराया जाता है। NRC के चिकित्सक डॉक्टर गोविंद शुक्ला ने बताया कि केंद्र पर भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों को दवाइयां, चिकित्सा प्रबंधन और विशेष पौष्टिक आहार मुफ्त में दिया जाता है। माताओं और देखभाल करने वालों को बच्चों के उचित खानपान, साफ सफाई और सही देखभाल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। भर्ती बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, वजन और लंबाई की जांच की जाती है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए NRC में एक प्ले एरिया की सुविधा भी है। उन्होंने जनपद वासियों से आग्रह किया है कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, जिससे जनपद का कोई भी बच्चा कुपोषित न होने पाए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव एक दिवसीय जनपद भ्रमण के लिए विकास खंड जमनुहा के अंतर्गत सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर पहुंची। उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में नारी

0: व्यक्ति के सम्मान की रक्षा और महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के प्रति आवाज बुलंद करने के लिए नारी शक्ति वंदन जन आक्रोश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति केवल घर की गृहिणी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की शक्ति है। जब तक नारी सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करेगी तब तक समाज का विकास अधूरा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को बेहतर करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो निश्चित ही समाज सशक्त होता है और राष्ट्र प्रगति करता है। श्रावस्ती की जिलाधिकारी ने विकासखंड जमुहा के अंतर्गत कई गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर चल रही गेहूं खरीद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गेहूं क्रय केंद्र क्रमशः बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समिति लक्ष्मणपुर सिमरहिया, साधन सहकारी समिति लिमिटेड शिकारी चौड़ा और महादेवा नासिरगंज का औचक निरीक्षण कर गेहूं खरीद का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने गेहूं क्रय करने आए किसानों से भी संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया कि किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। गेहूं बेचने आए किसान भाइयों के लिए क्रय केंद्र पर आने जाने का रास्ता और वाहनों के पार्किंग के लिए भी पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि किसानों को कोई असुविधा न होने पाए। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 9:25 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम धरती गाती है। कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए कलाकार निर्देश त्यागी के स्वर में वट सावित्री व्रत पर्व पर विशेष लोकगीत। आपके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं रामकेश, हारमोनियम पर साथ निभा रहे हैं अखिलेश कुमार और बैंजो पर हैं परवेज़।

कार्यक्रम धरती गाती है आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार निर्देश त्यागी के स्वर में वट सावित्री व्रत पर्व पर विशेष लोकगीत।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कलाकार निर्देश त्यागी के स्वर में वट सावित्री व्रत पर्व पर विशेष लोकगीत। आपके साथ ढोलक पर थे रामकेश, हारमोनियम पर साथ निभा रहे थे अखिलेश कुमार और बैंजो पर थे परवेज। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की, वाचन स्वर एवं संकलन विपिन राजपूत का है।
1: नमस्कार श्रोताओं, बात आसपास के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मैं विपिन राजपूत आपके साथ हूं। इन दिनों गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और कई क्षेत्रों में हीट वेव यानी लू का असर देखने को मिल रहा है। तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बाहर काम करने वाले लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। हीट वेव के दौरान शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे चक्कर आना, सिर दर्द, कमजोरी, उल्टी, तेज बुखार और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है हम समय रहते सावधान रहे। दोपहर 12 से 3 के बीच धूप में बाहर निकलने से बचे। यदि किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़े तो सिर को कपड़े, टोपी या छाते से ढककर निकले। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने और बार बार पानी पीते रहें। गर्मी के मौसम में अधिक तली भुनी चीजों से बचें और मौसमी फल, दही, छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, ORS जैसे पेय पदार्थों का सेवन करें। यदि किसी व्यक्ति को तेज बुखार, घबराहट, सांस लेने में परेशानी या बेहोशी जैसी समस्याएं हो तो उसे छांव या ठंडी जगह पर ले जाएं। शरीर को ठंडा करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क करें।
2: आपका नाम?
3: पंकज कुमार सैन मेरा नाम है।
2: इस तेज गर्मी और लू में काम करना कितना मुश्किल होता है?
3: बड़ा मुश्किल होता है इस तेज गर्मी और लू में काम करना। और कभी कभी तो लू इतनी तेजी से थपेड़ा देती है, इतने तेजी से हरकत में आते हैं कि वो अक्सर जो है कभी कभी चक्कर भी कभी कभी बहुत तेजी से आने लगते हैं।
2: आप खुद को लू से बचाने के लिए क्या उपाय करते हैं?
3: लू से बचाने के लिए तो कोशिश करता हूँ कि जितना पानी पिया जाए उतना अच्छा है। कई बार तो ऐसा होता है कि नींबू थोड़ा सा जो है चीनी का घोल मिला के पीने से भी काफी अच्छा लगता है, शरीर को काफी ठंडक मिलती है।
2: काम के दौरान आपको सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है?
3: काम के दौरान बहुत ज्यादा जब लू होती है और गर्मी से शरीर थक जाता है तो कभी कभी सामान बेचते बेचते इतना कठिन हो जाता है किसी कस्टमर को सामान देना कि हाथ से पसीने तक आने लगते हैं। क्योंकि हवाएं तेज चलती हैं, लू तेज चलती हैं तो ग्राहक भी थोड़ा कम आते हैं, इससे आवाजाही भी कम रहती है।
2: गर्मी में काम करते हुए आप अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखते हैं?
3: चारों की अपेक्षा कर गर्मी में ज्यादा अपने आप पे ध्यान देना पड़ता है। वैसे तो मेरी दिनचर्या में शामिल है कि मैं सुबह रोज सुबह 7 करीब अपनी दुकान पर आ जाता हूँ। दोपहर में जब भीषण गर्मी पड़ती है, भीषण लू चलती है तो करीब लगभग दोपहर में 12:30, 1 मैं घर आराम करने के लिए चला जाता हूँ। वही शाम को 5 जो है सुचारू रूप से अपनी दुकान पर वापस आ जाता हूँ। गर्मी से बचने के लिए अक्सर मुझे ये सब चीज़ें अपने जीवन में करनी पड़ती हैं।
1: चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अजहर से बातचीत।
2: हीट वेव या लू क्या होती है और इसके मुख्य लक्षण क्या है?
4: जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इतना बढ़ा हुआ तापमान लगातार 24 से 48 घंटे तक रहता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी लोगों का बढ़ने लगता है, उसी को हम हीट वेव कहते हैं या लू लगना आम भाषा में कहते हैं।
2: हीट वेव लू से बचाव के लिए आम जनता को क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
4: हीट वेव से बचाने के लिए जो है जहां पर रह रहे हैं अपने स्थान को जो है ठंडे स्थान पर रहें, कोशिश ये करें अगर बाहर निकलने की जरूरत भी पड़ती है तो बहुत ज्यादा पानी पीकर घर से बाहर निकले, पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, या ताजे फल फ्रूट जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है जिसे मौसम के हिसाब से आते हैं, तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी और लस्सी, छाछ और आम का पन्ना, इस तरह की चीजें जो है अगर इस्तेमाल करके घर से निकलेंगे तो लू से बचाव का बहुत अच्छा उपाय है।
2: अगर किसी को लू लग जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए?
4: अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो उसमें लक्षण के हिसाब से देखते हैं हम कि अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हम उसे कोल्ड स्पंजिंग करेंगे, यानी तौलिया वाला कपड़ा लेकर और सादे पानी से या ठंडे पानी से कपड़ा भिगोकर उसके जिस्म को, पूरे जिस्म को स्पंजिंग करेंगे और टेम्परेचर उसे कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरे लक्षणों में जैसे उल्टी लगना, जी मचलाना या बेहोशी तारी हो जाना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में मरीज को फौरन अस्पताल लेके जाना होगा, और इस कंडीशन मरीज अगर है, होश में है, तो उसे घर पर ही ORS का घोल पिलाएंगे और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। उसे ठंडे स्थान पर रखेंगे, सीधा लिटाकर रखेंगे, आसपास ज्यादा भीड़ नहीं लगाएंगे। यही उपाय हमें करना है।
2: PSC स्तर पर हीट वेव से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं?
4: PSC स्तर पर हमारे यहाँ 2 बेड का इंतजाम है। अगर कोई सीरियस मरीज इस तरह का आ जाता है तो यहाँ हम उसे फ्लूइड्स लगाते हैं। पहले अगर देखते हैं इस कंडीशन में है मरीज के मुंह से ले सकता है ओरली, तो ORS का यहाँ घोल देते हैं, कोल्ड स्पंजिंग वगैरह कराते हैं, टेम्परेचर उसका नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी अगर देखते हैं टेम्परेचर कम नहीं हो रहा या उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं, दस्त भी कभी कभी इसमें आने लगते हैं, तो हमें यहाँ फ्लूड देना पड़ता है, ड्रिप लगानी पड़ती है। उसके लिए हमारे पास यहाँ PSC पे 2 बेड का इंतजाम है और हमने एक जिंक एंड ORS कॉर्नर भी बना रखा है, इसीलिए कि डायरिया के या लू के मरीज आते हैं तो उसके लिए हम ORS देते हैं।
2: क्या गांव स्तर पर भी कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है?
4: गाँव स्तर पर आशाओं के लेवल से हमने ORS के पैकेट बंटवा दिए हैं और आशाओं को ट्रेंड भी कर दिया है कि इस तरह के मरीजों को किस तरह से हमें डील करना है। अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो आशाओं को भी ये हिदायत दी गई है कि उन्हें PSC पर लेकर आना है, ऐसे मरीजों को PSC पर लेकर आना है।
2: हीट वेव के दौरान खान पीन में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए?
4: खान पीन में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल एक तो ज़्यादा करें, दूसरे ठंडे स्थानों पर रखें, और पानी वाले फ्रूट्स ज्यादा इस्तेमाल करें, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, लस्सी, छाछ, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करें। और हीट वेव से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय आम का पन्ना जो है वो इसमें बहुत अच्छा काम करता है, उसको बनाकर मरीजों को इस्तेमाल करें।
2: अंत में आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: आम जनता के लिए बस यही संदेश है कि सतर्क रहें, हीट वेव के लक्षणों को जानें, लक्षण देखते ही उसी के हिसाब से अपना इलाज करें, या ज्यादा खतरनाक लक्षण है तो फौरन PSC पर पहुंचे।
1: वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर PR नायर बिजनौर से बातचीत।
5: सर, हीट वेव को स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना गंभीर माना जाता है?
6: हीट वेव यानी अत्यधिक गर्मी स्वास्थ्य के लिए बेहद गंभीर स्थिति मानी जाती है। लगातार अधिक तापमान रहने से शरीर का तापमान नियंत्रण तंत्र प्रभावित हो जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थितियां पैदा हो सकती है।
5: इस वर्ष जिले में हीट वेव की क्या स्थिति बन रही है और स्वास्थ्य विभाग के बाद कितना तैयार है?
6: इस वर्ष तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है और मौसम विभाग के द्वारा भी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी गंभीरता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
5: जिले के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में क्या विशेष तैयारियां की गई हैं?
6: सभी अस्पतालों और समाधि स्वास्थ्य केंद्रों में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए विशेष बेड आरक्षित किए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में ORS, आवश्यक दवाइयां, IV फ्लूइड्स और बर्फ की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। चिकित्सा कर्मियों को हीट स्ट्रोक के मरीजों के त्वरित उपचार के लिए प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही इमरजेंसी सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।
5: ग्रामीण क्षेत्रों में जहां संसाधन सीमित होते हैं वहां क्या विशेष नीति अपनाई जा रही है?
6: ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं, ANM और स्वास्थ्य टीमों की माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गांव में घर घर जाकर लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और लू से बचाव के उपचार बताए जा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी दवाइयां और ORS की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जरूरत पड़ने पर गंभीर मरीजों को उच्च स्वास्थ्य केंद्रों पर रेफर करने की व्यवस्था भी बनाई गई है।
5: लू लगने के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिन्हें आम लोग पहचान सकते हैं?
6: लू लगने के शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, अत्यधिक पसीना या पसीना न आना, चक्कर आना, कमजोरी, सिरदर्द, उल्टी, बेचैनी, शरीर में ऐठन और बेहोशी जैसी स्थिति शामिल है। यदि किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई दें, तुरंत सावधानी बरतनी चाहिए और चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए।
5: इन लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है।
6: बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, मजदूरों, खेतों में काम करने वाले लोगों, हृदय, मधुमेह और उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
5: क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई हेल्पलाइन नंबर या विशेष सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है?
6: स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आम जनता को जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी गई है। साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और एम्बुलेंस 108 को भी सक्रिय रखा गया है ताकि जरूरतमंद मरीजों को तुरंत सहायता मिल सके।
1: हीट वेव से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी हमें सुरक्षित रख सकती है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तो यह था हमारा आज का कार्यक्रम बात आसपास की, जिसमें हम बात कर रहे थे हीट वेव लू से बचाव के संबंध में। इसी के साथ बात आसपास की कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल नए अंक के साथ आप किस सेवा में उपस्थित होंगे। आप विपिन राजपूत को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
0: बात आसपास की, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। वाचन स्वर एवं संकलन था विपिन राजपूत का। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुहाना सफ़र।

0: आवाज़ों का भी अपना अलग अंदाज होता है, हर शब्द में आपके लिए कुछ ना कुछ खास होता है।
1: कभी ये आपको मौसम का मिजाज बताती हैं, तो कभी देश दुनिया का हाल सुनाती हैं।
0: कभी कभी ये आने वाले दिनों की आहट भी सुनाती हैं, तो कभी अपनी तरंगों पर बैठाकर हमें यादों की दुनिया में ले जाती हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, यादों की उसी दुनिया में ले जाने आज फिर आपके साथ हैं हम दो साथी सुहाने। मैं नमित
0: और मैं फरीना,
1: करते हैं आपका स्वागत आकाशवाणी की यादों के कारवां में।
0: और आज की यादों के कारवां पर ले जाने से पहले आपको बता दें कि आज हम आपको फिर से लेकर चल रहे हैं साल 2019 के सुहाने सफर में।
1: फरीना, 2019 की यादों की सुहानी शुरुआत करने से पहले जरा पहले ये बताओ कि आज से ठीक 19 दिन बाद वो कौन सा दिवस आने वाला है? बड़ा इम्पोर्टेंट है।
0: दिन बाद यानी 5 जून की आप बात कर रहे
1: हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, ये दिन है जब पूरी दुनिया एक साथ मिलकर मनाती है विश्व पर्यावरण दिवस।
1: बिल्कुल सही, मैंने तुमसे ये सवाल इसलिए किया था फरीना क्योंकि आज हम साल 2019 के सफर में जो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ना, वो इसी दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं।
0: हाँ, क्यों नहीं, ये तो हमारे पर्यावरण के प्रति सजगता और सम्मान की बात होगी।
1: श्रोताओं, साल 2019

0: 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी वायु प्रदूषण पर नियंत्रण। इसको ध्यान में रखकर आकाशवाणी ने कई विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए थे।
1: जनमानस के बीच ज्यादा से ज्यादा जानकारी फैलाने के उद्देश्य से आकाशवाणी ने देश के सूचीबद्ध लगभग 102 केंद्रों के माध्यम से जागरूकता अभियान का प्रसारण किया, जिससे जागरूकता सिर्फ बातों में ही न रहे बल्कि देश की जनता के व्यवहार में भी उतर सके।
0: इसके साथ साथ 29 अगस्त से 14 सितंबर तक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का सीधा प्रसारण करते हुए आकाशवाणी ने पर्यावरण के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई।
1: और नमित जी, पर्यावरण के प्रति इसी सजग सोच को सुरों की भाषा भी मिली जब भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 2019 के इस दिवस की थीम वायु प्रदूषण नियंत्रण पर आधारित एक मधुर गीत पेश किया।
0: फरीना, ये गीत सिर्फ सुरों और शब्दों का संगम नहीं, स्वच्छ हवा के लिए एक खूबसूरत संदेश भी था।
1: हाँ, और इसकी हर सांस को खुलकर जीने का संदेश बस हर दम यही कह रहा था।

0: गायक कलाकार शान सुनिधि चौहान और शंकर महादेवन के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गीत।
1: और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अब साल 2019 की सुहानी यादों में। श्रोताओं, साल 2019 में

0: जम्मू कश्मीर काफी सुर्खियों में रहा क्योंकि ये साल जम्मू कश्मीर में नए बदलाव का दौर था
1: और बदलाव की ये आहट थी जम्मू कश्मीर में रेडियो प्रसारण के नए अध्याय की।
0: और ये अध्याय लिखा गया 31 अक्टूबर 2019 में प्रसार भारती बोर्ड की 157वीं बैठक में।
1: इस बैठक में ये तय किया गया साथियों कि अब रेडियो कश्मीर एक नए नाम के साथ अपनी आवाज को आगे बढ़ाएगा,
0: एक ऐसा नाम जो अपनी बेमिसाल 90 वर्षों की यात्रा की कहानी लिख रहा था और वो नाम है आकाशवाणी।
1: फरीदा, इसके बाद से ही रेडियो जम्मू, रेडियो श्रीनगर और रेडियो लेह एक नई पहचान के साथ चमके।
0: और श्रोताओं, ये नए नाम थे आकाशवाणी जम्मू,
1: आकाशवाणी श्रीनगर
0: और आकाशवाणी लेह। नाम बदले पर आवाज का जादू वही सुहाना।
1: श्रोताओं, इसी वर्ष 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से जुड़ा एक ऐतिहासिक फैसला भी हम सबके सामने आया था।
0: हाँ, 5 अगस्त 2019 को वो दिन हमारी यादों में अब तक जिंदा है जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया और जम्मू कश्मीर लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र प्रशासित प्रदेश बना दिया गया।
1: ऐसे समय में आकाशवाणी ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हर जरूरी जानकारी श्रोताओं तक पहुँचाई और खास तौर से कश्मीरी, डोगरी और लद्दाखी भाषाओं में भी इससे जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाई।
0: श्रोताओं, भले ही खबर दिल्ली से चली हो लेकिन देश के हर कोने कोने तक लोगों ने अपनी भाषा में भरोसे के साथ सुना आकाशवाणी से।
1: फरीना, ये साल 2019 का काफी संवेदनशील मुद्दा रहा था।
0: हाँ, और इस मुद्दे की गूंज की दौर सिनेमा जगत ने भी सुनाई थी जब बॉलीवुड ने इसी मुद्दे पर बनाई फिल्म मुद्दा 370 जम्मू एंड कश्मीर। तो इसी का गीत अब श्रोताओं को सुनवा दे।
1: बिल्कुल फरीना, बड़ी ही इम्पोर्टेंट फिल्म थी और क्योंकि माहौल ऐसा बन गया था उस समय जम्मू कश्मीर में, ऐसा कुछ हुआ था, धारा 370 हटाई गई थी उसी पर आधारित मुद्दा 370 जम्मू एंड कश्मीर फिल्म रिलीज की गई थी। तो इसी फिल्म का गीत आइए श्रोताओं सुनते हैं।

0: फिल्म मुद्दा 370 से अभी आप सुन रहे थे गायक कलाकार शान की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत। संगीत राहुल भट्ट का था और इस गीत के बोल लिखे थे शाहिद अंजुम ने। श्रोताओं, आकाशवाणी हमेशा वक्त के साथ चला है, यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, समय की धड़कनों को सुनना और उन्हें अपनी आवाज़ देना।
1: हाँ, कभी प्रकृति के संरक्षण का संदेश बनकर तो कभी समाज में नई सोच जगाने की प्रेरणा बनकर। और 30 जून 2019 को जब मन की बात में एक खूबसूरत और सुंदर विचार देश के सामने आया तो सब ने जाना।
0: श्रोताओं, मन की बात की इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पूरे देश को पुस्तकों के सम्मान में एक मंत्र दिया, स्वागत पुष्पों से नहीं पुस्तकों से, यानी नो बुके जस्ट अ बुक।
1: यानी किसी के भी स्वागत में सम्मान की खुशबू फूलों से आगे बढ़कर ज्ञान के उपहार तक पहुंचानी थी।
0: और मन की बात के इस विचार के उपहार की महक आकाशवाणी की लहरों से हर किसी के मन तक पहुंची।
1: इतना ही नहीं नमित जी, आकाशवाणी ने 23 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय किसान दिवस पर अपने स्टूडियो के द्वार पर उन मेहनतकश हाथों के लिए खोल दिए जिनकी तपस्या हमारे खेतों में हरियाली बनकर लहलहाती है।
0: फरीना, इसमें हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों ने अपने अनुभव साझा करते हुए सफल खेती के नए नए रास्ते बताए और इसके साथ साथ राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किसानों का अभिनंदन भी किया गया।
1: यानी नमित जी, माइक्रोफोन की यादों के उस पार सिर्फ यादें और आवाजें नहीं है बल्कि अनुभव, प्रेरणा और मिट्टी से जुड़ाव की सच्ची खुशबू भी है। तो आइए अपने कार्यक्रम को एक और सुरीली खुशबू से महका दें।

0: श्रोताओं, अभी आपने साल 2019 में आई फिल्म कलंक से ये गीत सुना। साल 2019 एक ऐसा साल था जिसने कभी हमें गर्व के पल दिए तो कभी इतिहास की उन यादों को फिर से हमारे सामने ले आया, जिसने देश और जिसे देश को देश जो आज तक नहीं भूला है। और जिस पल की हम बात कर रहे हैं वो पल है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, क्योंकि उस साल इस हत्याकांड की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी।
1: 13 अप्रैल सन 2019 को समाचार सेवा प्रभाग और उसके क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने इस वर्षगांठ के हर आयोजन को कवर किया था। श्रोताओं, चाहे वो अमृतसर से प्रसारित विशेष समाचार हो या श्रद्धांजलि समारोह हो या फिर स्मारक सिक्के जो उस वक्त चलाए गए या डाक टिकट जारी करने की महत्वपूर्ण जानकारी हो।
0: इतना ही नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं वर्षगांठ पर आकाशवाणी ने एक विशेष द्विभाषी कार्यक्रम का भी प्रसारण किया, जिससे नई पीढ़ी भी अपने देश के बलिदान और गौरव को महसूस कर सके और आज़ादी की लौ प्रज्वलित करने वाली इस याद को हम आज तक भी भुला नहीं सके हैं।
1: श्रोताओं, इस साल जब दिसंबर माह ने नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया तो इसी क्रम में आकाशवाणी ने एक नए टॉक शो की शुरुआत की। इस टॉक शो का नाम था मंथन फैसलों का।
0: जब समय नए फैसलों की दौर से गुजर रहा था तब आकाशवाणी ने इस टॉक शो के जरिए नागरिक संशोधन अधिनियम सहित राष्ट्रीय विषय पर विशेष चर्चाएं इंटरव्यू प्रसारित किए। इस तरह आकाशवाणी ने हर समय अलग अलग पहलुओं को समझने का श्रोताओं को एक नया मंच दे दिया था।
1: श्रोताओं, साल 2019 के सुहाने सफर में कहीं इतिहास की गूंज सुनाई दी तो कहीं बदलाव की आहट।
0: कहीं आपने सुनी देश दुनिया की नई शुरुआत तो कहीं आप पर हुई सुरों की बरसात। तो आइए श्रोताओं, 2019 की यादों के सदके सुनते हैं इसी साल आई फिल्म एसपी चौहान का ये मधुर गीत पलक मुछल और कमाल खान की आवाज में।

0: श्रोताओं कार्यक्रम सुहाना सफ़र के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे साल 2019 में रिलीज़ हुई फिल्म एसपी चौहान का ये खूबसूरत सा गीत पलक मुच्छल और कमाल खान की आवाज़ में।
1: श्रोताओं साल 2019 जाते जाते हमें कुछ एक ऐसी महामारी भी दे गया जिसका असर दुनिया में देखने को मिला, और ये बीमारी थी कोविड-19, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में हुई। और इसके सबसे पहले मरीज जो देखे गए वो साल 2019 में ही देखे गए।
0: इस वैश्विक महामारी के बारे में बस क्या ही कहें फरीना, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी थी। पहला मामला 1 दिसंबर 2019 को वुहान चीन में, जैसा कि फरीना ने आपको बताया श्रोताओं, और WHO की पुष्टि थी 31 दिसंबर 2019 को चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्रकोप की सूचना दी थी। WHO ने 11 फरवरी साल 2020 को इस संक्रामक बीमारी को आधिकारिक तौर पर कोविड-19 का नाम दिया गया।
1: और श्रोताओं भारत में कोविड-19 का पहला मामला देखने को मिला अगले साल यानी साल 2020 में केरल राज्य में। श्रोताओं इसके साथ साथ ही साल 2019 में ही भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया। इस अहम फैसले में भारत सरकार ने ये फैसला

0: किया कि बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत किया जाए, और यही सोचते हुए भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बड़े बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बना दीजिए।
1: इस ऐतिहासिक कदम के बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह गई थी। श्रोताओं,
0: और नमित जी, अब वक्त क्या कह रहा है?
1: वक्त देखिए हमें और बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा है फरीना, तो अपने कार्यक्रम को धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले चलते हैं। साथियों, ये थी साल 2019 की आकाशवाणी की यादों की सुहानी सौगात।
0: फिर होगी यादों की सुनहरी झलकियों के साथ आपसे एक और मुलाकात।
1: फिर आएंगे कुछ और खूबसूरत लम्हों की यादें लेकर,
0: यादों से सजे किसी नए सुहाने मोड़ पर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और फरमाइशी व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी नमित राज
1: और मेरा यानी फरीना का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे एक फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है, आप सभी जानते हैं, और इसमें हमारे सभी श्रोता फरीना बहुत ही उत्साह के साथ इसमें हिस्सेदारी लेते हैं और बहुत काफ़ी सारे मैसेजेस भी हमें प्राप्त होते हैं, पत्र भी प्राप्त होते हैं। तो वो तरीका फरीना हमारे श्रोताओं को बता दीजिए जिस तरीके से व्हाट्सएप संदेश हमें भेज सकते हैं हमारे श्रोता।
1: नमित जी, वैसे तो हमारे श्रोता ज़्यादातर जानते ही हैं, लेकिन कुछ नए श्रोता भी जो हमसे जुड़ना चाहेंगे तो हम उनके लिए बता देते हैं नंबर, जिस नंबर पे उनको अपना फरमाइशी गीत सुनने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ये नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर बता देते हैं 9457078288। इसके साथ साथ श्रोताओं, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र के माध्यम से जो पता है जिस पर आपको अपना फरमाइशी गीत लिखकर भेजना है, वो पता है कार्यक्रम गीत तुम्हारे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। तो नमित जी, ये तो हो गया वो जरिया जिसके जरिए हमारे श्रोता हमसे जुड़ेंगे।
0: जी,
1: तो कार्यक्रम का पहला गीत जो हम सुनवा रहे हैं,
0: पहला गीत फरीना, हमारे पास जो फरमाइश हमें मिली है वो मिली है कुली नंबर 1 फिल्म के गीत की, और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश जो की है वो ज़िला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से की है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप ने।
1: कार्यक्रम का अगला मैसेज हमें भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। ये मैसेज हमें आया है सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा नारंग और सुरेश नारंग का।
0: एयरपोर्ट रोड वन्ना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से आप हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी। एक अन्य मैसेज हमें मिला है मारहरा दरवाज़ा एटा से, फरमाइश करता है नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी।
1: ये मैसेज हमें भेजा है, ये भेजा है हमें टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से, आप हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, आसमा श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर।
0: जमानिया जिला गाजीपुर से फरमाइश करता है सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल।
1: ये मैसेज हमें भेजा है, आप हैं फुलोंग निज़ामाबाद तेलंगाना से, एम ए वहीद रुमानी, मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी।

0: मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल। ये मैसेज हमें भेजा है जसपुर रोड उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाजत, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिना नूर ने।
1: शाही मार्केट सिहारा ज़िला बिजनौर से फरमाइश करते हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात अदीब और कादिर चौधरी। और इसी गीत को सुनना चाहा है वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने।
0: ये मैसेज हमें भेजने वाले हैं अपने फरमाइश गीत के लिए नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीनंद देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी।
1: और इस गीत की फरमाइश के लिए अंतिम मैसेज दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से फरमाइश करता है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। तो लीजिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं कुली नंबर 1 फिल्म से पूर्णिमा और कुमार सानू के स्वर में ये खूबसूरत सा गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म साजन से। आवाज़ है अनुराधा पौडवाल की और इस गीत के लिए फरमाइशी करता है गांव नथाना पंजाब से आप हैं हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता। इसी गीत को सुनना चाहा है मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान ने। ये मैसेज हमें आया है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से। आप हैं हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभु लाल बागरी। ये मैसेज करने वाले हमारे श्रोता हैं कस्बा उगैती से देवेंद्र कुमार गुप्ता धीरज कुमार गुप्ता पंकज बजाज प्रिंस कुमार प्रशांत कुमार कार्तिक गुप्ता और निर्भया गुप्ता।
1: नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से फरमाइश करता है पीएस नावकर निर्मला नावकर विशाल नावकर। मलकापुर से नारायण इंगले राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर। ग्राम जुझैला थाना शिवाला कला बिजनौर से भी हमें व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ है। ख्वाहिशमंद हैं राशिद अंसारी परवीन जहां निशात आयशा साइना महवेश मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय और प्रांचल राय। एक अन्य मैसेज इसी गीत की फरमाइश के लिए जनकपुरी सहारनपुर से भी हमें प्राप्त हुआ है। फरमाइश करते हैं जॉन डिकेस्ट्रो रोजी डिकेस्ट्रो पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो।
0: इसी गीत के लिए ये मैसेज हमें भेजा है मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी कमल किशोर साह का। इसी गीत को पसंद किया है बागपत उत्तर प्रदेश से आप हैं संजय ढिंगिया नमन ढिंगिया अपार ढिंगिया। बालकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा प्रहलाद राजेंद्र वर्मा सूरज कुशल वर्मा हमें मैसेज कर रहे हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। ये मैसेज आया है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का। ये मैसेज करने वाले हमारे श्रोता हैं कुम्हार गली कोलगांव से पांडु चंदन उषा चंदन राड़ी चंदन प्रतीक्षा चंदन अभिषेक चंदन सार्थक चंदन प्रथमेश चंदन संतोष चंदन पांडु रंग कुम्हार।
1: सब्जी मंडी झज्जर से आप हैं बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया आपने भी यही गीत सुनने की फरमाइश की है। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से फरमाइश करता हैं आफ्ताब अंसारी रियाज अंसारी मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से भी हमें व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और महराज जहां का।
0: और इसी गीत के लिए ये पत्र हमें आया है कंडला बंदरकच से जगदीश जोहरी पूजा जोहरी और ज्योतिष का। गांधीग्राम से आप हैं प्रवीण सोनी अहमदाबाद से हैं कंचम सोनार और कुसुम। ये पत्र हमें भेजा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा नवनीत राय अमनदीप अनिल शर्मा। उनके साथ हैं कालका से शुभचंदन बजाज बिट्टा बजाज साहिल मेन रोड तेलहारा से आप हैं प्रकाश पोहारकर नर्मदा पोहारकर अनिल पोहारकर महेंद्र पोहारकर सुनील पोहारकर साहिल पोहारकर सुजाता पोहारकर। इंदिरा बिहार रायगढ़ से हैं वसीम अकरम नूरजहां डब्ल्यू अकरम नूरजहां वली

उला अकरम नूर जहां राजनाथ गांव से उनके साथ हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जे लो रायगढ़ से आप हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, अदीबा तिवारी। तो आइए इन सब की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म साजन में अनुराधा पौडवाल को।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म बॉबी से। लता मंगेशकर के गाए इस गीत को सुनना चाहते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा और हर्ष आहूजा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, सौरभ डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा।
4: इसी गीत के ख्वाहिशमंद हैं मोहल्ला अलवाइयान शेरकुर बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सादरानी, हीना कौसर। ये पत्र हमें भेजा है चांदूर बिस्वा तालुक नांदुरा जिला बुंडाणा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खट से, रक्षा ताई खट से, ललिता संजना खट से, गणेश और कार्तिक खट से। उनके साथ हैं मालती चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी। ये पत्र भेजा है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार ने, दिल्ली शहर मोरी गेट से।
3: दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद से फरमाइश करता मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। रेलवे रोड गंजडुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और सरिता गौतम।
4: सादुल शहर से आप हैं ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। दौलतबाग मुरादाबाद से ये पत्र हमें भेजा है जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी ने। श्री गंगा नगर से आप हैं बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा भी इस गीत के लिए फरमाइश करते हैं।
3: मोहल्ला अफगानान शेरकोट से ये संदेश हमें मिला है, फरमाइश करता है नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसंतराव भोजने और निवृत्ति आडोकार।
4: इसी गीत के लिए फरमाइश करता है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, राम देवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। ये मैसेज हमें भेजा है मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद से गुलाम हसन, निषाद बानो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, साबरा खातून, शहजादी, शराफत अली, अब्दुल रहमान, बिटिया, मदीहा ने। ये मैसेज करने वाले हमारे श्रोता हैं ज्योति नगर नौखा राजस्थान से पुखराज, बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का ने।
3: और इस गीत की अंतिम फरमाइश हमें लिख भेजी है श्रोताओं, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और RK राजा ने। तो आप सबकी पसंद पर ये गीत हम सुनवाते हैं फिल्म बॉबी से, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये जरूरी संदेश।

अभी आप सुन रहे थे आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 11 बज रहे हैं, अब आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। श्रोताओ, आज चित्रपट में हम आपके लिए कुछ खास, कुछ अलग अंदाज लेकर आए हैं, और वो अंदाज क्या है चलिए आपको बता देते हैं। श्रोताओ, ये फिल्मी दुनिया कितनी दिलचस्प होती है ना, कभी कहानियाँ बदल जाती हैं, कभी चेहरे बदल जाते हैं, कभी दौर बदल जाते हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनके नाम समय के साथ फिर से लौट आते हैं। नई फिल्मों में, नए अंदाज में, मानो पुराने एहसासों को फिर से कोई नई धड़कन मिल गई हो। तो आज चित्रपट को हमने सजाया है पुरानी और नई फिल्मों के कुछ ऐसे ही खूबसूरत गीतों से, जिन फिल्मों के नाम तो एक जैसे हैं लेकिन रंग, अंदाज और एहसास बिल्कुल अलग। तो कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सौदागर से, जिसको आवाज़ दी है कविता कृष्णमूर्ति, सुखविंदर और मनहर उदास ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में इस गीत को रचा है गीतकार आनंद बख्शी ने।

वैसे हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि कार्यक्रम का अगला गीत हम उन्हें कौन सी फिल्म से सुनवा रहे हैं, क्योंकि हमने बता ही दिया था कि आज का चित्रपट केंद्रित रहेगा उन फिल्मों पर जिनके नाम सेम रहे लेकिन वक्त अलग रहा। तो कार्यक्रम का अगला गीत भी फिल्म सौदागर से लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसका गीत और संगीत बनाया है रविंद्र जैन ने।

0: श्रोताओ अपना साथ यूं ही बनाए रखिएगा, हम आते हैं अभी एक छोटे से संदेश के बाद।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और श्रोताओं कार्यक्रम की अगली पेशकश जिससे ये कार्यक्रम सजने जा रहा है वो है नए पुराने रंगों की एक खूबसूरत जोड़ी के गीत, जिसको हमने एक ही नाम की फिल्मों से लिया है। ये दोनों गीत अलग अलग दौर की फिल्मों से है और दिलचस्प बात यही है कि दोनों फिल्मों के नाम एक ही हैं। तो आइए एक और पुराने दौर की सादगी और मिठास और दूसरी ओर नए जमाने की धड़कनों का अंदाज सुनते हैं इन दोनों गीतों में। तो पहला गीत जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शंकर जयकिशन के साज में, शैलेंद्र के लिखे गीत को फिल्म जानवर से।

श्वेता, अब चित्रपट में गीतों की महफिल आगे बढ़ रही है एक और दिलचस्प जोड़ी के साथ, क्योंकि आज हम चित्रपट को पेश कर रहे हैं अलग अंदाज में अपने नए और पुराने पसंद वाले गीतों के श्रोताओं की पसंद का ख्याल रखते हुए। तो हमारे अगले दोनों गीत का जो अंदाज है वो भी यही है, और इत्तफाक से ये दोनों फिल्में जिनका नाम अंदाज ही है उनके गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। दोनों अपने अपने दौर की अच्छी फिल्में रही हैं, कहीं पुराने दौर की नरमी और ठहराव है तो कहीं नए जमाने की चमक और चंचलता है, यानी नाम वही और एहसास बिल्कुल अलग अलग अंदाज में। तो कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म अंदाज से कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में नदीम श्रवण के संगीत में इस गीत को लिखा है समीर ने।

श्रुता, वाकई में जिंदगी एक सुहाना सफर है और किसी ने नहीं जाना कि कल क्या होगा। और आज जैसे आपको नहीं पता कि अगला गीत कौन सा सुनवा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये गीत हमने सुनवाया था आपको अंदाज फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत और शंकर जयकिशन के संगीत में इस गीत को आवाज दी थी आशा भोसले ने। तो कार्यक्रम की अगली दो जोड़ियां फिर से आपके सामने हैं, जो हैं फिल्म खामोशी से, यानी बात होगी अब खामोशी की, उस खामोशी से जो कभी आंखों से बोलती है, कभी सुरों में डलकर दिल की आवाज़ बन जाती है। हमारे अगले दोनों गीत जो हैं अलग अलग दौर की खामोशी फिल्मों से हैं, नाम एक लेकिन एहसास अपने अपने समय के रंगों में रंगे हुए। तो पहला रंग आपको चढ़ाते हैं फिल्म खामोशी से, हेमंत कुमार की संगीत और गुलजार के लिखे इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में फिल्म खामोशी से ये गीत आपने सुना, जिसकी धुन तैयार की थी जतिन ललित ने। श्रोताओं, यकीनन हमें लग रहा है कि अब आपकी धड़कनें भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने लगी होंगी कि हमारी इस महफिल की आज की अगली पेशकश कौन सी है। तो जनाब, अपनी धड़कनों को धड़कने दीजिए, क्योंकि अब की बार बारी है धड़कन नाम की फिल्मों से जुड़े गीतों की। अलग अलग दौर, अलग अलग दिल की धड़कन, लेकिन धड़कनों को छू लेने वाला संगीत। बस एक प्यार की हल्की सी आहट है तो कहीं जज्बातों की खूबसूरत धड़कन। तो चलिए चलते हैं

धड़कन फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार को, गीत संगीत था रवि का। कार्यक्रम का अगला गीत भी धड़कन फिल्म से अभिजीत अलका याग्निक के युगल स्वर में, शब्द रचना समीर की है और संगीत रचना नदीम श्रवण की।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली पेशकश, क्योंकि अब धीरे धीरे हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, तो कार्यक्रम के अंत में हमने ली है जोड़ियां फिल्म चलते चलते से। अभिजीत की आवाज़ में, आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, और फिल्म का नाम चलते चलते।

श्रोताओं, वक्त आ पहुंचा है आज की खूबसूरत महफिल के आखिरी गीत का। और जोड़ी हमने बता ही दी थी कि हमने जो आखिरी जोड़ियां ली हैं वो ली हैं चलते चलते फिल्म। आज चलते चलते हमने नए और पुराने दौर के कई रंग देखे, कई एहसास सुने, तो अब यही चलते चलते फिल्म का गीत हमारी संगीत यात्रा की आखिरी पेशकश बन गया है।

श्रोता अमित खन्ना के लिखे गीत, बप्पी लहरी के संगीत और किशोर कुमार की आवाज़ में चलते चलते गीत के साथ ही आज की इस कार्यक्रम का समापन अब यहीं हो रहा है। उम्मीद है आपको आज के चित्रपट में नई और पुरानी फिल्मों की ये खूबसूरत जोड़ियां ज़रूर भाई होंगी और आपके दिल को छू हो गई होंगी। फिर मुलाकात होगी गीतों, यादों और सुरों की महफिल में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद से। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बज रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की।

कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम जिंदगी लाइव सुनिएगा अब से कुछ ही देर में यानी 12:05 पर। कार्यक्रम में आज आपसे लाइव बातचीत होगी हाइपरटेंशन द साइलेंट किलर विषय पर, तो कीजिएगा मैसेज हमारे नंबर 9457078288 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में भगवती प्रसाद पोखरियाल के स्वर में गढ़वाली लोकगीतों का आनंद लीजिएगा 1:45 पर। हमारी इसी सभा के अंत में 2:30 पर साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही गीतकार आज केंद्रित होगा मशहूर गीतकार समीर पर।

महिला जगत में आज क्रम रहेगा आदि आबादी से, और सजना है मुझे का जिसमें आकांक्षा अग्रवाल से सुनीति आर्या की बातचीत सुनिएगा। साथ ही मेरी पाकशाला होगी और चर्चा रहेगी डेंगू से बचाओ जागरूकता ही सुरक्षा विषय पर। संध्या 5 बजे सुनिएगा आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित विशेष कार्यक्रम रिश्ता ये खास है।

युववाणी युवा साथियों का ये पसंदीदा कार्यक्रम आप सुनेंगे रोजाना की तरह ही शाम 5:15 पर। कार्यक्रम में आज की सौगातें होंगी, कुछ खास है आज गीत आपके नाम, स्क्रैप बुक, बूस्टर और साथ ही आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। किसान भाई अपना लोकप्रिय कार्यक्रम सुनेंगे अपने निर्धारित समय यानी संध्या 6:05 पर। कार्यक्रम में आज लोकगीतों व रागनियों के सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी के साथ सुनिएगा राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर चर्चा।

संध्या 7:32 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रुचि अग्रवाल के स्वर में कुछ भजन। कार्यक्रम विविधा में वार्ताकार रचना देवी की भारतीय पुरातन ग्रंथों में न्याय की अवधारणा पर पूर्व प्रसारित वार्ता सुनिएगा शाम 6:45 पर।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनिएगा रात 10 बजे और रात 9:30 पर सुनिएगा राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका।

हर सप्ताह जिंदगी लाइव में आपके लिए जिंदगी से जुड़े ऐसे विषय के साथ हम आते हैं जो कहीं ना कहीं हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी को छूते हैं। और हमारी ये जिंदगी जब खूबसूरत लगती है जब आप हमारे साथ होते हैं। तो श्रोताओं नमस्कार आपका आज के इस कार्यक्रम जिंदगी लाइव में। श्रोताओं जब आप खुश होते हैं, स्वस्थ होते हैं और दिल से मुस्कुराकर जिंदगी के साथ साथ हमारे कार्यक्रम का आनंद ले रहे होते हैं तो हमें बड़ा ही अच्छा मतलब अनुभव होता है, क्योंकि आप हैं तभी हमारी बातें हैं, हमारे गीत हैं, कार्यक्रम हैं और ये खूबसूरत सी मुलाकातें हैं। तो आपके इस मुलाकात को बनाते हैं खूबसूरत और आज के कार्यक्रम की मुलाकात में आपकी खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी की कामना करते हुए, उसका ख्याल रखते हुए हमने आज का विषय जो चुना है वो है एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय और वो है हाइपरटेंशन द साइलेंट किलर। श्रोताओं एक ऐसी परेशानी जो अक्सर बिना दस्तक दिए धीरे धीरे इंसान की सेहत पर असर डालती है, तभी तो इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। तो इस विषय पर अपने विचार, अपनी सोच, अपने अनुभव साझा कीजिएगा हमारे नंबर पर जो नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर बता देते हैं आपको 9457078288। तो चलिए दोस्तों आज की इस मुलाकात का सिलसिला शुरू करते हैं कुछ अलग अंदाज में। वो कहते हैं ना कि किसी अपने से मुलाकात हो तो सबसे पहले उनका हाल चाल पूछा जाता है, तो हम भी इस गीत के माध्यम से आपसे आपका मिजाज और आपके हाल चाल पूछना चाहते हैं। तो इतने आप हमें कीजिएगा अपने अनुभव, विचार और सोच हमारे विषय पर।

श्रोताओं, आज की भागती भागती दौड़ती जिंदगी में गुस्सा, टेंशन, नींद ना आना, गलत खान पान सब मिलकर हमारे दिल दिमाग और हमारे शरीर पर गहरा असर डालते हैं। कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है और उनमें सबसे खास है हमारा ये शरीर, जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं। लेकिन अक्सर हम अपने इस शरीर को ही अपने रोज़मर्रा के काम में वक्त देना ही भूल जाते हैं। सुबह की चाय से लेकर रात की थकान तक बस इंसान भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। और इसी भाग दौड़ में कभी कभी इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कई लोग ये कहते हैं कि हमें तो कोई परेशानी नहीं होती है, और श्रोताओं, यही सबसे खतरनाक बात होती है, क्योंकि हमारे शरीर को भी चाहिए थोड़ा थोड़ा शांति, थोड़ा थोड़ा संतुलन, थोड़ा प्यार खुद के लिए। तो देख लेते हैं कार्यक्रम में हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। ये हैं हमारे श्रोता जसपुर रोड दुलापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अल शिफा परवीन। ये कहते हैं कि दर्द जाना जाता है, बोला नहीं जाता, मन की उलझनों को यूं खोला नहीं जाता। बहुत कुछ ऐसा भी होता है ज़िंदगी में, बहुत कुछ ऐसा भी होता है ज़िंदगी में, लाख चाहते हैं मगर बोला नहीं जाता। बहुत खूब ये मैसेज, बड़ा प्यारा आपने भेजा है। ये कहते हैं आगे कि स्वास्थ्य की नज़र आने लगे हैं कि आजकल लोग देखकर कहने लगे हैं कि हम हाइपरटेंशन के शिकार होते जा रहे हैं, उन्हें नज़र ही नहीं आता कि हम इससे बाहर कैसे निकलें। तो श्रोताओं, इससे बाहर निकलने का रास्ता यही है कि हम अपने शरीर का ख्याल रखें, सिर्फ ये नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखें। आप अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे अच्छे से निभा सकते हैं जब आपका शरीर ही साथ नहीं देगा? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसी परेशानी का हल्का सा भी आपको अंदाज़ा होता है कि कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, तो फौरन आप डॉक्टर के पास जाइए, और जो भी वो आपको बताएं, जो ध्यान रखने के लिए जो भी चीज़ें आपको बताएं, उनका ख्याल रखिए और अपनी ज़िंदगी में उतारिए। क्योंकि ज़िंदगी का उसूल यही है कि थोड़ा दुख तो थोड़ा सुख, थोड़ी परेशानी थोड़ी आसानी, और थोड़ा थोड़ा गीत संगीत।

श्रोताओ, गीत का तो आपने आनंद ले लिया, लेकिन अब जान लेते हैं कि आगे हाइपरटेंशन के बारे में, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बेहद अनमोल है और इसको अनदेखा करना बहुत गलत बात होगी और अनदेखा करना ठीक भी नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें कि अपनी सेहत को कभी भी कल पर ना टालें। अपना समय समय पर बीपी चेक कराते रहें, फल सब्जियां खाएं, अच्छी नींद लें और अपने मन पर किसी तरह का बोझ या दिमाग पर कोई टेंशन ना लें, ठीक है? और आगे भी बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं हमारे श्रोता हमें क्या लिखकर भेज रहे हैं इस बारे में। ये मैसेज हमें भेजा है नगीना से अनिल विनोचा जी ने। ये कहते हैं कि आज का टॉपिक हाइपरटेंशन साइलेंट किलर सचमुच जिंदगी से जुड़ा है। इन्होंने लिखा है कि हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर से होता है, मतलब जब दिल की धमनियों पर काम करने का बोझ बढ़ जाए तो इसे ही हाइपरटेंशन कहते हैं, क्योंकि दिल बॉडी में खून सप्लाई करने का काम करता है जिससे दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक तक हो सकता है। ये एक साइलेंट किलर होता है। नॉर्मल बीपी 80 और 100 होता है, इससे ऊपर अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या इससे नीचे हो जाता है तो टेंशन बिल्कुल ना लें, नमक कम खाएं, 20 मिनट सैर ज़रूर करें, खाने पीने की चीज़ों का खूब ख्याल रखें और समय पर अपना बीपी चेक करवाते रहें, डॉक्टर की एडवाइस लेते रहें और उसको फॉलो भी करते रहें। तो श्रोताओं, बहुत ज़रूरी बात है कि अगर डॉक्टर आपसे कुछ बता रहे हैं कि आपको ऐसे करना है, आपको मतलब जो एडवाइस दे रहे हैं कि आपको खान पान का ख्याल रखना है, सैर करनी है, तो आप अपने काम के लिए तो घर से निकलते ही हैं और अपने घर में सबका ख्याल भी रखते हैं और अपने कारोबार का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने शरीर का ख्याल कौन रखेगा? आपको ही तो रखना है, क्योंकि ये सेहत हमारा सबसे बड़ा साथी होती है। तो

अपने काम को करें, अपने माइंड पर किसी तरह की टेंशन ना लें, क्योंकि आप अगर टेंशन लेंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अपनी ज़िंदगी में खुलकर मुस्कुराइए और हंसकर मुस्कुराते हुए ज़िंदगी के प्यार भरे गीतों को गाते जाइए, और ज़िंदगी के रास्ते इन्हीं प्यार भरे गीतों के रास्ते कट जाएंगे।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी लाइव आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन द किलर के बारे में। इसी विषय में हमारे श्रोता हमें मैसेज कर रहे हैं। आप हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। आप ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद से ये मैसेज हमें भेज रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि मौसम बदलता जा रहा है, इसमें अपना और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का भी ध्यान रखें, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, ताज़ी हरी सब्जी खाएं, पीने का पानी ढककर रखें और इन बातों का ख्याल रखें। श्रोताओं, ये छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन हैं बड़े काम की। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का ख्याल रखें तो शायद बीमारी दूर भाग जाएगी। और ये अगला मैसेज हमें भेजा है ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। इन्होंने लिखा है कि फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए, चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं, चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं, कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाते रहिए, भूल जाइए शिकवे शिकायतों की पलों की, भूल जाइए शिकवे शिकायतें पलों की, और छोटी छोटी खुशियों के मोती लुटाती रहिए। और श्रोताओं, खुशियाँ ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन खुशियों का मज़ा तभी होता है जब हमने गम भी झेला हो। और ये ज़िंदगी के दो ऐसे पहलू हैं जो हर कोई देखता है। कभी इंसान खुश होता है तो उसकी खुशी उसके चेहरे पर झलकती है, लेकिन जब इंसान दुखी होता है, टेंशन में होता है किसी बात को लेकर, तो उसके चेहरे पर उदासी झलकती है। तो देखते हैं ये अगला मैसेज हमें कौन कर रहे हैं। ये मैसेज भी दोबारा कर दिया आपने। तो श्रोताओं, आपको हाइपरटेंशन द किलर इसके बारे में अपने विचार हमें साझा करने हैं, तो नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं। हमारा नंबर है 9457072888। श्रोताओं, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद रहना है तो अपने शरीर का ख्याल रखना है। वो कैसे है कि सुबह की सैर और उसके साथ साथ मन की शांति ज़िंदगी की वो बड़ी दवा है कि अगर हम रोज़ इसे फॉलो करें ना, तो सच में हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर रोज़ हम थोड़ी सैर करें, थोड़ा हंसें, थोड़ा कम सोचें, थोड़ा कई परेशानियों से मतलब ऐसे दूर रहें कि परेशानियाँ तो अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तब भी वो दूर नहीं होनी है, और अगर सोचेंगे या नहीं सोचेंगे उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं। तो क्यों सोचें हम परेशानी के बारे में, बस उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें। क्योंकि आप सॉल्यूशन सोचेंगे तो आपकी टेंशन धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आज मोबाइल की स्क्रीन से निकल कर कभी इस खूबसूरत दुनिया को देखिए, खुद से मिलिए। यूँ हर समय मजबूत बने रहना भी ज़रूरी नहीं है, कभी कभी रुक जाना, खुलकर रो लेना, किसी अपने से बातें कर लेना भी सेहत का अच्छा इलाज होते हैं। क्योंकि आपका शरीर कोई मशीन नहीं है, उसे भी सुकून चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का यही एक खूबसूरत अंदाज होता है।

श्रोताओं, कार्यक्रम जिंदगी लाइव आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन द किलर, इस महत्वपूर्ण विषय पर। श्रोताओं, हम सबकी जिंदगी बहुत अनमोल है और जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। जिम्मेदारियां, काम, रिश्ते, फ्यूचर की फिक्र सब हमें अंदर अंदर से खाते रहते हैं। लेकिन आप ये बताइए, क्या इन बातों की टेंशन लेने से हमें कुछ हासिल होने वाला है? और जवाब आएगा नहीं। तो फिर क्यों अपना बीपी आप बढ़ाते हैं? अरे जनाब, सेहत के सामने दुनिया की सारी दौलत बेकार है। हमें मालूम है हर इंसान अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आप इस लड़ाई को लड़ते लड़ते अपने शरीर को मत भूलिएगा। तो कार्यक्रम में ये मैसेज हमें भेजा है मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी।

सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर ने ये लिखते हैं कि गर्मी बहुत है, बच्चों और बुज़ुर्गों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, साथ में पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, उनके लिए दाना पानी ज़रूर रखें, हंसते रहें, हंसाते रहें। आपने इस विषय के बारे में कुछ नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आपने हमें मैसेज किया, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो कार्यक्रम का ये अगला मैसेज हमें भेज रहे हैं विलेज एंड पोस्ट राहुनांगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, उनके साथ हैं अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान, कनिष्का और भव्या। ये लिखते हैं कि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है और ये बिल्कुल सही कहा गया है, हमें इस खतरनाक बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होना दे चाहिए, हमें इसके लिए सतर्क रहना चाहिए, अच्छी अच्छी थिंकिंग थॉट रखनी चाहिए, अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहिए और उस परम शक्ति का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, योग एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए मौसम के अनुसार। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है आचार्य सत्यवीर जी, और ये सही बात है कि मतलब हमें अगर मौसम के हिसाब से एक्सरसाइज करेंगे, अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, तो इस तरह की परेशानियां कम ही देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ आपको अपनों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई खूबसूरत साथ ज़रूर होता है, जिसका हाथ पकड़ कर वो ज़िंदगी की हर परेशानी और ज़िंदगी की हर जंग जीत लेता है।

श्रुतौ हाइपर टेंशन द किलर। ये साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्सर ये बिना किसी लक्षण के शरीर में आ जाता है और धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। इससे हमारे शरीर में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, गुर्दे की परेशानी और कभी कभी आंखों की समस्याएं भी हो जाती हैं, जैसे रेटिनोपैथी यानी अंधेपन का कारण तक बन जाती है। हाई ब्लड प्रेशर से रक्तचाप धमनियों की दीवारों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है, जिससे शरीर में जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए हमें समय समय पर अपना बीपी चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये थोड़ी सी असावधानी जो हम रखते हैं ये हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा ख़तरा बन सकती है। और श्रोताओं, ज़िंदगी को यूँ ज़ाया ना करिए। मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी को ज़्यादा गुस्सा आता हो, तो उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आपको उनका ख्याल रखकर उनकी समस्याओं को कम कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो उनके गुस्से की भी तारीफ़ कर सकते हैं कि आपका वो गाना नहीं सुना है आपने, गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा। तो कुछ हंसी मुस्कुराहट से और अच्छे अच्छे गीत संगीत से आप उनका दिल बहला सकते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। लेकिन इसकी खूबसूरती भी तभी तक है जब तक हम सेहतमंद हों, और ईश्वर के बाद आपकी सेहत ही आपका सच्चा और खूबसूरत साथी है। हाइपरटेंशन हमें यही सिखाता है कि वक्त रहते हमें संभल जाना चाहिए, और यही समझदारी है। तनाव कम लें, अपनों के साथ समय बिताएं, क्योंकि दवाइयों से ज़्यादा कारगर अपनापन होता है। क्योंकि जब कोई बात बिगड़ जाती है तो कोई अपना ही आपका साथ देता है।

आगे चलकर बड़ी बीमारी का कारण बन जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी जागरूकता, सही जीवन शैली अपनाकर इसे काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, तनाव से दूरी और समय समय पर बीपी की जांच, ये छोटे छोटे कदम बड़ी बड़ी मुश्किलों से बचा सकते हैं। तो श्रोताओं, कामयाबी की इस दौड़ में इतना मत खोइएगा कि शरीर को भूल जाएं और ये हाइपरटेंशन द किलर आपकी जिंदगी में चुपके से आ जाए। भागती दौड़ती जिंदगी में कमाइयों के हिसाब करते रहे, भागती दौड़ती जिंदगी में कमाइयों के हिसाब करते रहे, टेंशन में अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते रहे। आज का टॉपिक आपको यही समझाता है जिंदगी उसी की खूबसूरत है जो सुकून से मुस्कुराता है।

0: श्रोताओं, आज हमने आपसे बात की हाइपरटेंशन द किलर के बारे में और आपको कुछ जानकारियां दी इससे बचने के बारे में और आपका ख्याल रखने के बारे में। तो ना लीजिएगा टेंशन और ना होइएगा परेशान, रखिएगा हमेशा अपनी सेहत का ध्यान और सुनते रहिएगा आकाशवाणी नजीबाबाद। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। चांद सितारे। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम जिंदगी लाइव। दोपहर के 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
1: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं। साथ ही

0: वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने कल कानपुर के चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मुनक्कदा मुश्तरक डिवीजनल खरीफ पैदावारी सेमिनार का इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए जनाब शाही ने कहा कि खरीफ सीजन शुरू होने को है, रियासती हुकूमत की तरजीह किसानों को बेहतर बीज फराहम करना है। मेरठ से प्रयागराज तक चलने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर सहूलत कल खत्म हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने इस रूट पर 15 दिन की टोल फ्री सफर की मुद्दत का ऐलान किया था। कल लखनऊ मुनक्कदा AI ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026 में मुल्क भर से 50 से ज्यादा सीनियर इंतजामी अहदेदारों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत के महत्वाकांक्षी AI पॉलिसी और टेक्नोलॉजी के विजन पर कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसील से तबादला ख्याल किया गया। रियासती तब्दीली कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मनोज कुमार सिंह ने कहा कि रियासत सरकारी कामकाज में AI की तब्दीली के लिए कौमी मॉडल बनने की तरफ बढ़ रही है और इससे रियासत के ट्रिलियन डॉलर की मईशत बनने के हदफ को नई तहरीक मिलेगी। आज रोशनी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल 16 मई को माहिर फिजिस्ट और इंजीनियर थियोडोर मेमन के 1960 में लेजर के पहले कामयाब ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है। वहीं आज डेंगू का कौमी दिन मनाया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के जरिए सरकारी तौर पर इस दिन का ऐलान किया गया। इस दिन का मकसद डेंगू के बारे में बेदारी पैदा करना और मानसून से कबल इसके खिलाफ हिफाजती इकदामात को मजबूत बनाना है। यह दिन मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए सादा कंट्रोल हिकमत अमली को फरोग देने के लिए मनाया जाता है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एहतियात, सफाई, चौकसी और बरवक्त इलाज के जरिए डेंगू पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सकता है। उन्होंने रियासत के लोगों से मुतालबा किया कि वो अपने घरों, इर्द गिर्द और मुआशरे को साफ सुथरा रखने का अहद करें। रियासत भर में आज वट सावित्री का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। प्रयागराज में खवातीन संगम मुकद्दस गुस्ल कर रही हैं और बरगद की पूजा कर अपने शौहरों की सलामती और लंबी उम्र के लिए दुआ कर रही हैं। खवातीन ने भी आज निर्जला जल व्रत रखा है। उन्नाव में भी सुबह से ही शादीशुदा खवातीन रवायती मेकअप कर रही हैं और वट सावित्री का व्रत रख रही हैं और दुआएं मांग रही हैं दायमी खुशी के लिए। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में कल खेले गए IPL मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने कामयाबी हासिल की। रात गए तक जारी रहने वाले मैच में लखनऊ ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ को जीत के लिए 188 रन का हदफ रखा, जिसे लखनऊ के सिर्फ 16.4 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मिचेल मार्शल ने लखनऊ की जानिब से 38 गेंदों में 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली और मैन ऑफ द मैच करार पाए। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत अभिनंदन आप सभी बहनों का आज के इस अंक में, साथ ही हमारे अन्य सभी सुनने वालों का भी स्वागत। बहनों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ ही हमारा पूरा जीवन जुड़ा हुआ होता है। स्वस्थ रहेंगे हम तभी जीवन का आनंद भी हम ले पाएंगे। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो उसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ रहता है जिसे हम स्वच्छता कहते हैं। जी हाँ, स्वच्छता और स्वास्थ्य, इन दोनों का एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि जो हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ भी रहेंगे। स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छता बेहद जरूरी है। आपने भी सुना होगा ना कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और ये स्लोगन इसीलिए है कि स्वच्छता से हमारा स्वास्थ्य जुड़ा है। स्वच्छता की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ ये स्वच्छता घर तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी साफ होना चाहिए, तभी तो हम जो है मक्खी मच्छरों से बच सकते हैं, क्योंकि घर तो साफ है और

तो नहीं कि हम 24 घंटे घर में रहते हैं, घर से बाहर भी निकलते हैं, तो अपने आसपास का वातावरण का साफ होना बेहद जरूरी है। अगर आसपास गंदगी होगी तो मक्खी मच्छर उस पर पनपेंगे और फिर वो हमें बीमार करेंगे। और मच्छरों से तो आपने देखा ही होगा, मलेरिया डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां भी होती हैं। डेंगू का मच्छर तो साफ पानी में भी अपनी जगह बना लेता है, तो इसके लिए जरूरी है कि गंदा पानी तो नहीं होना चाहिए अपने आसपास। इसके साथ ही जो हमारा साफ पानी है, जो हम अपने घरों में भर कर रखते हैं, चाहे हम वॉशरूम में रखें, चाहे किचन में रखें, या अपने आसपास गमलों में डालने के लिए हम अक्सर बर्तन भर देते हैं और उसके बाद उसको ना ढकते नहीं हैं, तो जब भी आप पानी के बर्तन भरें तो उसे ढककर जरूर रखें, क्योंकि गर्मियों में हमें ज्यादा पानी इकट्ठा करने की आदत होती है, क्योंकि गर्मियों में पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। अब पानी की जरूरत पड़ती है भरकर भी रखना, लेकिन उसे ढक कर भी रखना बेहद जरूरी है। घर के आसपास किसी भी तरह के बर्तन में आप पानी रखते हैं तो उस पानी को आपने ढकना है, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि समय समय पर आप, चाहे वो कूलर का पानी हो, घर के आसपास का पानी हो, उसे बदलते भी रहना है। बहुत दिनों तक रखे हुए पानी में भी मच्छर बहुत तेजी से पनपते हैं, और जब इस तरह की जागरूकता होती है ना बहनों, तो हम डेंगू जैसी बीमारियों से भी बच सकते हैं। कई बार अगर बुखार आता है तो हम सीधे कोई भी घर पर गोली होती है या केमिस्ट से जाकर गोली लेके आते हैं और खा लेते हैं, तो अपने आप से अपना इलाज भी नहीं करना है। बुखार आने पर या किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी होती है तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें, हो सकता है वो डेंगू हो या कोई दूसरी बीमारी हो जो हमें आगे जाके नुकसान पहुंचा सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के जागरूकता के साथ हम बीमारियों से बच सकते हैं। और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ेंगे कुछ संदेशों के साथ।

0: रहेंगे आधी आबादी की सफलता की कहानी के साथ। और इस क्रम में हम आपको सफलता की कहानियां तो सुनाते ही हैं, साथ ही कुछ महिलाएं, हमारी आधी आबादी की जो महिलाएं हैं, वो ऐसे काम भी करती हैं जो दूसरों के जीवन को संवारती हैं। तो आज ऐसी ही एक कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, सुनते हैं इस आधी आबादी क्रम में। पक्षियों का चहचहाना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। पक्षियों की चहचहाहट और कभी उन्हें आकाश में उड़ते देखना, और कभी जब वो हमारे घर आंगन में आकर फुदकती नजर आती है, तो ये कितना सुकून और खुशी देने वाला पल होता है। सच में ये जो पक्षी होते हैं, अपनी मौजूदगी, अपनी खूबसूरती और अपनी चहचहाहट से प्रकृति की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। लेकिन इनके प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, ये हम कितना समझ पाते हैं, क्योंकि ये जो धरती है, जितना अधिकार इस पर हम मनुष्यों का है, उतना ही इस धरती पर, पेड़ पौधों पर, फल फूलों पर, इन पंछियों का, पशुओं का भी समान रूप से अधिकार है। कुछ लोग हैं जो इन पशु पक्षियों के प्रति न केवल अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, बल्कि अपना पूरा जीवन ही इन्हीं को समर्पित कर देते हैं। ऐसी ही एक महिला है पंजाब की निधानवाला में रहने वाली हरप्रीत कौर, जिन्होंने अपने घर में पशु पक्षियों को, खासकर चिड़ियाओं को सहारा दिया है।
1: जैसे माँ अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाती ना, ये भी मेरे बच्चे ही हैं, तो मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती।
0: हरप्रीत ने अपने घर को परिंदों के लिए एक सुरक्षित बसेरा बना लिया है, जहां वो परिंदों के दाना पानी से लेकर उनके इलाज तक की जिम्मेदारी उठाती हैं। और जब उनके ब्रीडिंग का समय आता है, तो उनकी देखभाल बिल्कुल वैसे ही करती हैं जैसे कि हम अपने परिवार के किसी सदस्य की करते हैं। लगभग पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से वो 200 से ज्यादा चिड़ियाओं की देखभाल माँ की तरह कर रही हैं। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, बल्कि ममता, प्यार और विश्वास की कहानी है, जो शुरू हुई थी साल 2015 में। साल 2015 में जब हरप्रीत की तबीयत बहुत खराब हुई, तो इलाज के दौरान पता चला उन्हें अपेंडिक्स है, जिसके चलते उनके कई ऑपरेशन भी हुए। और अपनी खराब तबीयत के चलते हरप्रीत डिप्रेशन की कगार पर पहुंच गई। इसी बीच एक दिन उनके आंगन में चिड़ियों का एक जोड़ा आया। हरप्रीत को उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उन चिड़ियों के लिए मटके में घोंसला बना लिया। अब चिड़िया उस घोंसले में आने लगी, और जब उनके ब्रीडिंग का समय आया, तो उन्होंने वहां पर कुछ अंडे भी दिए। लेकिन मटके का मुंह बड़ा होने के कारण कुछ अंडे गिर गए और कुछ को बड़े पक्षी उठाकर ले गए। उस दिन हरप्रीत ने उन पक्षियों के दुख को करीब से महसूस किया। और फिर क्या था, हरप्रीत ने अब दो सुरक्षित घोंसले मंगवाए, और इस बार उनकी मेहनत रंग लाई। चिड़िया उन घोंसलों में जाने लगी और वहीं पर अपना बसेरा बना लिया। हरप्रीत रोज इन चिड़ियाओं के दाने पानी का इंतजाम करती, गर्मियों में गर्मी से बचाती और ठंडे पानी का इंतजाम करती, तो वही सर्दियों में उन्हें ठंड से बचाती। अब इन चिड़ियाओं की जिम्मेदारी उनकी हर रोज की आदत बन गई। पक्षियों की देखभाल करते करते अब वो स्वस्थ भी होने लगी। इन पक्षियों की देखरेख के कारण ज्यादा देर घर से बाहर भी नहीं रहती।
1: मेरी सिस्टर की शादी थी कनाडा में, और हमारा वीजा भी आया, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया और मैं नहीं गई, क्योंकि तब इनके ब्रीडिंग का टाइम था और मुझे लगा कि मेरे से अच्छा इन्हें दाना पानी कोई नहीं डालेगा।
0: चिड़ियाओं की देखरेख में ही अब हरप्रीत का समय बीतने लगा, और चिड़ियाओं की सेवा करते करते हरप्रीत की तबीयत भी ठीक होने लगी, और उन्हें ये काम बहुत सुकून देता। लोग जब उनसे पूछते 200 चिड़ियाओं की जिम्मेदारी आप कैसे निभा लेती हैं, तो हरप्रीत का जवाब होता,
1: इन चिड़ियों का ख्याल मैं नहीं रखती, ये चिड़िया मेरा ख्याल रखती हैं। धरती हमारे इकल्ले मनुष्य की नहीं है, इस पर सभी जीव जंतुओं का बराबर अधिकार है, तो हम आओ इनके लिए दाना पानी, पेड़ पौधे और ज्यादा से ज्यादा घोंसले लगाएं।
0: पक्षियों की निस्वार्थ सेवा ने हरप्रीत को जीवन जीने की एक नई प्रेरणा दी है, और अब हरप्रीत इन चिड़ियाओं की चहचहाट के साथ ही अपने आगे का पूरा जीवन बिताना चाहती हैं, क्योंकि इन चिड़ियाओं के साथ रहना और उनकी देखरेख करने में उन्हें सुकून महसूस होता है, और ऐसा करके वो प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही है।

बहनों, ये थी आधी आबादी में पंजाब की हरप्रीत कौर। और आज शनिवार है बहनों, तो आज होता है हमारा क्रम सजना है मुझे। और इसमें हम आपको सजने से संबंधित अनेक तरह की बातें बताते हैं, कई बार ब्यूटी टिप्स देते हैं, तो कभी किसी फैशन पे बात करते हैं। तो आज भी कुछ स्पेशल हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो शुरू करते हैं आज का ये क्रम।

0: मैनू सजना है मुझे क्रम में आज हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम आपसे इसलिए कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आज हमने स्टूडियोज में बुलाई है एक ब्यूटिशियन जो आपको तमाम तरह से आपकी जो समस्याएं हैं त्वचा से संबंधित या सजने से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो आपको बताएंगी। और हमारे साथ हैं आज ब्यूटिशियन आकांक्षा अग्रवाल और आपसे बातचीत कर रही हैं सुनीति आर्य।
1: अनुक्रम सजना है मुझे में आज हम बात करेंगे सौंदर्य की, आत्मविश्वास की और सही स्किन केयर की, क्योंकि हम सभी बहनों को सजना सवरना तो बहुत ही पसंद है। बाहर निकलते हैं तो लगता है कि अच्छे से ड्रेसअप होके जाएं, तैयार होके जाएं, मेकअप करके जाएं। तो आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है ब्यूटिशियन को, तो आइए जानते हैं उनसे उनका परिचय। तो सबसे पहले स्वागत है आपका कार्यक्रम।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सुनीति जी आपका।
1: तो मैम सबसे पहले हम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे।
2: मेरा नाम आकांक्षा अग्रवाल है और मैं पिछले 7 साल से अपना पार्लर चला रही हूँ।
1: आप महिलाओं को तैयार कर रही हैं सजने सवरने में, उनकी हेल्प कर रही हैं, तो अच्छा लगता है आपको ये?
2: बहुत अच्छा, मेरे को बचपन से इस चीज का शौक था। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सबको अच्छे से तैयार करूं, मेरे पास होके कस्टमर हैप्पी हैप्पी जाएं।
1: जाते भी होंगे बिल्कुल, आपको देख के ही लग रहा है। आकांक्षा जी, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको कैसे मोटिवेशन आया आपको कि मुझे पार्लर चलाना है, इस फील्ड में मुझे आगे जाना है।
2: एक्चुअली मैम, मेरे को शुरू से ही सजना सवरना, तैयार करना, ड्रेसअप अच्छे अच्छे लेना बहुत शौक था। मुझे लगता था कि मैं खुद भी बहुत अच्छे से रहूं, और मुझे लगा कि मैं इसको क्यों ना अपना प्रोफेशन बनाऊं, अर्निंग भी होगी और मेरा शौक भी पूरा होगा। तो मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया और मैं इसमें आगे बढ़ी।
1: तो आपने कब सोचा आकांक्षा जी कि मुझे ये स्टार्ट करना है, और क्या एजुकेशन आपने लिया, और बचपन से आपको शौक था या अभी शादी के बाद ही आपका मन में आया कि मैं अर्निंग के लिए ब्यूटीशियन?
2: एक्चुअली शादी को तो मेरी 11 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे को बचपन से ही 10th क्लास में मैंने फर्स्ट ब्यूटीशियन कोर्स जो किया था वो 10th क्लास में किया था। उसके बाद स्टडी साथ में कंटिन्यू रही है, मैंने बीकॉम एमकॉम एलएलबी की है। ब्यूटीशियन कहीं ना कहीं मेरा मन था कि मैं वही प्रोफेशन सेलेक्ट करूं जो चीज मेरे को एक्सपायर्ड करती है, मन करता है कि मैं करूं ये चीज।
1: शौक है, मतलब
2: शौक है मेरे को बहुत।
1: जैसे कि आपने बताया कि एलएलबी आपने किया है, तो आप एक अच्छी वकील भी बन सकती थी, लेकिन मतलब आपको ये लगा अपने शौक से जब हम काम करते हैं तो उसका अचीवमेंट भी अलग ही होती है।
2: बिल्कुल मैम, मेरे को शुरू से जैसे सजने संवरने का शौक था तो मुझे लगा कि मैं उसी फील्ड में आगे बढ़ूं और मैंने उसी प्रोफेशन को सिलेक्ट किया है। मैं चाहती हूं कि मैं जैसे खुद अपने आप सज संवर के रहती हूं, ऐसे ही जो महिला मेरे पास आए मैं उसे खुश करके अपने पास से भेजूं।
1: तो आकांक्षा जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल मौसम देख रही हैं आप कि गर्मी बहुत है, तो जैसे हम गर्मियों में बाहर जाते हैं तो किस तरह की कुछ सावधानियां रखकर हम अपनी ब्यूटी को सिक्योर कर सकते हैं?
2: मैम देखिए, इस टाइम पे हाउसवाइफ से ज्यादा वर्किंग वुमेन्स हैं जो मोस्टली निकलती ही हैं अपने काम के लिए बाहर, तो मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर महिला अपने आप को फुली कवर और सनस्क्रीन जरूर यूज करें, क्योंकि इस टाइम पे जो बोला जाता है कि ये जो सूरज की किरणें होती हैं, ये अगर हम एक महीना अपने घर में रहें और 1 घंटे की धूप में रहें, वो हमारी स्किन को इतना डेड कर देता है। तो हम सूरज से थोड़ा बचें, सनलाइट से थोड़ा बचें, अपने ग्लासेस अपनी बॉडी को कवर करके और सनस्क्रीन लगा के जरूर जाएं। देखिए, महिलाएं बाहर निकल रही हैं, बाहर का काम कर रही हैं, लेकिन महिलाएं कभी घर का काम नहीं छोड़ती हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: तो घर का काम करने के बाद मैं उन्हें घर की रेमेडी सजेस्ट करूंगी, क्योंकि हर महिला पार्लर में नहीं जा पाती है।
1: जी बिल्कुल।
2: रेगुलर निकल भी नहीं सकती हर महिला। मैं चाहूंगी कि हर महिला, इतनी छोटी सी रेमेडी है ये कि वो उसको यूज कर सकती है, और घर के इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें। आप नॉर्मली दही, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच बेसन लेके उसको

0: मिक्स करके और 10 मिनट के लिए अपने फेस पे लगाएं सोने से पहले, और उसके बाद फेस को नॉर्मल वाटर से क्लीन कर दें। उससे आपकी स्किन हेल्दी भी रहेगी, कोई दाग धब्बा भी आपके फेस पे नहीं रहेगा।
1: जी, हम महिलाएं ना अपने लिए थोड़ी लापरवाही कर देते हैं। घर के तो सभी सदस्यों का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि किसको क्या चाहिए, लेकिन अपने लिए थोड़ी कर देते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए,
0: हाँ बिल्कुल सही बात है मैम,
1: है ना। तो आकांक्षी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल धूप में हम निकलते हैं तो फेस, तो आपने बताया कि हम इस तरह से होम रेमेडी करके क्योर कर सकते हैं अपने स्किन को, लेकिन हेयर जो है, हेयर भी हमारे, मतलब आजकल हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी?
0: हाँ मैम जरूर। देखिए अभी जो समर सीजन चल रहा है इसमें भी हेयर फॉल काफी होता है, और आने वाले टाइम में जो सीजन आने वाला है उसमें तो हेयर फॉल शायद अनलिमिटेड होता है। लेडीज के दिमाग में एक ही चीज आती है कि हम लोग ऑयलिंग करें और चोटी बांध लें कस के, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि इस टाइम पे आके ऑयलिंग आप बहुत कम करें, और ऑयलिंग जब भी करें ऑयलिंग सिर्फ 1 घंटा करने के बाद उसको हेड वॉश कर लें आप, और हेड वॉश भी मे बी रेगुलर अगर कोई नहीं कर पाता है तो 2 डेज में एक बार हेड वॉश जरूर करें। जितना हमारा हेड क्लीन रहेगा उतना हमारे हेयर फॉल्स बहुत कम हो जाएगा।
1: आजकल जैसे गर्मियां हैं तो मैम फेशियल, कौन कौन से फेशियल होते हैं?
0: मैम देखिए फेशियल्स तो मे बी सारे शुरू से जो चलते आए हैं, जिन फेशियल्स के बारे में मोस्टली महिलाओं को जानकारी होगी वो सब होते हैं। मोस्टली फेशियल्स जो होते हैं वो 5 स्टेप में होते हैं, लेकिन इस टाइम में जो ट्रेंडिंग है वो है हाइड्रा फेशियल,
1: जी
0: और वो स्किन को हमारी एक मॉइस्चराइजिंग क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग बोल सकते हैं आप। हमारे फेस में बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती हैं, तो हाइड्रा फेशियल जो होता है वो हमारे स्किन को डीप क्लीन करके वो सारी चीजें रिमूव कर देता है। मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जो भी 30+ एज की हैं वो प्लीज हाइड्रा फेशियल जरूर कराएं। 6 मंथ में एक बार हाइड्रा फेशियल जरूर लें।
1: सिक्स मंथ
0: हाँ जी, उसका बहुत अच्छा बेनिफिट है।
1: मैम, आपने फेशियल की बात बताई। कुछ महिलाएं हमारी ऐसी हैं, गांव में ग्रामीण महिलाएं भी हैं, वो नहीं जा पाती, तो घर पर ही कुछ इस तरह से, कुछ आप बताएंगी कुछ ऐसे टिप्स कि वो फेशियल का भी काम कर जाएं?
0: हाँ बिल्कुल मैम, एक्चुअली जो महिलाएं पार्लर तक नहीं जा पाती हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी क्लिजिंग थेरेपी बताऊंगी जो घर पे ही हो जाएगी और हमारे घर के सामान से ही हो जाएगी, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।
1: जी
0: महिलाओं को अपनी किचन बहुत प्रिय होती है और
1: जी
0: उसी में से
1: बिल्कुल
0: ही वो मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग कच्चा दूध आता है गाय का, कच्चा दूध लें,
1: जी
0: उससे अपने फेस को क्लीन करें। उसमें आप सेकेंड ऑफ ऑल उसमें हनी को मिला के, शहद जो होता है उसको मिला के अपने फेस पे 10 मिनट के लिए रखें और क्लीन कर दें। आपको अगर स्क्रबिंग घर पे करनी है, आपको लग रहा है कि हमारी डेड स्किन है, तो हम शुगर और लेमन को मिला सकते हैं, आधी चम्मच चीनी और 2 बूंद नींबू की मिला के उससे हम अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद फेस पैक के लिए हम लोग बेसन, दही और हल्दी, हल्दी जो होती है वो एंटीबायोटिक होती है, उससे हमारे स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो नेचुरली ग्लो करती है। आपने देखा भी होगा बहुत सारी ब्यूटी चीजें जो आती हैं उसमें हल्दी होती हैं, डली हुई
1: जी
0: टर्मरिक आती
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: वो हमारी स्किन को एंटीबायोटिक का काम करती है और बहुत अच्छे से हेल्दी रखती है। तो दही, हल्दी और बेसन को मिला के उसका 10 मिनट पेस्ट लगाएं और वो वॉश कर दें, आपका पूरा फेशियल घर में डन
1: हो
0: हो
1: जाएगा।
0: जाएगा।
1: एक मैम, आजकल देख रहे होंगे आपकी डार्क सर्कल की बहुत प्रॉब्लम है और झाइयां बहुत हो रही हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगी महिलाओं को कि उससे हम थोड़ा निजात पा सकें, उसको क्योर कर सकें थोड़ा?
0: हाँ मैम जरूर। एक्चुअली ये जो झाइयों की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशंस, मोस्टली महिलाओं में तो ये बेबी के टाइम पे हो जाती हैं। जो बेबी के टाइम
1: जी
0: पे होती हैं वो होती हैं हमारी ब्लड में या हमारी बॉडी में किसी तरह की कमी, आयरन या किसी विटामिन की कमी के कारण। तो मैं सबसे पहले तो सजेस्ट करूंगी कोई भी अगर न्यूली मदर बनी है तो वो अपनी डाइट प्रॉपर लें। डाइट प्रॉपर लेंगी तो शायद उनकी वो झाइयाँ जो पिगमेंटेशन हुई हैं वो अपने आप रिमूव हो जाएंगी।
1: जी
0: आयरन और विटामिन B12 वो हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत नीडेड है क्योंकि हमारी बॉडी में उस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी आ जाती है। आप वो लेंगी तो ये हमारी पिगमेंटेशन और झाइयाँ अपने आप रिमूव हो जाएंगी। और आजकल महिलाएं बिना किसी के सजेस्ट किए ट्यूब का यूज़ कर रही हैं, जो ट्यूब झाइयों को रिमूव करने के लिए आ रहा है, उससे क्या होता है कि स्किन डेड हो जाती है महिलाओं की। आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं धूप में निकलती है तो उनका फेस रेड पड़ जाता
1: जी
0: है,
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखा कि गाल गाल ऐसे
0: रेड हो
1: रेड हो रहे
0: जाते
1: हैं।
0: हैं।
1: हाँ
0: हाँ
1: जी,
0: जी, हाँ
1: बहुत रेड हो
0: जी,
1: जाते हैं
0: वही
1: जी।
0: ये जो गाल रेड हो जाते हैं या स्किन जिनकी रेड हो जाती है, वो ट्यूब एक इस तरीके से वर्क करता है हमारी स्किन पे, जैसे वार्म वाटर को हम रेगुलर किसी चीज पे घेरें और वो जला देता है स्किन को, इसी तरीके से वो ट्यूब वर्क करता है। तो मैं महिलाओं से ये

0: रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी उसको यूज कर रही हैं वो उस ट्यूब को प्लीज यूज ना करें, और अगर यूज कर रही हैं बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है तो सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेशन एरिया पे ही उसको यूज करें,
1: और डॉक्टर की
0: डॉक्टर और ब्यूटिशियन की रिकमेंडेशन से ही उसको लें, अदरवाइज उसको यूज ना करें।
1: और मैम डार्क सर्कल के लिए बताइए आप।
0: डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये होती है कि महिलाएं भावुक बहुत होती हैं, वो एकदम हर चीज के लिए रो पड़ती हैं, और बहुत सी महिलाओं की नींद पूरी नहीं होती है
1: जी।
0: तो मैं महिलाओं को सजेस्ट करूंगी कि अपनी नींद पूरी करें और थोड़ा सा मतलब अपने आप में खुश रहें, हैप्पी हैप्पी रहें,
1: जी बिल्कुल।
0: तो वो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और उसके बाद भी अगर किसी को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो वो रॉ मिल्क, गाय का कच्चा दूध होता है, उसको ठंडा करके और उस पे कॉटन बट से उसको 10 मिनट के लिए अपने आईज पे रख के बैठे, उससे उसमें बहुत ज्यादा डिक्रेशन आएगी, बहुत जल्दी वो रिमूव हो जाएंगे,
1: लाइट हो जाएंगे। और मैम वो आलू का रस भी बताते हैं, क्या वो भी वर्क करता है?
0: आलू का रस वर्क करता है, हमारे डार्क स्पॉट्स पे वर्क करता है, वो सिर्फ यही नहीं कि डार्क सर्कल्स के लिए ही, अगर किसी के फेस पे कहीं ना कहीं ब्लैक स्पॉट या डार्क स्पॉट है तो आप आलू के रस में नींबू भी मिला के लगा सकते हैं, आलू के रस में बेसन भी मिला के लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छी क्लीजिंग का और क्लियरिटी का काम करता है।
1: जी तो आकांक्षा जी, गर्मियां तो चली रही हैं तो गर्मियों में मेकअप बहुत जल्दी उतर जाता है, तो उसके लिए आप कुछ बताएंगी कि
0: हाँ
1: किस
0: जरूर
1: तरह
0: मैम,
1: से वो टिका रह सकता
0: जरूर
1: है कुछ
0: मैम।
1: टाइम?
0: देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि गर्मियों में मेकअप वाटरप्रूफ हम यूज करें, दूसरी बात मतलब जो भी हम ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करें वो कंपनी के ही ब्रांडेड ही यूज करें, क्योंकि इस टाइम मार्केट में मोस्टली डी प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, तो आप उस चीज से बचिए। आप नेट फोन इस टाइम पे सारी चीजों की फैसिलिटी है, आप उस पर सर्च कीजिए और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट यूज कीजिए। दूसरी बात कि जब हमारा मेकअप मेल्ट होता है तो हमारे समर्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्वेटिंग, पसीने की,
1: जी
0: जब पसीना नहीं आएगा तो हमारा मेकअप भी इतना मेल्ट नहीं होगा, तो मैं महिलाओं को सजेस्ट करूंगी कि हम लोग मेकअप करने से पहले बिफोर 10 मिनट कि आप लोग आइस क्यूब को लेके वाटर में डाल के और उसमें फेस को 10 मिनट के लिए मतलब 2 मिनट डीप किया निकाला, डीप किया निकाला, ऐसे करके आइस क्यूब को रब करके अपने फेस पे और उसकी थेरेपी दें, उसके बाद आप मेकअप करें तो उससे आपके बुलबम्स जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे और पसीना नहीं आएगा, उससे मेकअप आपका बहुत अच्छे से स्टे करेगा, ये प्रॉपरली वर्क करता है। हम लोग भी जैसे पार्लर में हमारी ब्राइडल्स होती हैं
1: जी।
0: उनको भी ये थेरेपी बिफोर मेकअप जरूर देते हैं।
1: कोई एक्सपीरियंस हमसे कोई शेयर करना चाहती हैं कि होता है जैसे पार्लर में बहुत सारी लड़कियां महिलाएं आती हैं?
0: मेरे को जो लड़कियों को तैयार करके खुशी मिलती है ना, जो उन बच्चों को रेडी करके खुशी मिलती है, मैं वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी। जो बच्चे आते हैं, काफी बार लड़कियां ऐसी आती हैं जो बहुत ज्यादा रोती हैं कि
1: जी
0: हम अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि मैं किसी लड़की की खुशी में शामिल हो पा रही हूँ, मैं उनको एक नई लाइफ के लिए तैयार कर रही
1: क्या
0: हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उसको बहुत अच्छे से तैयार करूँ। मेरा मन
1: जी
0: होता है कि उन्होंने मेरे को जो पेमेंट किया है उसमें भी मेरे को कोई इश्यू नहीं होता, मेरे को लगता है कि मैं उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करूं, वो खुश रहें बस।
1: और नई जिंदगी की शुरुआत उनकी हो रही है और आपके हाथों से हो रही है, और तो वो बहुत खुश भी होती होंगी।
0: बिल्कुल, मोस्टली बहुत सारे बच्चों को तो कभी कभी जो बच्चे आते हैं बुकिंग करा के जाते हैं, लड़कियां आती हैं, इतना एक्साइटमेंट होता है मुझे उन ड्रेसेस को देख के, उनके लहंगे को देख के, उनकी ज्वेलरीज को देख के कि ये बच्ची इतनी प्यारी है, मैं उसको कितना प्यारा करके रेडी करूंगी।
1: जी
0: बात कहना चाहूंगी महिलाओं से कि हम लोग सबको खुश रखने की पूरी जिंदगी कोशिश करते हैं, लेकिन हम महिलाओं का अपने आप के लिए खुश रहना भी बहुत जरूरी है। अपने लिए थोड़ा सा खुश रहें, अपने लिए थोड़ा सा सजे सपने, फिर आप देखिए अपना निखार,
1: जी अपने लिए टाइम
0: अपने लिए
1: निकालें,
0: थोड़ा सा टाइम निकालें।
1: बिल्कुल, जहां आपको खुशी मिले अपने फ्रेंड्स के साथ तो उनके साथ
0: बिल्कुल
1: एंजॉय करें, है ना,
0: बिल्कुल
1: तो कहीं ना कहीं वो फेस पर भी दिखाई देता है।
0: बिल्कुल मैम, जब हम खुश रहेंगे तो हमारे फेस का ग्लो अलग ही दिखाई देता है।
1: जी बिल्कुल
0: तो आप लोग अपनी डाइट का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें और खुश रहें।
1: जी। आकांक्षा जी, आपकी खुशी को देख के हम भी बहुत खुश हैं।
0: थैंक यू मैम।
1: आकांक्षा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आप हमारे स्टूडियोज में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
2: बहनों, सजना है मुझे क्रम के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे ब्यूटिशियन आकांक्षा अग्रवाल से सुनीति आर्य की यह बातचीत। और अब कार्यक्रम में मेरी पाकशाला के अंतर्गत सुनते हैं कुछ एक अच्छी सी जानकारी, कुछ मीठी सी जानकारी आपको दे दें, क्योंकि कुछ मीठा हो जाए। बहनों बहनों, आपने सोन पापड़ी का स्वाद कभी न कभी तो जरूर लिया होगा, और नजीबाबाद के लोग तो इस पारंपरिक मिठाई से बखूबी परिचित हैं। आखिर यहाँ दशकों से चली आ रही इस मिठाई को हम खाते आए हैं। सोन पापड़ी की अपनी महीन परतों और मुँह में घुल जाने के लिए जानी जाती है। जो बेसन, घी, मेवे और इलायची के मिश्रण से बनती है। तो आपको बता दें बहनों की सोम पापड़ी का जिक्र हमने इसलिए किया है कि हमारी प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक योजना लागू की है और हमारे जनपद बिजनौर से इस योजना के तहत पारंपरिक मिष्ठान व्यंजन सोन पापड़ी को चुना गया है। पारंपरिक व्यंजनों को पहचान और बाजार दिलाने के लिए ये योजना लागू की गई है और नजीबाबाद की मशहूर सोन पापड़ी को अब ब्रांडिंग और पैकेजिंग के साथ बड़ा बाजार मिलेगा, जिससे जो है हमारी जो सोम पापड़ी है ये दूर दूर तक मशहूर तो होगी ही, क्योंकि इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहचान मिलेगी, इससे लोकप्रियता तो बढ़ेगी ही, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो हमारे शहर के लिए है ना ये अच्छी खबर। तो आप भी लीजिए इस पारंपरिक मिष्ठान का आनंद इस मीठे से गीत के साथ।

इस गीत का आनंद बहनों आपके साथ हमने भी लिया, और अब कार्यक्रम में चलते चलते आपको बता दें बहनों कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, फीडबैक तो हमको चाहिए ही, साथ ही आपको आने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें कि आने वाले मंगलवार यानी कि 19 तारीख को आप सुनेंगे हमारे यहाँ से हेलो सखी क्रम, और हेलो सखी में आप हमसे सीधे जुड़ सकती हैं फोन कॉल के माध्यम से। तो फोन करने के लिए हमारे नंबर आप नोट कर लीजिए बहनों, हमारा जो लैंडलाइन नंबर है वो है 01341, ये कोड है इसका, और 230-105 ये नंबर है हमारे यहाँ का। इसके साथ ही एक नंबर आपको और बता दे बहनों, 9457078288, एक बार फिर से सुन लीजिए 9457078288। तो इस पर आप आने वाले मंगलवार को हमें इसी समय कॉल कीजिएगा और सीधे हमसे जुड़िएगा। आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं बहनों, नमस्कार।

कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तराखंड की वादियों से जुड़े गढ़वाली लोकगीत, जिनमें पहाड़ों की मिठास भी है, अपनों का स्नेह भी और लोक जीवन की सहज धड़कन भी। तो आइए सुनते हैं कलाकार भगवती प्रसाद की आवाज में गढ़वाली लोकगीत।

आई श्रोताओं, एक बार फिर से पर्वतों की ठंडी हवाओं के स्पर्श को महसूस करते हैं इस अगले गढ़वाली लोकगीत में।

0: श्रोताओ, इसी लोकगीत के साथ आज का लोक धुनों से सजा सवरा कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं पर संपन्न हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिएगा।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द मिडडे न्यूज। The headline. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with his Dutch counterpart Rob Jessen and call on King William Alexander and Queen Maxima today. Several important agreements expected to be signed, including in the fields of semiconductor chips, AI and bilateral trade. Army Chief General Upen Dwivedi warns Pakistan against harboring terrorists and operating against India. West Bengal government orders re-verification of caste certificates issued since 2011. CBSE announces a 2-stage re-evaluation process of answer sheets for class 12 students. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj and Chirag Shetty enter finals of Silent Open after a thrilling victory over

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन करना है।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक

0: पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
4: If you heard me earlier,
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
4: ज्योग्राफी और हिस्ट्री और
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
5: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस

0: में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरुद्दीन और गोव से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही गीतकार। जब शब्द बुनकर गीत बन जाते हैं, जब शब्द बुनकर गीत बन जाते हैं तो कहलाते हैं खूबसूरत दिल में उतर जाने वाले एहसास। इन्हीं एहसासों से सजा हमारा ये कार्यक्रम है एक ही गीतकार। और श्रोताओं, आपका स्वागत करते हुए हम बता दें कि आज अगले 30 मिनट तक हम बात करेंगे उन सुरीले शब्दों की जो कभी प्यार बने, कभी इजहार, कभी दिल की धड़कन बने तो कभी किसी का इंतजार। आज के गीत कार्यक्रम में हमारे आज के गीतकार हैं अपने शब्दों को अनोखे ढंग से जिंदगी के हर रंग, उमंग और एहसासों को लिखने वाले गीतकार समीर। कहते हैं गीत वही है।

जो अमर होते हैं, जिनमें जिंदगी की हर खुशबू होती है, और समीर के गीतों में वही खुशबू है, वही दीवानगी जो हमने कहीं देखी नहीं है।

श्रोताओं, अभी आपने दीवाना फिल्म में सुना अलका याग्निक विनोद राठौर को, समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। और श्रोताओं, सच में इस गीत ने और इस फिल्म ने रातों रात शाहरुख खान और दिव्या भारती का सबको दीवाना बना दिया था। और वाकई में समीर के गीत हैं ही इतने खास, जहां एक तरफ शाहरुख खान और दिव्या भारती चमके उनके गीतों के माध्यम से, वहीं फिल्म अदाकारा माधुरी दीक्षित का नाम धक धक गर्ल भी उन्हीं के रचे गीत से पड़ा। 24 फरवरी 1958 को उत्तर प्रदेश के बनारस में जन्मे समीर ने अपने गीत कैरियर के सफर में 4000 गीत रचे हैं। अपने चाहने वालों के प्यार के साथ साथ आपके पास गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी सम्मान है। 1983 में बेखबर फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले समीर इस बात से बेखबर थे कि आगे चलकर वो अपने शब्दों से हर पीढ़ी को अपना दीवाना बना देंगे। उनके हर गीत की महक और हर शब्द इंसान के दिल की बात को समझता भी है और कहता भी है। तो आइए सुनते हैं आशिकी फिल्म का वो गीत जिसके लिए आपको मिला पहला फिल्म फेयर अवार्ड।

आशिकी फिल्म में आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल कुमार सानू को, शब्द रचना समीर की ही थी और संगीत नदीम श्रवण का। श्रोताओं, हालांकि हम जब कोई गीत सुनते हैं तो उसको गाने वाला, सुर और शब्दों से सजाने वाला हमारी नज़र के सामने नहीं होता है, लेकिन एक फनकार का हुनर अपनी कारीगरी से हर शब्द से गीत को इतना खूबसूरत बना देता है कि वो हर दिल की धड़कन बन जाता है। और यही खूबी थी समीर के गीतों में, और आज भी ये खूबी देखने को मिलते हैं क्योंकि आज भी उनका ये सिलसिला जारी है। और श्रोताओं, यही वजह है समीर के गीतों को प्यार करने की खूबसूरत वजह।

0: हिमेश रेशमिया की धुन से सजे इस गीत को आप सुन रहे थे फिल्म क्योंकि से। श्रोता अभी आते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, DTH पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
0: श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम एक ही गीतकार का आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज के हमारे गीतकार हैं मशहूर फनकार समीर। श्रोता, समीर बनारस में जन्मे थे और बनारस से ये सपना लेकर चले थे कि उनका कोई एक गीत रेडियो पर बज जाए और मशहूर उद्घोषक अमीन सयानी उनका नाम ले लें। और जब उनका ये सपना पूरा हुआ तो अपने गीत और अपना नाम रेडियो के सुनने के इंतज़ार में वो खुशी से सो नहीं पाए, और जैसे ही उनका नाम और गीत रेडियो पर आया तो बस वही पल उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खूबसूरत यादगार एहसास बन गया। आज भी उन पलों को याद करके समीर के मन में हमेशा ही कुछ कुछ होता है।

कुछ कुछ होता है। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज़ में इसको संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने। श्रोताओं, गीतकार समीर मजरू सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी और अपने पिता अनजान को अपनी कला का प्रेरणा स्रोत मानते थे और आज भी मानते हैं। संस्कार और साहित्यिक माहौल में पले बड़े होने के कारण उनके हर शब्द में इस तरह की खुशबू हमेशा झलकती हुई नजर आती है। समीर को अपने नाना की कुछ पंक्तियां बड़ी पसंद थी, तो आपको सुनाते हैं वो पंक्तियां। गुलाबों से पूछो ये जाकर कोई कि कांटे उन्हें क्यों सताते नहीं हैं। गुलाबों से पूछे ये जाकर के कोई कि कांटे उन्हें क्यों सताते नहीं हैं। ये गढ़ता है उनके जीवन जगत की, ये गढ़ता है उनके जीवन जगत की, जिसे वो किसी को बताते नहीं हैं। श्रोताओं, ये पंक्तियाँ समीर के जीवन की अनमोल सीख हैं। उनका कहना है कि यदि आपको गुलाबों की तरह महकना है तो कांटों का संघर्ष तो सहना ही पड़ेगा। और श्रोताओं, जिंदगी का दूसरा नाम ही है कभी खुशी कभी गम, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम।

जतिन ललित के संगीतबद्ध किए इस फिल्म के गीत को आपने सुना। फिल्म थी कभी खुशी कभी गम, आवाज़ लता मंगेशकर की। श्रोताओं, समीर ने एक बार कहा था कि जब उन्होंने अपने गीतों की लिस्ट काउंट कराई तो उसमें सबसे ज़्यादा गीत अलका याग्निक ने गाए। और अलका याग्निक का भी कहना है कि उनको जिंदगी में उनकी सफलता के जो उनके गीत हैं उसके पीछे समीर का भी बहुत बड़ा हाथ है। श्रोताओं, समीर की जो सादगी है वो हर गीत में अपनी कला का कमाल दिखाते हैं। खूबसूरती से हर शब्द को बुनते हैं, शब्दों के जो शब्द होते हैं उन्हें बड़ी गहराई से चुनते हैं। वो कहते हैं, मैं तो बस एक गीत लिखने आया था, लेकिन ऊपर वाले ने उन्हें एक सफल गीतकार बना दिया। उनकी जिंदगी का मूल मंत्र है महाभारत का ये श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। अगर मेहनत सच्ची हो, नियत साफ हो और शिद्दत से इंसान अपने दिल से काम में लगा हो तो एक ना एक दिन उसको उसका अच्छा फल जरूर मिलता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। श्रोताओं, कुछ अल्फाज उम्र से बड़े होते हैं, समय गुजर जाए फिर भी पुराने नहीं होते। और समीर ने अपनी पूरी जिंदगी नाम की है गीतों के नाम। समीर ने हर शब्द को दिल की गहराइयों से लिखा है। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत रचना फिल्म तेरे नाम से, जिसको आवाज दी है अलका याग्निक ने।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपने समीर के लिखे गीतों को सुना। एक ऐसे फनकार जो सबके दिल में बसते हैं, और हमारी कामना है कि उनका ये सफर यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो मुस्कुराते रहें और हमारे लिए नए गीत लाते रहें। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। एक ही गीतकार, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। अपनी संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। हमारे केंद्र से आज की इस द्वितीय सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है।

श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम रिश्ता ये खास है में। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो साथी, रेडियो दोस्त लोकेंद्र। श्रोताओं, आकाशवाणी की यात्रा के 90 साल के उपलक्ष में हम सभी खुशी से सराबोर हैं और इस खुशी को हम प्रतिदिन सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, क्योंकि आकाशवाणी से जुड़ी यादें और इसका रिश्ता हमेशा से बेहद खास और सुकून भरा रहा है। आकाशवाणी की गूंज और आकाशवाणी पर प्रसारित कार्यक्रम श्रोताओं के दिलों को सुकून प्रदान करते हैं। लहरों में लिपटी आवाज, हवाओं में घुला प्यार, लहरों में लिपटी आवाज, हवाओं में घुला प्यार, दूरियों में भी जो दिलों को जोड़ दे वो है आकाशवाणी का संसार। अल्फाज के धागों से बुना ये एक खूबसूरत एहसास है, अल्फाज के धागों से बुना ये एक खूबसूरत एहसास है, रेडियो से हमारा रिश्ता कुछ बहुत खास है। श्रोताओं, आकाशवाणी ने अपने अनूठे प्रसारणों के माध्यम से ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। अपनी स्थापना के बाद

0: से ही आकाशवाणी ने विविध लोक संगीत, शास्त्रीय कलाओं और ज्ञान परंपरा को सहेजने और बढ़ावा देने का अतुलनीय कार्य किया है। देश में आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में आकाशवाणी नजीबाबाद का नाम बहुत सम्मान और अदब के साथ लिया जाता है। आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोता हमारे लिए बहुत खास होते हैं, क्योंकि उनसे हमारा ये दिल का रिश्ता खास होता है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे शिक्षाविद श्रोता जुड़े हुए हैं जो आकाशवाणी नजीबाबाद को बहुत समय से सुनते हैं, और उनके व्यक्तित्व और कैरियर निर्माण में रेडियो की महती भूमिका रही है। आज हमने बात की लेखक, शिक्षाविद, प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार सिंह से। आप आरएसएम पीजी कॉलेज धामपुर बिजनौर में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर और प्रभारी विभाग अध्यक्ष भी हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में आपके 200 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। कई पुस्तक लेखन पर आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। आप रेडियो से 35 वर्षों से अधिक से जुड़े हुए हैं। रेडियो की महत्ता को इंगित करते हुए ये रिश्ता खास है के अंतर्गत हमने उनसे बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं की गई बातचीत के उनके अंश।
1: रेडियो हमारे दिल की धड़कन है, रेडियो हमारी यादें हैं, रेडियो हमारा बचपन रहा, रेडियो हमारा अतीत है, रेडियो हमारा आज भी है, रेडियो हमारा कल भी है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगानी के लंबे सफर में जब भी अगर हम रेडियो को याद करते हैं कि इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, कैसे ये हमारे जीवन में महत्व रखता है, तो हम देखते हैं कि आज एआई के युग में भले ही बहुत से माध्यम और साधन आ गए हैं, लेकिन रेडियो आज भी एक जीवित, एक जीवंत और एक बहुत ही उपयोगी साधन है जो समूचे भारत को, सारे लोगों को, गांव में, गांव के चौपाल में, कस्बों में, नगरों में, महानगरों में, विश्व में दूर दूर फैले देशों तक सभी को जोड़ती है। इसलिए रेडियो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रेडियो जो केवल ज्ञान नहीं देती, रेडियो जो केवल मनोरंजन भी नहीं देती, रेडियो केवल किसानों की भी बात नहीं करती है, रेडियो सबकी बात करती है। चाहे वो छात्र हैं, चाहे वो युवक हों, चाहे वो महिला हो, रेडियो सबकी बातें करती है। सबके संस्कार, सबके विमर्श, सबके विषय और सबके सरोकार को हमारे सामने लाती है। रेडियो धर्म निरपेक्षता है, रेडियो समाज का भी निर्माण करती है, रेडियो केवल व्यक्ति का निर्माण नहीं करती, रेडियो समूचे देश का भी निर्माण करती है और समूचे विश्व को भी जोड़ने का काम करती हो। हमने और आपने बीबीसी हिंदी के न्यूज भी सुने हैं, और हम समूचे दुनिया के अलग अलग स्टेशन की बातें भी सुनते आए हैं। कभी सिलोन के सिव्या का गीतमाला भी सुना करते थे, और भारत की बात हो तो चाहे छाया गीत हो, चाहे वो पुरानी आवाज कि अब आप आकाशवाणी से समाचार सुनेंगे। तो ये जो हिस्सा है हमारे जीवन का, जिसमें एक विश्वसनीयता है, जिसमें एक योग्यता है, पात्रता है, एक संवेदना है, एक संगीत है, एक समरसता है, वो हमारे आपके जीवन को ना केवल जोड़ती है, बल्कि बहुत पुराने समय से लेकर आज तक भी हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है, जहां सभी का साथ है, जहां सभी का विश्वास है और जहां सभी का मन जुड़ता है। बहुत बहुत बधाई प्रसिद्ध करते हैं, रेडियो हमारी जान है।
0: धन्यवाद सर, आपने रेडियो की हमारे जीवन में उपयोगिता पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। समाज और राष्ट्र के निर्माण में आकाशवाणी की महती भूमिका का प्रकाश डाला। श्रोताओं, आकाशवाणी से हमारा दिल का रिश्ता है।

आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है अब यहीं संपन्न करते हैं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, पहले सुनते हैं हमारी आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। आज रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा और रात्रि 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकेंगे और ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर चर्चा। लोकगीतों और रागनियों का सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी हमारे किसान भाई सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम हमारे युवा श्रोता सुनेंगे आज शाम 5:15 पर। इसमें आज क्रम होगा गीत आपके नाम और स्क्रैप बुक का। आज शाम 6:45 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे श्रोता सुन सकेंगे वार्ता भारतीय पुरातत्व ग्रंथों में न्याय की अवधारणा। वार्ताकार होंगी रचना देवी। आज शाम 7:32 पर सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकेंगे भजन। कलाकार होंगी रुचि अग्रवाल। हमारे फिल्म संगीत के कार्यक्रम श्रोता सुन सकेंगे आज शाम 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत। रात्रि 8 कार्यक्रम गीत संध्या और रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत हमारे श्रोता फिल्मी गीत सुन सकते हैं। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक

नजर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना हमारे श्रोता सुनते हैं प्रतिदिन प्रातः 6:05 पर। श्री रामचरित मानस गान की प्रस्तुति का समय रहेगा कल प्रातः 6:30 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे जानकारी हाइपरटेंशन, समय कल प्रातः 7:05 पर। खेती की बातें, इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसान भाई सुन सकते हैं भिंडी की फसल में रोग और कीट नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी, समय कल प्रातः 7:10 पर। कार्यक्रम सूरज के साथ साथ, ये कार्यक्रम ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर होता है, इसको आप सुनेंगे कल प्रातः 7:31 पर। सामयिक चर्चा, ये कार्यक्रम कल प्रातः 9:15 पर आप सुन सकेंगे। धरती गाती है, इस कार्यक्रम में कल प्रातः 9:20 पर श्रोता सुनेंगे रागिणी, कलाकार होंगे जनक सिंह और साथी। बात आसपास की, ये कार्यक्रम कल प्रातः 9:50 पर प्रसारित किया जाएगा। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर प्रसारित होगा कल प्रातः 10:00। कल दिन में 12:05 पर कार्यक्रम आपका पत्र मिला हमारे श्रोता सुन सकते हैं। कल दिन में 1:15 पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका के अंतर्गत बच्चे सुनेंगे चर्चा डिजिटल इंडिया और भविष्य जानकारी, विश्व दूरसंचार, माफ कीजिएगा, विश्व संचार और सूचना समाज दिवस पर चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर भी चर्चा हमारे बच्चे सुन सकते हैं। कल दिन में 1:45 पर लोकधारा कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे जौनसारी लोकगीत, कलाकार होंगे शिवा सरगम। कल रात 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और कल रात 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से करेंगे। कल शाम 7:50 पर अदबी दुनिया में कलाम शायर होंगे दीपिका माहेश्वरी। विविधा कार्यक्रम में कल शाम 6:45 पर आप सुनेंगे भेंट वार्ता, विषय रहेगा हाइपरटेंशन, कारण लक्षण और बचाव। कल शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे चर्चा पशुओं का दूध निकालते समय सावधानियां और इसके अतिरिक्त फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला प्रसारित की जाएगी। यह था हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो हेलो हेलो फ्रेंड्स, विश्वा वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें आज आपके साथ हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट अक्षी त्यागी।
1: गुड इवनिंग दोस्तों, अक्षी के साथ हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो पार्टनर सना परवीन। वैसे अक्षी, क्या हुआ, तुम बहुत सैड लग रही हो?
0: सैड नहीं हूँ, बस ऐसे थोड़ा सा ना मूड ऑफ है।
1: मगर क्यों?
0: आई डोंट नो।
1: लेकिन तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए मेरे पास कुछ है।
0: तुम्हारे पास? और वो क्या है?
1: अरे, हमारा सेगमेंट गीत आपके नाम, जिसमें हम अपने दोस्तों को सुनवाते हैं गीत।
0: ओह हाँ, तो हम लोग उसमें हमारे दोस्तों के मैसेजेस भी तो इंक्लूड करते हैं ना प्रोग्राम में। तो दोस्तों जल्दी से ना आप मेरा मूड सही करने के साथ साथ अपना भी मूड फ्रेश कर लीजिए, और जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर मैसेज कर दीजिए, जिससे हम आपके सारे मैसेजेस अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें। क्यों सना?
1: बिल्कुल अक्षी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपके और अक्षी के लिए ये खूबसूरत सा गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: Akashwadi at 90.
1: दोस्तों स्वागत है आपका अपने खास सेगमेंट कुछ खास है आज में, जिसमें हम बात भी करने वाले हैं एक खास टॉपिक टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट स्मार्ट तरीके पर।
2: जी हाँ दोस्तों, आज का ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो हर रात ये सोचते हैं कल से पक्का टाइम पर पढ़ाई शुरू कर दूंगा, लेकिन फिर वही हाथ में फोन, रील्स चालू और किताबें सिर्फ देख कर ही बंद कर देना।
1: बिल्कुल दोस्तों, अगर आपकी पढ़ाई, स्कूल असाइनमेंट और सोशल मीडिया के बीच बैलेंस नहीं बन पा रहा तो आज का ये सेगमेंट आपके लिए बहुत खास होने वाला है।
2: जी हाँ दोस्तों, आज आपको हम कुछ टिप्स बताएंगे जो अगर आप फॉलो करेंगे तो काफी असरदार होंगे भी।
1: टिप नंबर 1, टू डू लिस्ट बनाओ। सबसे पहले अपने दिन की प्लानिंग करो, सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले एक छोटी सी लिस्ट जरूर बनानी है।
2: जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे इतने सारे काम मत लिख दीजिएगा कि जिससे आप लोगों को स्ट्रेस हो जाए। बस जरूरी काम लिखो, लाइक मैथ्स रिवीजन, होमवर्क, 30 मिनट रीडिंग, टेस्ट प्रिपरेशन। और जब एक एक टास्क पूरा होता है ना तो अंदर से अलग ही खुशी मिलती है, क्यों सना?
1: बिल्कुल अक्षी, अब बात करते हैं एक बहुत फेमस ट्रिक की, पोमोडोरो टेक्निक। नाम थोड़ा फैंसी है लेकिन तरीका बहुत आसान है। 25 मिनट सिर्फ पढ़ाई करो, पूरा फोकस, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक, और ऐसे ही 4 सेशन के बाद थोड़ा लंबा ब्रेक। इससे पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, मतलब थोड़ा पढ़ो लेकिन स्मार्ट पढ़ो।
2: अब सबसे बड़ा जो एनिमी होता है ना वो मोबाइल फोन होता है हमारा। बस 5 मिनट इंस्टाग्राम खोलते हैं और रील्स चालू कर देते हैं और पता भी नहीं चलता 1 घंटा कब निकल गया। इसलिए पढ़ाई के समय ना नोटिफिकेशन बंद करो, फोन दूर रखो या फोकस मोड यूज करो। यकीन मानो दोस्तों, डिस्ट्रेक्शन कम होगा और पढ़ाई जल्दी खत्म होगी।
1: कुछ स्टूडेंट सोचते हैं पूरी रात जागना मतलब ज्यादा मेहनत,
2: लेकिन बिना नींद के ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं करता है, ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा।
1: बिल्कुल, कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी है, हेल्दी माइंड, बेटर फोकस।
2: दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि हर मिनट पढ़ते रहो,
1: लेकिन इसका मतलब है अपने सच को सही जगह इस्तेमाल करना। हर सक्सेसफुल स्टूडेंट के पास भी सिर्फ 24 आवर्स ही होते हैं दोस्तों, फर्क बस इतना है कि वो अपने समय को वाइजली यूज करते हैं।
2: दोस्तों छोटे छोटे स्मार्ट स्टेप्स लेकर अपने गोल्स की तरफ बढ़ो, क्योंकि स्मार्ट स्टडी सबका हक है।
1: इसीलिए स्टे फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव।
2: लेकिन सना, हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे जो दोस्तों के मैसेजेस हैं वो हम लोग अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। तो हमें ये मैसेज मिला है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से, और भेजने वाले हैं बहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, नाविया सिद्दीकी, और ये लिखकर भेज रहे हैं कि आरजे को गुड इवनिंग। शकील सिद्दी जी की, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी, सुदेश चौहान। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, और आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों इसी के साथ आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
2: अबे यार, बहुत ही थक गया आज तो, सर घूम रहा है मेरा गर्मी में।
3: क्या हो गया ऐसा?
2: अबे वोट डालने गया था, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, ये वोट हमेशा

0: गर्मियों में क्यों आते हैं?
1: अबे यार सुन, गर्मियों में चुनाव इसलिए होते हैं ताकि जो ये लंबी लाइन लग रही है ना, इस लंबी लाइन लगने के बाद आदमी की जो शक्ल है वो वोटर कार्ड वाली शक्ल से मिल जावे।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
3: तो सनाब, हमारे जो दोस्तों की मैसेजेस की लाइन है ना, वो बढ़ चुकी है और हमें ये मैसेज भेजा है गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से, और भेजने वाले हैं स्वर सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोत्रे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। और इसी के साथ हमें एक और मैसेज मिला है, वो है विलेज एंड पोस्ट राहुना गली आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, कशिश चौहान, प्रिंस राजपूत, कनिष्का चौहान, भव्य चौहान, सीमा रानी और राघव चौहान का।
0: अक्षय, लिस्ट तो बहुत लंबी है, कुछ मैसेजेस यहाँ भी हैं, जरा देखो ना। ये मैसेज हमें मिला है जनकपुरी सहारनपुर से, और भेजने वाले हैं जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो। अगला मैसेज है दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले, शेरी वडनेर अकोला से, अरुणा बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर। अगला मैसेज हमें मिला है बाजार रोड मुगलिसापुर से, भेजने वाले हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी।
3: तो हमारे दोस्तों के मैसेजेस तो आते रहेंगे, लेकिन हम उससे पहले चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट स्क्रैप बुक की ओर, जिसमें आज हमारी जो युवाणी साथी है श्रेया विश्वास, उनकी बातचीत हुई है दीक्षिका पाल से। ये हमारा पुनः प्रसारण है, तो आइए सुनते हैं दोस्तों।
4: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेगमेंट स्क्रैप बुक में, जहाँ बातें होती हैं मस्ती की, थोड़ी पर्सनल और थोड़ी फन की। और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट श्रेया विश्वास, और हमारे साथ आज जो हमारी गेस्ट हैं वो सुपर टैलेंटेड है और सुपर एनर्जेटिक है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं आज दीक्षिका। अच्छा दीक्षिका, सेगमेंट को शुरू करने से पहले कुछ हमें अपने बारे में बताइए।
5: मेरा नाम तो आपको पता ही है, और मैं अभी लॉ पढ़ रही हूँ और LLB का मेरा लास्ट ईयर है इस बार।
4: ओके, अच्छा आपकी फैमिली में कौन कौन है?
5: मेरी फैमिली में मम्मी, पापा, भाई, दादाजी।
4: अच्छा, तो आपने LLB क्यों चूज करी, मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन, या फिर आपको करियर ऐसे लॉ में ही जाना था?
5: बस ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था स्टडी से रिलेटेड कि मुझे किस फील्ड में जाना था। मेरा फ्लो के साथ जाने का था कि मतलब मैंने BCA चूज किया था तो मुझे उसी में करना था, बट मेरी फैमिली में सब लोग एडवोकेट हैं तो उन्हीं से इन्फ्लुएंस होके मैंने LLB को एज अ करियर चूज करने का, मतलब एज अ करियर लेने का सोचा।
4: ओके, मतलब आप इन्फ्लुएंस अपनी फैमिली के उससे। ओके, अच्छा आप मतलब पढ़ाई के अलावा भी आप क्या करती हैं, आपको कोई और भी आपके कोई शौक है?
5: जी मुझे गाने बहुत पसंद है, मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है और मुझे खेलना भी बहुत पसंद है।
4: ओके, तो मतलब आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है फिर?
5: मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट और बैडमिंटन मुझे बहुत पसंद है, और एथलेटिक्स में भी बहुत सारे गेम्स हैं, मुझे वो बहुत पसंद है।
4: ठीक है, तो दीक्षिका आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारा सेगमेंट है वो ऐसा ही है, हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और इसका आपको फटाफट फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में जवाब दे देना है।
5: जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
4: ठीक है, तो आपको पहले राउंड का बता देते हैं। जो ये पहला राउंड है इसे हम कहते हैं फेवरेट फीवर। ठीक है, इसमें मैं आपसे कुछ फास्ट मोड में सवाल करूंगी और फास्ट ही मोड में आपको उनके जवाब देने हैं। ठीक है?
5: ठीक है,
4: तो आपको फटाफट जवाब देना होगा बिना सोच विचार के।
5: बिल्कुल।
4: ओके, तो पहला सवाल है आपसे फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी।
5: फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी यही है कि बस स्कूल जाना, स्कूल से आते ही बिना किसी टेंशन के, बिना किसी केयर के हमें बस खेलने में लगना था और कुछ काम नहीं था, बस खाना पीना, खेलना और टीवी देखना और कुछ नहीं।
4: तो बेसिकली आप कह रही हैं वो बचपन की याद जिसमें हम खाते थे, पीते थे, खेलते थे, खाते थे, पीते, बस यही करते
5: बस
4: थे।
5: यही चीज है, और सबसे ज्यादा तो खेलना, मतलब बस कुछ टेंशन ही नहीं है, घर वाले भी नहीं पूछ रहे कि क्या कर रहे हो, बस खेलते रहते थे।
4: ठीक है, अच्छा फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है आपका?
5: मुझे मोमो बहुत पसंद है और स्प्रिंग रोल्स भी बहुत पसंद है।
4: ओके, अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल?
5: कंप्यूटर वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट।
4: ओके, फेवरेट एम्बैरेसिंग मोमेंट जिसे सोच के आप आज भी हंसती हैं?
5: ऐसे कुछ मुझे याद नहीं है जो मेरे लिए एम्बैरेसिंग हो, बट हाँ जो मैं थोड़ा रिग्रेट करती हूँ वो ये है कि मैं 12th में थोड़े ज्यादा अच्छे मार्क्स ला सकती थी पढ़कर, जो कि मैं नहीं पढ़ी, वो मेरी गलती है, मैं नहीं पढ़ी हूँ, तो बस वो मेरे पेरेंट्स के लिए थोड़ा हो जाता, उनको थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी मेरे से, जो कि मैं थोड़ी कम लाई हूँ।
4: ओके, अच्छा आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस मेमोरी, जो स्टेज पे आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस मेमोरी हो?
5: लास्ट ईयर मैंने एक परफॉर्मेंस दी थी अपने कॉलेज में, तो वही है।
4: अच्छा, क्या मतलब
5: सॉन्ग गाया था मैंने?
4: अच्छा,
5: तो वो वही है।
4: और सॉन्ग क्या था?

0: देवदन। थैंक यू।
1: बहुत ही प्यारा गाया आपने। और अच्छा, फेवरेट पर्सन कौन है जो आपको बहुत इंस्पायर करता हो?
0: मेरे को मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत इंस्पायर करते हैं। वो दोनों मुझे ऐसे इंस्पायर करते हैं, मतलब वो भी जो भी उनका रेस्पेक्टिव फील्ड है, वो अपने काम को हमेशा टाइम से करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल भी नहीं करते, और अपने काम को हमेशा अपनी साइड से 100% देना चाहिए। उनसे मुझे यही सीखने को मिलता है, और अपने काम को कभी टालना नहीं चाहिए, तो उससे हम जल्दी अपनी लाइफ में कुछ कर पाते हैं।
1: अच्छा, कितना सीख लिया आपने? मतलब
0: मैं अभी लर्निंग प्रोसेस में ही हूँ, अभी मैं
1: प्रोसेस
0: सीख ही
1: चल
0: रही
1: रहा
0: हूँ,
1: है।
0: प्रोसेस चल रहा है, पर मैं ये चीज़ उनकी बहुत एडमायर करती हूँ।
1: ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अपना काम हमेशा समय पे करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और दीक्षिका, आपने हमारा जो पहला राउंड है बहुत बढ़िया खेला। आपने हमें अपने जो छोटे मोटे सीक्रेट्स हैं, फेवरेट, सब बता दिए, और हमारे लिसनर्स ने भी वो जान लिए हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारे सेकेंड राउंड की बारी है, और सेकेंड राउंड है हमारा दिस और दैट। ठीक है, इसमें मैं आपको दो चॉइस दूंगी और आपको फटाफट बताना है उन चॉइसेस में चूज करके। ठीक है?
0: ठीक है, आई एम रियली एक्साइटेड।
1: ओके, तो पहला है टी और कॉफी,
0: टी,
1: माउंटेन और बीचेस,
0: माउंटेन्स,
1: मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल,
0: मॉर्निंग पर्सन,
1: इंस्टाग्राम या यूट्यूब,
0: यूट्यूब,
1: टेक्सटिंग और कॉलिंग,
0: कॉलिंग,
1: पिज्जा और मोमोज,
0: मोमोज,
1: बुक्स और मूवीज,
0: बुक्स,
1: रोड ट्रिप या फ्लाइट ट्रिप,
0: रोड ट्रिप,
1: कॉमेडी और हॉरर,
0: कॉमेडी,
1: क्लासिक और पॉप।
0: क्लासिक।
1: ओके, बहुत ही क्या स्पीड से आपने दीक्षिका जवाब दिए हैं। लगता है आप काफी मतलब तैयार होके आई थी दिस और दैट के लिए।
0: मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था यहाँ क्या होने वाला है, बट मैं अपनी चॉइसेस को लेके क्लियर हूँ, तो मैंने जवाब दे दिया। बस जो वो बोला ना मैंने, गो विद द फ्लो, तो वही किया है मैंने।
1: बहुत अच्छा से, बहुत ही अच्छे से खेला आपने सेकंड राउंड। अब अपने आते हैं अपने थर्ड राउंड पे, दैट इज व्हाट इफ। ठीक है,
0: जी
1: मैं आपको कुछ सिनेरियोस बताऊंगी व्हाट इफ करके क्वेश्चन से, और आपको हाइपोथेटिकली आप उसका जवाब दे सकती हैं। ठीक है, तो पहला है आपसे, व्हाट इफ आपको एक दिन के लिए इनविजिबल होने की पावर मिल जाए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगी?
0: मैं सबसे पहले इनविजिबल होके अपने मोस्ट फेवरेट्स और जो बहुत अच्छे गायक हैं और सिंगर्स हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगी और उनसे कुछ टिप्स लेना चाहूंगी जो मैं अपनी सिंगिंग में उतार सकूं।
1: लेकिन आप तो इनविजिबल होंगी ना, तो वो आपको देखेंगे कैसे?
0: मैं अपना पूरा टाइम दूंगी वहां पे, जिस टाइम जब तक इनविजिबल रहूंगी मैं वहीं पे रहूंगी, उनको देखूंगी उनका एंटायर मतलब रूटीन क्या होता है, और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट डे मैं विजिबल हो जाऊंगी तो मैं उनको उनसे बात करना चाहूंगी।
1: अगर वो आपको देखते ही डर गए तो
0: नहीं, मैं इतनी प्रिपेयर्ड रहूंगी कि मुझे कैसे टैकल करनी है सिचुएशन।
1: ठीक है, ठीक है। उम्मीद है आपको, आपको जब ये पावर मिले तो कोई सिक्योरिटी गार्ड आपके बीच में ना आए। चलिए, दूसरा सवाल है, व्हाट इफ एक दिन के लिए आपको खुद का कॉन्सर्ट करने का मौका मिले, तो पहला गाना कौन सा गाएंगी?
0: मैं सबसे पहले गाना गाऊंगी तुमसे ही, बाय मोहित चौहान।
1: चलिए अगले सवाल पे आते हैं, व्हाट इफ आपको टाइम मशीन मिल जाए, तो आप किस एरा में जाना चाहेंगे, मतलब पास्ट में, फ्यूचर में, कहाँ?
0: मैं पास्ट में जाना चाहूंगी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे अपना बचपन बहुत पसंद है, और बचपन में जैसे मैं रहती थी मतलब बिल्कुल कैफ्री, मैं ऐसी अभी भी हूँ, मैं बिल्कुल चेंज नहीं हुई हूँ, बट मैं उस टाइम में जाना बिल्कुल पसंद करूंगी। बहुत अच्छा टाइम था।
1: दीक्षिका, ये था हमारा व्हाट इफ राउंड, और यही था हमारा सेगमेंट स्क्रैप बुक। तो कैसा लगा आपको हमारा सेगमेंट?
0: मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा नर्वस थी, बट अभी जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे बहुत अच्छा लगता गया, और मुझे अब सवालों के जवाब देने में भी बहुत मजा आ रहा था। और
1: बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षिका। दीक्षिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस सेगमेंट में बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें आपके साथ बातें कर कर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
0: मुझे भी आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए।
1: यो वेलकम। तो दोस्तों, ये तो था हमारा सेगमेंट स्क्रैप बुक, और हमारे साथ थी हमारी सुपर टैलेंटेड दोस्त और गेस्ट हमारी आज की दीक्षिका। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, लेकिन मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ इसी सेगमेंट स्क्रैप बुक में। तब तक के लिए खुश रहिए, गाते रहिए और अपना ख्याल रखिए।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: पिंकी।
4: हाँ जी।
3: वो तुम्हें डॉक्टर के जाना था ना आज, हो आई तुम?
4: जी हो आई मैं। वो ना डॉक्टर ने मुझे कहा है कि एक महीना आराम करना है, और एक महीना आराम करने के लिए या तो मुझे स्विट्जरलैंड जाना है या पेरिस। अब आप बताइए कि हमें कहाँ जाना है?
3: दूसरे डॉक्टर के पास।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
4: तो सना, आप चलते हैं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो सेगमेंट चल रहा था गीत आपके नाम को, तो हमारे गीत आपके नाम में हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, और हमें मैसेज मिला है ये मध्य प्रदेश से, और भेजने वाले हैं छिंदवाड़ा बेरड़ी नाना जी, लाम से मीना लाम से, तेजस जय लाम से, हर्षिता लाम से। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मैसेज मिला है, ये भेजा है हमें नई बस्ती गंज डूडावरा से, और भेजने वाले हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट मैसेज मिला है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान, भेजने वाले हैं जगमाला सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार। और ये हमें मैसेज मिला है शेरवानी स्कूल गंजडूडू वाला उत्तर प्रदेश से, आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लूबना सिंह, आलिया अंसारी। और इसी के साथ हमें मिला है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से, और भेजने वाले हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हीना कौसर। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अब अपने इस सेगमेंट में ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, मैसेजेस के इस कड़ी में कुछ मैसेजेस और शामिल और जोड़ते हैं। तो ये मैसेज हमें मिला है लाल कुर्ती रुड़की केंट से, और भेजने वाले हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राज। अगला मैसेज हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, और भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। तो दोस्तों, आइए अब आपको सुनवाते हैं आज की शाम का ये एक और खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763।
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्लेयर और कहानियां सारी जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर सुन सकते हैं। आप सभी हमारे प्रोग्राम्स को लाइक शेयर कॉमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं अक्षी त्यागी
0: और मैं सना परवीन, हम दोनों को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ड ने कहा कि समझौते के बाद भारत

0: और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों और बहनों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया अंकित कुमार
1: और आपके भैया हिमांशु रंजन की
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: और हिमांशु भैया कैसे हाल चाल है तारे?
1: बस भैया सब राज्य खुशी। और भैया देखो मौसम बदल जा तो भैया खांसी खुरका तो हो ही जा, लेकिन भैया देखो हमें अपना ध्यान रखना, क्योंकि भैया देखो अगर हमने लापरवाही कर दी तो भैया खेती बाड़ी का काम प्रभावित हो जाएगा।
0: बिल्कुल भैया, देखो बारिश तो आ रही भैया, आंधी तूफान भी आ रहा है।
1: बिल्कुल
0: और भैया आंधी तूफान में हम तो किसान भाई को सलाह देंगे कि भैया जब भी अगर आंधी तूफान आए, अगर हमारे किसान भाई बाहर हैं, तो भैया पेड़ से लगकर बिल्कुल भी खड़े ना हों।
1: बिल्कुल पेड़ हो या भैया कोई बिजली का खंबा हो, तारों के नीचे भैया इन जगह भैया हमें नहीं खड़ा होना।
0: बिल्कुल।
1: और भैया एक बात का और ध्यान रखना, भाई पेड़ और खंबा तो हमने ध्यान रख लिया, लेकिन भैया जो ये टावर होए करे ना, जो ये देखा होगा तुमने जिसमें ये एयरटेल का टावर है या भैया किसी और का है, तो भैया उसके नीचे भी नहीं खड़ा होना।
0: बिल्कुल भैया, देखो आपदा कहीं से भी आ सकती है। और भैया देखो साफ बात यो हो
1: हाँ हाँ
0: भैया, अगर हम अपनी आंधी तूफान में घर से बाहर ही ना निकलें तो यो आफत भी ना हो।
1: बिल्कुल आफत ना आने की। और भैया देखो दिन ब दिन भैया अब मौसम बदल लिया है, और भैया देखो मई का दूसरा पखवाड़ा तो शुरू हो ही गया, तो भैया हमें इस गर्मी के मौसम में
0: हाँ
1: भैया खुद के साथ साथ जो हमने कोई अन्य व्यवसाय कर रखा है, चाहे भैया वो डेयरी का व्यवसाय है या भैया मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, या भैया चाहे कुक्कुट पालन है, तो भैया सब का ध्यान हमें रखना।
0: बिल्कुल भैया, देखो कोई भी जीव हो भैया, गर्मी तो सबको लगती है भैया,
1: बिल्कुल
0: उन्हें समय से भैया चारा पानी देना है। और भैया कभी कभी हमारे किसान भाई ऐसा कर रहे हैं और टैंक का पानी, गर्म पानी अपने
1: हाँ
0: पशुओं को देते हैं,
1: अच्छा
0: तो भैया ऐसा हमारे किसान भाई को बिल्कुल भी नहीं करना। ताज़ा पानी अपने पशुओं को

0: लाना है।
1: भैया जिस प्रकार देखो हमें गर्मियों में भैया यो मन कराया ना कि बस ठंडा पानी मिल जाए, तो भैया उसी प्रकार हमें अपने पशु को नल का निकला हुआ या भैया समरसेबल का निकला हुआ ताजा पानी पिला में।
0: बिल्कुल भैया,
1: और एक बात का और ध्यान रखा भैया, समरसेबल का बटन दबा के छोड़ना नहीं है कि भैया पानी बहता रहे।
0: बिल्कुल भैया, देखो जल है तो कल है, जल को भी सुरक्षित रखना।
1: बिल्कुल। और अंकित भैया देखो बातचीत तो हम और भी करेंगे अभी, और भैया बहुत सारी चीजें किसान भाइयों को सुनवानी है, तो भैया ये बताओ आज भला तारीख कौन सी है।
0: देखो भैया, आज है 16 मई, और भैया आज के दिन जो हमारे किसान भाई हैं या हमारा देश, भैया राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाता
1: बिल्कुल
0: है।
1: भैया यो ही हम पूछना चाह रहे थे भैया। और आज यानी कि भैया 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं, और भैया इसका जो मुख्य उद्देश्य है भैया वो ये है कि लोगों को डेंगू रोग के प्रति जागरूक करना,
0: बिल्कुल भैया।
1: इसके कारण, इसके लक्षण भैया, और साथ साथ इसका बचाव और उपचार की जानकारी देना है।
0: बिल्कुल भैया, देखो अगर ये डेंगू होता है ना भैया, भैया एलीज जो मतलब होता है ना मच्छर, उसके काटने से होता,
1: जी जी बिल्कुल
0: और भैया ये दिन में काटता।
1: भैया दिन में काटे। और एक एक बात और था, पता नहीं पता यो हमें नहीं पता, लेकिन भैया यो साफ पानी में भैया पैदा होता।
0: बिल्कुल भैया, तो इसका मतलब है कि भैया हम घर के आसपास पानी नहीं जमा होने देना।
1: बिल्कुल। अब भैया देखो घर के आसपास जो पानी जमा होने वाली जगह है, जैसे भैया कोई टायर पड़ा है, या भैया कूलर कोई ले लो, कोई ड्रम है, या पानी की टंकी है, टूटे बर्तन है, या भैया अन्य स्थान जहां पर भैया पानी जमा होता हो,
0: बिल्कुल भैया,
1: तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पानी को जमा नहीं होने देना।
0: बिल्कुल भैया, एक बात का और ध्यान रखना
1: वो क्या भैया?
0: भैया, हमें पूरी बांह के कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भैया
1: हाँ
0: दिन में ये काटेगा
1: हाँ
0: तो भैया एडीज मच्छर जो होता है, इसे सावधानी में हमें रखनी है।
1: बिल्कुल। और भैया देखो जब डेंगू होए करे तो डॉक्टर यूं बताए करे हैं कि इसके कुछ प्रमुख लक्षण होए करे हैं। भैया प्रमुख लक्षणों में अगर हम बात करें तो तेज बुखार है, हमारा सिर दर्द है, आंखों के पीछे दर्द है, शरीर और जोड़ों में दर्द है, कमजोरी, उल्टी आना, भैया ये सब जो है भैया इसके लक्षण हैं।
0: और भैया कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें प्लेटलेट्स भी गिर जाती हैं, तो भैया इन सब बातों से बचने के लिए भैया सावधानी जरूरी है।
1: बिल्कुल भैया सावधानी जरूरी है। तो भैया आज का जो हम दिन मना रहे हैं राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में, भैया वो भी इसीलिए मना रहे हैं कि भैया हमारे जो श्रोता भाई हैं या भैया हमारे जागरूक किसान हैं भैया वो इससे बचाव रख सकें।
0: बिल्कुल
1: और भैया जब हम खुश रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हम खुश रहेंगे, तो भैया हमारी खेतीबाड़ी भी बढ़िया चलती रहेगी।
0: बिल्कुल भैया, देखो स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शरीर भी करेगा काम करने को,
1: हाँ
0: जब ये
1: बिल्कुल
0: बीमार रहेंगे तो भैया हम काम कैसे कर सकेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखो अंकित भैया आज दिन भी कुछ ऐसा ही है।
0: देखो भैया, आज है दिन शनिवार,
1: बिल्कुल
0: और भैया शनिवार के दिन हमारे किसान भाई सुनते हैं लोकगीत व रागनियों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी।
1: बिल्कुल। अब भैया देखो किसान भाई सुनेंगे तो जब ही जब तुम नंबर बताओगे वो हमें फोन करेंगे,
0: बिल्कुल
1: तो जरा
0: भैया,
1: किसान भाई को नंबर और बता दो लगे
0: देखो
1: हाथ।
0: भैया हमारा मोबाइल नंबर है 9457-07-82-88, और भैया हमारा एक लैंडलाइन नंबर है 0-13-41-230-105।
1: बिल्कुल अंकित भैया। अब देखो किसान भाइयों ने नंबर नोट कर लिया है, अब भैया जब तक किसान भाई हमें फोन करें
0: हाँ
1: तो क्यों ना भैया हम भी कुछ जरूरी काम कर ले, मैं कुछ जरूरी
0: बिल्कुल
1: संदेश सुन ले मैं।
0: बिल्कुल भैया,
1: ठीक है भैया।
2: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
3: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
2: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
3: खुशहाली का नया प्रयोग।
4: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: AIR at 90.
1: देखो हिमांशु भैया, संदेश तुम्हारे किसान भाई ने सुन लिया।
2: बिल्कुल भैया,
1: अब देखो हम बात कर रहे थे अपने आज के कार्यक्रम की। क्यों ना भैया, जल्दी से शुरू कर लेते हैं हम आज का
2: कार्यक्रम। बिल्कुल भैया, तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। हेलो लोक मंजरी।

0: आपने बोई है इस बार गन्ने की?
1: 118 बोया जी,
0: जी
1: 118।
0: जी तो आज मदन गिरी जी क्या सुनना चाहेंगे?
1: मैं पहली बात तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ,
0: जी
1: ये बताऊंगा कि परसों जो है सोमवार को मेरी शादी की वर्षगांठ है, 49 साल हो जाएंगे
0: जी
1: और आप सब आमंत्रित हैं।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: जी,
0: मदन गिरी जी, सबसे
1: हाँ
0: पहले तो
1: हाँ
0: देखिए आपको बहुत बहुत बधाई हो,
1: बहुत बहुत
0: और इसी
1: शुभकामनाएं
0: तरह
1: आपको।
0: आप जो है स्वस्थ रहें, और हमारे आकाशवाणी में आप नियमित तौर पर कॉल करते रहें। जानकारी जो यहाँ से दी जाती है आपको अच्छी लगती होगी, आई होप।
1: ये
0: तो
1: बहुत ही अच्छी लगती है।
0: जी, तो क्या सुनना
1: और
0: चाहेंगे आज?
1: मैं बता रहा जी, मेरा 9 डंडी का बीज ना
0: बिल्कुल
1: मेरे ससुर ने दिया जड़वाए।
0: जी
1: बिल्कुल
0: जी जी
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल मदन गिरी जी, आपकी पसंद की या हम आपने जो आपने रागनी या लोकगीत बताया है, मेरा नौ डांडी का बीज ना, बिल्कुल आपके लिए ला रहे हैं, और आपने हमें कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: और मैं एक बात और
0: जी।
1: थी, आचार्य सत्यवीर जी है ना,
0: जी जी
1: उन्हें उन्हें बहुत पसंद है गाना, उन्हें भेंट करना चाहता हूँ मैं।
0: ठीक
1: जी
0: है
1: जी
0: जी,
1: जी जी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल जी।

0: मेरा नौ दांडी का बीज ना, अभी हमारे किसान भाइयों ने सविता साथी की आवाज में प्यारा सा लोकगीत सुना। और भैया देखो अगले कॉलर कौन है जरा।
1: बिल्कुल भैया, हेलो हेलो लोक मंजरी
2: हेलो लोक मंजरी
1: जी, नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं, नाम बता।

0: दीजिए अपना।
1: जी, मैं जिला मुरादाबाद, ग्राम रिहानपुरा, साबिर अली बात कर
0: जी जी
1: रहा
0: बहुत बहुत स्वागत है साबिर अली जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और खेती किसानी कैसी चल रही है आपकी?
1: हूँ। खेती किसानी बढ़िया है इस टाइम तो।
0: जी। और आपकी तरफ मौसम कैसा हो रहा है अभी?
1: मौसम अब तो ठीक हो गया ना, हम तो मई का पता ही ना चला, मई का नहीं था।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो साबिर अली जी आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: एक राग भी सुनवा दीजिए हमें।
0: जी
1: जी,
0: जी जी बताइए।
1: आसू ताने मारा मखना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकित भैया साबिर अली जी की जो फरमाइश पर प्यारी सी रागनी सुनवा देते हैं बिल्कुल और भैया, सभी किसान भाई इसका आनंद उठा सकते हैं। बिल्कुल भैया।

0: देखो अभी हमारे किसान भाई ने प्यारी सी रागनी सुनी और देखो मनोरंजन भी हो गया होगा।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: भैया देखो अगले कॉलर कौन है लाइन पर।
1: ठीक है भैया।
0: हेलो हेलो लोक मंजरी
2: हेलो जी। हेलो लोक मंजरी। नमस्कार
0: जी, नमस्कार
2: अंकित जी, मैं मुस्तकीम बोल रहा हूँ बिजनौर से।
0: जी। मुस्तकीम जी कैसे हैं आप?
2: जी बढ़िया, आपकी दुआएं आशीर्वाद ऊपर वाले का भी और आपका भी। सर
0: जी, तो आपके यहाँ का मौसम कैसा है इस टाइम?
2: मौसम तो कभी बादल हो जाता है कभी, अब तो इस वक्त तो गर्मी बहुत हो रही है सर।
0: बिल्कुल
1: जी, देखिए गर्मी के दिन चल रहे हैं, गर्मी होना तो लाजमी है। और आप बताइए, आप क्या काम करते हैं आप?
2: जी मैं हिमांशु जी, मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ सर
1: जी
2: मैं।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। और खेती किसानी भी करते हैं कुछ आप?
2: सर जी थोड़ी सी जमीन है, खेती किसानी कर रहा
1: जी
2: हूँ, इसमें गन्ना बोया है सर।
1: बहुत
2: जी जी
1: बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। जो जानकारी आपको यहाँ से दी जाती है, क्या कुछ लाभ आप उससे कमाते हैं?
2: जी बराबर सर। जो विशेषज्ञ आते हैं, जो बात आपसे बात करते हैं, प्रमोद जी से बात करते हैं, उसी जानकारी से हम उस कार्य को हमारे लगे काम करते हैं, तो उससे हमें वो जानकारी मिल रही है इस
1: बिल्कुल
2: कार्यक्रम से, कृषि जगत।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और कौन सी रागनियां, लोकगीत सुनना चाह रहे हैं आप?
2: सर मैं ये जो हरी भरी तरकारी लोकगीत है सर, ये सुनना चाहूंगा।
1: चलिए
0: बिल्कुल,
1: चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
2: आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी, आपने मेरे कॉल को रिसीव किया।
1: जी
0: जी
1: जी
0: जी
1: जी

0: हरी भरी तरकारी ले लो। देखो भैया कितनी अच्छी राग, कितना अच्छा लोकगीत हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, और भैया हमारे किसान भाई और लोकगीत अपनी पसंद के सुन सको। तो हिमांश भैया नंबर बता दो जरा।
1: बिल्कुल भैया, हमारा जो एक मोबाइल नंबर है उसका नंबर है 94-57-07-82-88, और भैया हमारा एक लैंडलाइन नंबर है वो है 013-41, ये तो STD कोड है, और नंबर है 230-105।
0: देखो भैया तुमने उधर नंबर बताया और उधर अगले कॉलर देखते कौन।
1: ठीक है भैया, देख लेते हैं कौन है। हेलो लोकमंजरी
2: हेलो लोकमंजरी
1: जी,
2: जी,
1: नमस्कार जी, कौन सा आप बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए
2: नमस्कार
1: अपना।
2: जी, मैं ब्रजपाल बोल रहा हूँ, गाँव राम सावरा जिला सहारनपुर से जी।
0: जी तो ब्रजपाल जी कैसे हैं आप?
2: मैनपाल सिंह की गाई कोई रागनी सुना दो जी।
0: मैनपाल सिंह की?
2: जी सर
0: जी
1: जी
0: जी
1: मैनपाल
0: बिल्कुल।
1: सिंह की रागनी सुनाएंगे। पहले ही बताइए आप ठीक हैं, आपकी खेती किसानी कैसी चल रही है?
2: ठीक है सर, छोटी किसानी भी ठीक है, बस एक नया गन्ना जो बोया उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई,
0: जी
2: बारिश की वजह से कम जम रहा जी।
1: जी
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा
1: बिल्कुल, देखिए ये बहुत सारे हमारे किसान भाइयों की समस्या है। तो देखिए जब
2: जी सर
1: प्रकृति की मार पड़ती है तो ऐसा ही होता है, तो देखिए इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप कुछ प्रयास कर सकते हैं।
2: जी सर
0: बिल्कुल, उसके गन्ने की निराई गुड़ाई कर सकते हैं जिससे गन्ने को निकलने में अंकुरित होने में अच्छा समय मिल जाता है।
2: जी सर
1: चलिए
0: तो
1: तो
0: आप सुनवाते हैं आपको ये प्यारी सी रागनी।
2: ठीक है सर।

0: साथ रहनिया संघ के साथ थी। दया मेरे पे फेर दियो भी, देखो कितनी चिरागनी हमारे किसान भाई ने सुनी।
1: बिल्कुल भैया,
0: देखो हिमांशु भैया थारा भी मन प्रशंसा लग गया मुझे।
1: भैया देखो जब गीत संगीत हो करे ना,
0: हाँ
1: हाँ मारा क्या सबका दिल भैया प्रसन्न हो जा, मन लगे करे भैया फिर तो काम धाम में।
0: बिल्कुल भैया, जो हमारे किसान भाई और रागनी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद की, तो एक बार नंबर और बता दो।
1: बिल्कुल भैया, हमारे किसान भाई अब से लेके और भैया 6:45 तक भैया हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। नंबर है 9457-07-82-88 और भैया दूसरा नंबर है हमारा 0-13-41, ये तो STD कोड है, और नंबर है 230-105।
0: बिल्कुल भैया, देखो तुमने फोन करा और अगले कॉलर देखते कौन।
1: ठीक है भैया।
0: हेलो लोक मंजरी।
2: हेलो लोक मंजरी सर।
0: जी कौन साहब बात कर रहे हैं?
2: मैं सर अमित धीमान बोल रहा हूँ, किरतपुर के पास कसौर गांव से।
0: जी अमित जी कैसे हैं आप?
2: सर हम तो बढ़िया हैं सर, आप सुनाएं।
1: बस हम भी बहुत बढ़िया हैं, आकाशवाणी परिवार में सब ठीक ठाक हैं। और बताइए आपकी खेती किसानी कैसी चल रही है?
2: सर बढ़िया है, मुंजी के लिए जमीन तैयार करी है सर।
1: अच्छा, तो आप सबसे पहले ही बताइए, आप जमीन तैयार कर रहे हैं तो क्या आप मिट्टी की जांच भी करा रहे हैं इस बार या नहीं?
2: सर इस बार तो अभी नहीं कराई सर।
1: अच्छा, इससे पहले कराई है कभी?
2: इससे पहले एक बार कराई थी
1: जी
2: गन्ने
1: जी
2: के लिए।
1: जी तो देखिए हम आपसे यही निवेदन करेंगे, एक तो जब खेत हमारे खाली होते हैं तो मिट्टी की जांच हमें अवश्य करानी है।
0: और अमित जी
2: जी
0: आप
2: जी
0: धान की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एक रेडियो पाठशाला चलती है बासमती, तो आप उसे भी नियमित सुनते रहिए, जिससे आपको जो
2: जी
0: कृषि में लाभ होगा।
2: जी जी
1: जी
0: तो
1: तो
0: आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
2: सर दहेज के किस्से की कोई रागनी सुना देना सर।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, आपको सुनवाएंगे दहेज के किस्से की रागनी।
1: तो आपने हमें कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: कुछ सर

0: दुनिया में दहेज दोस्तों, देखो नरेंद्र सिंह की आवाज में कितनी बड़ी प्यारी सी रागनी सुनी, देखो कितना इसमें संदेश छुपा हुआ है।
1: बिल्कुल भैया,
0: और भैया देखो अगले कॉलर कौन है ये भी देख ले।
1: बिल्कुल भैया, ये भी देखना जरूरी, तो देख लेते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो लोक मंजरी।
2: नमस्कार सर
1: जी। नमस्कार जी, नाम बता दीजिए, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं मास्टर हुकम सिंह बोल रहा हूँ सर
1: जी। जी बहुत बहुत स्वागत है मास्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
2: मैं तो ठीक हूँ सर, आप सब परिवार ठीक है?
1: जी जी बहुत बढ़िया है
2: परिवार।
1: जी जी सब ठीक ठाक है यहाँ पर। और देखिए आप खेती किसानी ठीक चल रही है आपकी, ये बता दीजिए।
2: खेती किसानी मैंने ठेके में दी हुई है सर।
1: जी जी जी जी
0: तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
2: मैं एक उपदेश सुनवा दो भैया का।
0: जी जी
1: अच्छा, उपदेश परक रागनी सुनना चाहते हैं आप?
2: हाँ जी, उपदेश वाली रागनी सुनवा दो।
1: चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल आपकी पसंद पर सुन लेते हैं ये उपदेश परक रागनी। आपने हमें कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल भैया।

0: देखो बेर सा सब ढूंढ लिए,
1: बिल्कुल
0: कितनी
1: भैया,
0: प्यारी रागनी हमारे किसान भाई ने सुनी है।
1: भैया
0: और देख
1: हमारा तो मनोरंजन हो गया, भैया हमारे किसान भाइयों का भी हो गया होगा।
0: बिल्कुल भाई, देखो अब जब घड़ी भी ज्यादा बातचीत की इजाजत नहीं।

0: तो किसान भाइयों, ये तो था लोकगीतों वैराग्यों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी।
1: बिल्कुल भैया,
0: और भैया, जिन किसान बहन भाइयों के अभी भैया फोन कॉल्स नहीं लगे हैं, तो भैया वो हमारे स्टूडियो में अगले शनिवार को फोन करके भैया अपनी पसंद की कोई भी रागनी या लोकगीत सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल भैया,
0: उसके लिए भैया हमारे नंबर है 94-57-07-82-88।
1: और भैया
0: और
1: हमारा,
0: भैया एक हमारा लैंडलाइन नंबर है, वो आप बता दो भैया।
1: बिल्कुल भैया, जो एसटीडी कोड है 01341 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 230-105।
0: बिल्कुल भैया, आप भैया घड़ी की ओर को भी देख लो भैया, घड़ी और बातचीत की इजाजत नहीं दे रही है।
1: तो भैया दोनों भैया कर लेते हैं जल्दी से। राम
0: राम,
1: राम।
0: राम।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। शाम के 6:45 हुए हैं। विविधा कार्यक्रम में श्रोताओं सुनते हैं वार्ता। विषय है भारतीय पुरातन ग्रंथों में न्याय की अवधारणा। वार्ताकार हैं रचना देवी।
1: वह शास्त्र जिसमें किसी वस्तु के यथार्थ ज्ञान के लिए विचारों की उचित योजना का निरूपण होता है न्याय शास्त्र कहलाता है। न्याय 6 भारतीय दर्शनों में से एक है। विचारों की उस प्रणाली का नाम न्याय है जिसमें वस्तु तत्व का निर्णय करने के लिए सभी प्रमाणों का उपयोग किया जाता है। न्याय सूत्र के प्रथम सूत्र भाष्य में महर्षि वात्स्यायन कहते हैं, प्रमाणैरर्थं परीक्षणं न्यायः। आचार्यों ने विद्या के 4 विभाग बताए हैं, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। प्रत्यक्ष दृष्ट तथा शास्त्र श्रुत विषयों के तात्विक रूप को अवगत कराने वाली विद्या का नाम आन्वीक्षिकी है। इसी विद्या को न्यायशास्त्र अथवा न्याय विद्या कहा जाता है, जैसा कि महर्षि वात्स्यायन ने कहा है, प्रत्यक्षागमाभ्याम इच्छितस्य अर्थस्य आन्वीक्षणम् अन्वीक्षा तया प्रवर्तत इत्यान्वीक्षिकी न्याय विद्या न्यायशास्त्रम्। अन्वीक्षिकी में स्वयं न्याय तथा न्याय प्रणाली से अन्य विषयों का अध्ययन होने के कारण उसे न्याय विद्या या न्यायशास्त्र कहा जाता है। अन्वीक्षिकी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। वात्स्यायन ने चाणक्य के कथन को उद्धृत कर अन्वीक्षिकी को समस्त विद्याओं का प्रकाशक, संपूर्ण कर्मों का साधक और समग्र धर्मों का आधार बताया है। प्रदीपः सर्व विद्यानाम, उपायः सर्व कर्मणाम, आश्रयः सर्व धर्माणाम, विद्योद्देशे प्रकीर्तिता। सबसे प्राचीन एवं न्यायशास्त्र के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं। गौतम ऋषि द्वारा प्रवर्तित न्याय दर्शन एक महत्वपूर्ण दार्शनिक धारा है जो तर्कशास्त्र ज्ञान मीमांसा प्रणाली पर आधारित है, जिसमें ध्यान आत्मा से संपर्क पर भी बल दिया जाता है। गौतम के न्याय सूत्र को इस दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। इन सूत्रों पर महर्षि वात्स्यायन का भाष्य है, जिन साधनों से हमें गे तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उन्हीं साधनों को न्याय की संज्ञा दी गई है। देवराज ने न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है कि नियते विवक्षितार्था अनेन इति न्यायः, अर्थात जिस साधन के द्वारा हम अपने विवक्षित तत्व के पास पहुँचते हैं उसे जान पाते हैं वही साधन न्याय है। दूसरे शब्दों में जिसकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुंचा जा सके उसे न्याय कहते हैं, अथवा प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है। ये मुख्य रूप से तर्कशास्त्र की ज्ञान मीमांसा है। इसे ही तर्कशास्त्र, प्रमाणशास्त्र, हेतु विद्या, वाद विद्या तथा आन्वीक्षिकी कहा जाता है। न्यायशास्त्र के विकास को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है, आद्यकाल, मध्यकाल तथा अंत्यकाल। 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का समय आद्यकाल कहलाता है। इसी

0: काल को प्राचीन न्याय भी कहा जाता है। मध्यकाल का न्याय सांप्रदायिक न्याय के नाम से जाना जाता है, जो प्राचीन न्याय की उत्तर शाखा है। अंत्यकाल के न्याय को नव्य न्याय कहा जाता है। प्राचीन भारत में धर्मशास्त्रों, स्मृतियों और धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों में न्याय को धर्म से भिन्न नहीं माना जाता था, अपितु न्याय को धर्म के समतुल्य माना जाता था। धर्म का पालन करने का उद्देश्य न्याय को बनाए रखना तथा वैदिक युग में वरुण को प्रशासन और न्याय का अधिष्ठात्री देवता माना गया है, जिसके प्रतिनिधि के रूप में राजा इस लोक में राज्य करता है, जो पापियों को दंड देता है और सज्जनों की रक्षा करता है। महावीर चरित नाटक में स्पष्ट है कि जो व्यक्ति प्रजाजनों के विरुद्ध अनुचित आचरण, जानबूझकर किया जाने वाला पाप और अपराध करता है, राजा उसको अवश्य ही दंड देता है। प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था आप्तवाक्यों के रूप में श्रुति साहित्य, वेदों, ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों में दी गई थी। आगे चलकर जिनका स्पष्टीकरण नियमों तथा उपनियमों के रूप में स्मृतियों, धर्म सूत्रों तथा वेदांगों आदि में किया गया था। न्याय के स्रोत के लिए हमें मनु को आधार मानना होगा, क्योंकि मनु ने दंड को ईश्वर की देह से उत्पन्न पुत्र कहा है, जिससे राजा की अपेक्षा दंड का अधिक महत्व सिद्ध होता है, क्योंकि राजा दंड व्यवस्था में बंधा है तथा मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता। मनुस्मृति के अनुसार न्याय की अवधारणा राजा को न्याय का मुख्य प्रवर्तक और अंतिम प्राधिकारी माना जाता है, जिसके लिए हमें ब्राह्मणों और अनुभवी सलाहकारों का सहयोग प्राप्त होता है। मनुस्मृति में धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक कानून के बीच कोई भेद नहीं माना गया तथा राजा को धर्म का रक्षक और दंड नीति का धारक माना गया है। राजा न्याय शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो कानूनों विवादों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकारी था। राजा को न्याय करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि स्नान और ध्यान के पश्चात ही न्याय का कार्य करना चाहिए। यदि राजा किसी कारणवश न्याय नहीं कर सकता तो ऐसी स्थिति में किसी विद्वान नीति निपुण ब्राह्मण को नियुक्त कर सकता है। ऐसा कहा गया है कि यदा स्वयं न कुर्यात तु नृपति कार्य दर्शनम तदा नियुज्यात विद्वांसम ब्राह्मणम कार्य दर्शने। भारतीय पुरातन ग्रंथों में न्याय की अवधारणा गहरी और बहुआयामी है, जो नैतिकता, सामाजिक सद्भाव और निष्पक्ष दंड पर आधारित है। जहाँ राजा का कर्तव्य न्याय स्थापित करना और धर्म का पालन सुनिश्चित माना जाता था, यह केवल दंडात्मक नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने तथा सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित करने का एक माध्यम था। प्राचीन भारत में न्याय प्रशासन में धार्मिक सिद्धांतों, प्रथागत कानूनों और शाही फरमानों का मिश्रण था, जिसमें न्यायाधीशों की निष्पक्षता और ज्ञान पर जोर दिया जाता था। न्याय शास्त्र का विकास मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों पर आधारित था। कौटिल्य ने कानून के चार अंग बताए हैं, धर्म, चरित्र, व्यवहार और राजशासन। समकालीन स्मृतियों से पता चलता है कि गुप्त काल में प्रथम बार दीवानी व फौजदारी अपराधों से संबंधित कानूनों की व्यवस्था की गई। सम्राट न्याय के सर्वोच्च अदालत था। सम्राट के अतिरिक्त एक मुख्य न्यायाधीश तथा अनेक अन्य न्यायाधीश होते थे। न्यायालयों में प्रमाण भी लिए जाते थे। अग्नि, जल, विष, तुला आदि के द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थीं। रामचरितमानस में राम राज्य की धारणा एक आदर्श न्याय व्यवस्था का प्रतीक है, जहां न्याय, समानता और सामाजिक सद्भाव स्थापित होता है। भगवान राम एक आदर्श शासक के रूप में चित्रित हैं, जो कानून का पालन करते हैं, सलाहकारों से परामर्श लेते हैं और निष्पक्ष निर्णय करते हैं। राम का शासन इस सिद्धांत पर आधारित था कि प्रजा के हित में राजा का हित निहित है। राम राज्य में अधर्म को निषिद्ध माना जाता था। शास्त्रों के मतानुसार न्यायाधीश को कहा गया है कि न्यायाधीश जो भी न्याय करे वह अपने विवेकानुसार प्रस्तुत करे, ना कि मंत्री आदि के लोलुपता अथवा किसी भी भय के कारण दिया गया निर्णय हो। तुलसीदास जी ने कहा है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगिए नास। अर्थात सचिव, वैद्य, गुरु, ये तीनों राजा के भय से सत्य ना बोलकर झूठा और प्रिय बोलने लगे तो शीघ्र ही राज्य का, शरीर का और धर्म का नाश हो जाता है। रामचरितमानस में वर्णित रामराज्य की अवधारणा का वर्णन है, जिसे एक आदर्श शासन प्रणाली माना जाता है, जहां धर्म और न्याय का शासन होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्री राम, सीता, लक्ष्मण आदि के चरित्र के माध्यम से जीवन कौशल जैसे पारिवारिक व्यवहार, साहस, धैर्य और समर्पण का चित्रण किया गया है। ये गुण आधुनिक समाज में भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में संकट समाधान और नैतिक मार्गदर्शन के सूत्र भी पाए जाते हैं, जिनका उपयोग आज भी लोग प्रेरणा और शांति के लिए करते हैं। इस प्रकार हमारे पुरातन ग्रंथों में न्याय की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसे सम्यक पढ़ने से, समझने से अथवा उनका अनुसरण करने से व्यक्ति, समाज तथा प्रत्येक वर्ग का सर्वहित कल्याण संभव है।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत ये वार्ता। विषय था भारतीय पुरातन ग्रंथों में न्याय की अवधारणा। वार्ताकार थी रचना देवी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म गाइड से। शब्द रचना शैलेंद्र की है, संगीत SD वर्मन का, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फिल्म गाइड में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम छाया गीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के युगल स्वर में फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीत शंकर जयकिशन का।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म ब्रह्मचारी में। श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम छाया गीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत फिल्म कटी पतंग से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और धुन तैयार की है आरडी वर्मन ने। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

किशोर कुमार के गाए फिल्म कटी पतंग के इसी गीत के साथ कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 7:10 हुए हैं।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 7:15 हो रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां दे दें। आज रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका और रात्रि 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज संध्या 7:32 पर आप सुनेंगे भजन। कलाकार होंगी रुचि अग्रवाल। फिल्म संगीत के कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकते हैं रात्रि 8:00 कार्यक्रम गीत संध्या के अंतर्गत और रात्रि 8:30 एक ही फिल्म से कार्यक्रम में। कल प्रातः है 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकेंगे जानकारी हाइपरटेंशन। खेती की बातें कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा भिंडी की फसल में रोग और कीट नियंत्रण। समय कल प्रातः 7:10 पर। धरती गाती है इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल प्रातः 9:20 पर श्रोता सुन सकते हैं रागिणी। कलाकार हैं जनक सिंह और साथी। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष में कार्यक्रम सुहाना सफर प्रसारित किया जाता है प्रतिदिन प्रातः है 10:00। आपका पत्र मिला, ये हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम श्रोता सुन सकते हैं कल दिन में 12:05 पर। कल रात्रि 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और कल रात्रि 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण किया जाएगा। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल शाम 6:45 पर विविधा कार्यक्रम में श्रोता सुन सकते हैं भेंट वार्ता हाइपरटेंशन कारण लक्षण और बचाव। कृषि जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे चर्चा पशुओं का दूध निकालते समय सावधानियां। इसके अतिरिक्त किसान भाई सुनेंगे फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला, इसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता फसल अवशेष प्रबंधन में किसानों की सहभागिता। डॉक्टर लाल बहादुर सिंह से जितेंद्र कुमार की बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर बाद आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बेली पार्क क्षेत्र स्थित ताल नदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
2: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम, और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में बीसीसीआई की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। और आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
2: आज का दिन हम सब के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
1: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

0: निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसमें इंडोर खेलों की सुविधाएं मिलेंगी। ये स्टेडियम कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के बाद प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होगा। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर कल प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऊर्जा बचत की अपील के मद्देनजर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सप्ताह में कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का परिचायक होगी बल्कि आर्थिक अनुशासन और ऊर्जा बचत के दृष्टिगत समाज में सकारात्मक संदेश भी देगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सपा नेता मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में आज रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
2: बहुत पुराना कॉलेज है आजादी के बाद का पहला और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ, तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो और इस पे मेरा प्रयास रहेगा।
0: चित्रकूट नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि चित्रकूट में 90 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे।
3: उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए आज चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए इस 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
0: वट सावित्री का पर्व आज प्रदेश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी में सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग और पति के दीर्घ स्वस्थ जीवन के लिए वट सावित्री निर्जला व्रत रखा है। व्रती महिलाओं ने विधि विधान से सावित्री माता की पूजा के बाद बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर अटल सौभाग्य की कामना की। प्रयागराज में व्रती महिलाओं ने आज सुबह संगम में पवित्र स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ की पूजा कर अपने सुहाग की सलामती और लंबी उम्र की प्रार्थना की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मॉनसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मॉनसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। सिंचाई और जल संसाधन की ओर से लखनऊ

वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ये कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। इनके जरिए जलस्तर की रियल टाइम निगरानी और आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ सुरक्षा समितियां तैयार की जा रही हैं। इनमें संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर, ग्राम प्रधान और लेखपाल सहित स्थानीय लोगों को जोड़ा जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी नजीबाबाद है। सुगम संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत हैं भजन, कलाकार हैं रुचि अग्रवाल।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत रुचि अग्रवाल से भजन सुन रहे हैं।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत भजन सुन रहे हैं। कलाकार हैं रुचि अग्रवाल।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत भजन सुन रहे हैं। कलाकार हैं रुचि अग्रवाल। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और भजन।

इसी भजन के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न करते हैं। इसमें आज आपने रुचि अग्रवाल से भजन सुने। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म उपकार से, शब्द रचना है इंदिवर साहब की और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। गायक कलाकार हैं मन्ना डे।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम गीत संध्या सुन रहे हैं। अभी आपने फिल्म उपकार में मन्ना डे को सुना। कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत, लता मंगेशकर के स्वर में। गीत अनजान का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय कार्यक्रम गीत संध्या सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म कलाकार का ये गीत किशोर कुमार के स्वर में। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

अभी आपने किशोर कुमार को सुना फिल्म कलाकार में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय कार्यक्रम गीत संध्या सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं नीरज की शब्द रचना का ये गीत, फिल्म शर्मीली से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, और इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है SD वर्मन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनते हैं फिल्म मेरी जंग का गीत, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के युगल स्वर में। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अभी आपने फिल्म मेरी जंग का ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम गीत संध्या सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में, फिल्म श्री 420 से। गीत शैलेंद्र का है, संगीत शंकर जयकिशन का है।

लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में अभी आपने फिल्म श्री 420 का ये गीत सुना। इसी के साथ गीत संध्या कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करते हैं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हमने चुना है फिल्म दाग को। सुनते हैं फिल्म दाग के कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर के स्वर में, शब्द रचना साहिल लुधियानवी की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सूचना, ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्म दाग के कुछ गीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। गीत साहिल लुधियानवी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में अभी आपने ये गीत सुना। इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज आपने फिल्म दाग के कुछ गीत सुने। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए, अब आप समाचार संध्या सुनेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से

0: व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित

0: अध्यक्षता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को

अवैध करार देते हुए खारिज किया और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ninth and tenth. And Inder Sanjana wins 3 bronze medals in the women's 77-kilogram category at the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरिया सिंह से मुतालिक काबी मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैर कानूनी करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया है। सीबीएसई ने 9वीं और 10वीं क्लास के लिए 3 जबानों की पढ़ाई को लाजमी बना दिया है और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स कई तरह के बुहरान और कुदरती आफात के तनाजुर में आलमी चैलेंजों से निमटने की खातिर एक भरोसेमंद शफाफ और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जना मोदी ने 5 मुल्कों के अपने दौरे के तहत नीदरलैंड्स के शहर हेग में एक कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया मुख्तलिफ तरह के चैलेंजों का सामना करती रही है, जिसमें COVID-19 आलमी वबा, मौजूदा महाजराई और तवानाई का बुहरान शामिल है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: वजीर आजम ने खबरदार किया कि इन चैलेंजों से अगर तेजी के साथ ना निमटा गया तो आलमी सतह पर तरक्की के जो फायदे हासिल हुए हैं वो हाथ

0: बनाने के लिए आलमी कोशिशों को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स मजबूत सप्लाई निज़ाम कायम करने पर मुश्तरक तौर पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। जना मोदी ने भारत के बढ़ते हुए आलमी रोल पर भी जोर दिया और मुल्क को 21वीं सदी में मौकों की सरजमीन करार दिया, जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी अकदार दोनों को अहम मकाम हासिल है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात की। जनाब मोदी नीदरलैंड्स के वज़ीर-ए-आज़म रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान वसीतर ताल्लुकात उस्तवार होंगे। हाल ही में भारत और यूरोप के दरमियान आजाद तिजारत का समझौता भी हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक और नीदरलैंड्स सेमीकंडक्टर साजो सामान तैयार करने वाली अहम कंपनी एएसएमएल ने भारत में चिप तैयार करने के सिलसिले में इश्तराक का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान इस मुआहदे का ऐलान किया गया। एएसएमएल लिथोग्राफी इक्विपमेंट के जुमरे में इजारादारी रखती है, जो छोटे साइज के जदीद सेमीकंडक्टर की तैयारी में अहमियत का हामिल है। ये इश्तराक भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने की समत एक अहम कदम है, जिनमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी समेत अहम टेक्नोलॉजी शामिल हैं। एएसएमएल के सदर और सीईओ क्रिस्टोफे फोके ने कहा कि भारत के तेजी से वसत पा रहे सेमीकंडक्टर के शोबे से कई अहम मौके नुमाया हो रहे हैं और वो खित्ते में तवील मुद्दती शराकतदारी कायम करने के लिए पुरअज़्म हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने गुजरात के दौरे के दौरान जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने सीनियर अहदेदारान के साथ अहमदाबाद और गांधीनगर में कई मीटिंगें की और शहरी बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रोजेक्टों और उनसे वाबस्ता कामकाज का जायजा लिया। जनूब मगरबी जोन के दफ्तर में जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हल्के की जानिब से अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों और पौधे लगाने के काम का जायजा लिया। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर की जदीदकारी और घाट लोदिया, गोटा, चांद लोदिया, थलतीज समेत झीलों के इलाकों को एक दूसरे से मरबूत करने के सिलसिले में अहदेदारान के साथ तबादला ख्याल भी किया और इन कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हल्के से 9 मुंतखबा 70 म्यूनिसिपल काउंसिलों से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र में आज पुलिस के सुपरिटेंडेंट एम नरेश ने कहा है कि ऑपरेशन अंतिम प्रहार के नाम से नक्सल मुखालिफ मुहिम के तहत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 दीगर के खुद सुपुर्दगी किए जाने के बाद गढ़चिरौली जिले से नक्सलियों का खात्मा हो गया है। मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब नरेश ने कहा कि गिरफ्तार किए गए नक्सलियों पर मजमुई तौर पर 64 लाख रूपये का इनाम था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने उनके पास से हथियारों समेत 65 लाख रूपये नकद भी जब्त किए। उन्होंने कहा कि डिविजनल कमेटियों के अरकान समेत 5 नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की। उन पर कुल 38 लाख रूपये का इनाम था। इस दौरान पुलिस सुपरिटेंडेंट ने वजाहत की कि हालांकि गढ़चिरौली से सरगर्म नक्सली खत्म हो गए हैं, लेकिन नक्सली सोच मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में बायोलॉजी के सवालात लीक करने से वाबस्ता एक सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे नाम की यह मुलजिम महाराष्ट्र में पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर है। सीबीआई के मुताबिक वो नीट यूजी 2026 के इम्तिहान के अमल में शामिल थी और इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उसे एक माहिर के तौर पर मुकर्रर किया था। सीबीआई ने कहा है कि उसने पुणे की मनीषा वाघमारी के जरिए नीट इम्तिहान के मुमकिना उम्मीदवारों को यज्जा किया था और पुणे की अपनी रिहायशगाह पर इन तलबा के लिए खसूसी कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया था। उसे इस महीने की 14 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। अब तक इस केस के सिलसिले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहल्यानगर से 9 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 मुलजिमों को अदालत में पेश किया गया और तफसीली पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस तहवील और रिमांड पर भेज दिया गया है।

जिन दीगर दो मुलजिमों को कल गिरफ्तार किया गया था उन्हें भी पुणे की अदालत में पेश किया गया और राहदारी रिमांड हासिल करके उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सीबीआई ने मुल्क में 6 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई भी की है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में मुबैना बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और एक और मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई की तहवील में भेज दिया है। खसूसी सीबीआई जज अजय गुप्ता ने इन दोनों को सीबीआई की तहवील में दे दिया है। इससे कबल जांच एजेंसी ने यह दलील पेश की थी कि मजीद छानबीन और वसीतर साजिश का पता लगाने के लिए इन दोनों को कौमी राजधानी से बाहर ले जाने की जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने इस साल 1 जुलाई से 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए 3 जबानों के पढ़ने को लाजमी करार दे दिया है। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और स्कूली तालीम 2023 से मुतालिक निसाब के कौमी तरीक़ेकार से मुताबकत रखते हुए 3 में से कम अज़ कम 2 मकामी जबानें होनी चाहिए। सीबीएसई ने वजाहत की है कि 10वीं जमात में तीसरी जबान के लिए कोई बोर्ड इम्तिहान नहीं होगा और उसने मजीद कहा कि R3 के लिए सभी जायजे का अमल मुकम्मल तौर पर स्कूल पर मबनी और दाखिले होगा। बोर्ड ने कहा कि R3 में तलबा की कारकर्दगी सीबीएसई सर्टिफिकेट में मजकूर होगी। सीबीएसई ने यह भी इत्तला दी कि R3 की वजह से किसी भी तालिबे इल्म को 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान देने से रोका नहीं जाएगा। स्कूली तालीम और खानदगी महकमे ने मुल्क में बीच ही में बच्चों के पढ़ाई छोड़ने या स्कूल न जाने के मामले पर तबादला ख्याल के लिए आज एक मीटिंग तलब की जिसमें खासतौर पर 14

0: 1965 12वीं क्लास तक पहुंचते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 14 से लेकर 18 साल तक की उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे सरे दस्त स्कूल नहीं जा रहे हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि इक्तसादी मुश्किलात, घरेलू जिम्मेदारियां और रोजी रोटी से मुतालिक चैलेंज उन बड़ी वजूहात में शामिल हैं जिनकी वजह से बच्चों को तालीमी निजाम बीच में ही छोड़कर अलग होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि असल तवज्जो बच्चों को बाजाब्ता स्कूलिंग में फिर शामिल करने पर होनी चाहिए और जो रेगुलर स्कूल वापस नहीं आ सकते उनके लिए सीखने के मुतबादिल होने चाहिए जिनमें NIOS और स्टेट ओपन स्कूल शामिल हैं। फौरी इकदामात की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब कुमार ने कहा कि कम अज कम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सतह तक हर बच्चे को तालीम तक रसाई होनी चाहिए जो मकामी इकतसादी मौके के मुताबिक रोजगार मिलने के हुनर से हम आहंग हो। नई दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के तहत गैर कानूनी तौर पर तश्कील दी गई सालिसी की अदालत की जानिब से दिए गए ताजा फैसले को मुस्तरद कर दिया है और इसे बिला जवाब करार दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि नाम निहाद सालिसी अदालत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे की उमूमी तशरीह के मामलों पर फैसला सुनाया था और साथ ही उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत मजकूरा सालिसी इदारे को कानूनी एतबार से दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे को मुअत्तली की हालत में रखने के भारत के फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई है। भारत और पाकिस्तान ने सितंबर 1960 में दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे पर दस्तखत किए थे जो दरियाए सिंध के पानी में हिस्सेदारी और इसके इस्तेमाल से मुतालिक था। पिछले साल पहलगाम में दहशतगर्दों के हमले के बाद भारत ने मजकूरा मुआहदे को मुअत्तली की हालत में रखने का फैसला किया था और ये कहा था कि ये कदम बैन अल-अक़वामी कानून के तहत उसके इक़्तिदार आला के हुकूक के ऐन मुताबिक है और ऐसा उस वक्त तक नाफिज रहेगा जब तक कि पाकिस्तान सरहद पार से फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी के लिए मदद व एआनत बंद नहीं कर देता। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल के लिए अंडमान और निकोबार जजायर जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और शिमाल मशरक के हिस्सों में भी कल इसी तरह का मौसम रहेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते पेचिंग के अपने 2 दिन के दौरे में चीन के रहनुमा शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। एक बयान में क्रेमलिन ने कहा है कि सदर पुतिन इस महीने की 19 और 20 तारीख को यह दौरा करेंगे और ये चीन और रूस के दरमियान 2001 के दोस्ती के मुआहदे के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। इसराइल का कहना है कि उसने हमास के मिलिट्री विंग के लीडर इज़ुद्दीन अल हद्दाद को हलाक कर दिया है जिसका 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में अहम रोल था जिसके बाद गजा में जंग शुरू हो गई थी। इसराइली फौज ने बताया कि अल हद्दाद कल गजा शहर में एक फिजाई हमले में मारा गया। फौज ने बताया कि वह हमास की मिलिट्री क्यादत में आखिरी सीनियर कमांडर था जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास की जानिब से किए जाने वाले हमलों में कलीदी रोल अदा किया था। गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की संजना ने खवातीन के 77 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 3 तमगे जीते। संजना ने स्नैच जुमरे में 96 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क जुमरे में 124 किलोग्राम का वजन उठाया और मजमूई तौर पर 220 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे के 3 तमगे हासिल किए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज बैंकॉक में मलेशिया के गो सी जिफई और नूर इजुद्दीन को सेमीफाइनल में 19-21, 22-20 और 21-16 से हराकर मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। कल फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर अजम ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम PV कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए CBI तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैर कानूनी करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया है। और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साउंड लाइट साउंड कैमरा एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: तारंगा तेरी याद में,
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है, कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। क्योंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जी.डी. माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। क्योंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था। इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
2: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन

चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था

फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम

0: बनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जानी मानी संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
2: मेरे पास माँ है।
1: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
3: ओ न रो

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे परवाना आजादी पे उनकी मौत चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें

0: अरे
1: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
2: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
3: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
2: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से अपनी

0: 2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंग,
1: तुम कितने

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है। वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमीन पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD2।
2: जब जब मुझे पे उठा सवाल आई तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है,
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: गीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: 31 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश। दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
1: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं। क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
0: ओहो,
1: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों, कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नयन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नयन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
0: जी।
1: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी

0: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा। मुझे पता नहीं कैसे क्यों कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1900

0: 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विद मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरव अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें 3 रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल,

0: रस कानारे द्रुत एक ताल लागी लगन तोरे पियासे। उसके बाद द्रुत तीन ताल चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद राग दुर्गा। रूपक ताल रस कान्हारे, द्रुत एक ताल लागी लगन तोरे पियासे, द्रुत तीन ताल चतुर सुगर।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashwani Dharwad and relayed from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता CBI की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis. He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है. भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है. भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है. मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं. इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा.
2: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashwani, the Ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations. Head of Engineering and Product Development at Artifacts in Sweden, Per Stenfeldt, expressed optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and Europe arising from the India-European Union Free Trade Agreement. Electronics manufacturing company Tata Electronics and Dutch semiconductor equipment major ASML have joined hands to enable chip manufacturing in India. The pact was announced during Prime Minister Narendra Modi's visit to the Netherlands. ASML is known for having a monopoly in a category of lithography equipment which is critical for production of advanced small-size semiconductors. A Delhi court today sent the prime suspect in the NEET paper leak case P.V. Kulkarni and another accused Manisha Wagmare to CBI custody for 10 days. Special CBI Judge Ajay Gupta ordered the remand after the probe agency submitted that the DO needed to be taken outside the national capital for further investigation and that the larger conspiracy had to be investigated. In IPL cricket, chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans were 177 for 1 in 16 overs against Kolkata Knight Riders in Kolkata when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 245 for 2 in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 और 12 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की इस सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। अपनी प्रातःकालीन सभा में कल सवेरे 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।